0: और दोनों दरिया मिलकर यकसा नहीं हो जाते। ये तो मीठा है प्यास बुझाने वाला, जिसका पानी खुशगवार है, और ये खारी है कड़वा। और सबसे तुम ताज़ा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिसे पहनते हो, और तुम दरिया में कश्तियों को देखते हो कि पानी को फाड़ती चली आती हैं, ताकि तुम उसके फजल से मुआश तलाश करो और ताकि शुक्र करो।
1: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر

अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार न सुने, और अगर सुन भी लें तो तुम्हारी बात को कबूल न कर सकें, और कयामत के रोज तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे, और खुदाए बाखबर की तरह तुमको कोई खबर नहीं देगा।

इंसानों और जानवरों और चारपायों के भी कई तरह के रंग हैं। अल्लाह से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म हैं। बेशक अल्लाह गालिब और बख्शने वाला है।

वो उसमें चिल्लाएंगे कि ऐ परवरदिगार हमको निकाल ले, अब हम नेक अमल किया करेंगे न वो जो पहले करते थे, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया, तो अब मजे चखो, जालिमों का कोई मददगार नहीं।

उसे ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं है। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त न कर।

0: है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा। सदक अल्लाहुल अज़ीम।

تدعوه فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
1: نسألك

मरी एक्सप्रेस वे को बुनियादी ढांचे की तरक्की के नमूने के तौर पर अपनाया जाना चाहिए। इजलास के दौरान वफाकी वजीर ने हुकाम को हिदायत की कि मोटरवे M4 को 6 रोया बनाने का काम रवां साल के अख्ताम तक मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि लोधरा मुल्तान एक्सप्रेसवे पर तामीराती काम भी तेजी से जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि दरिया सतलज पर बाबा फरीद पुल की बहाली के मंसूबे पर भी काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सनअती पैदावार के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर खान ने कहा है कि हुकूमत जल्द नई ऑटो पॉलिसी मुतारिफ कराएगी, जिसका मकसद गाड़ियों के पुर्जाजात की तैयारी समेत तमाम मुतलका फरीकों को मुराद फ्राहम करना है। लाहौर में पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के तहत हुकूमत गाड़ियों के पुर्जा साजों को बरामदात बढ़ाने में मदद देने के लिए इकदाम कर रही है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार का तरक्याती इदारा समेरा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के अहम शराकतदार के तौर पर नुमाइश में शिरकत कर रहा है। कोहाट में होने वाले बम धमाके में शहीद अफराद की तादाद बढ़कर 21 हो गई है, जिनमें 15 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। 34 जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज हैं, जबकि 4 शदीद जख्मियों को पिशावर मुंतकिल कर दिया गया है। कोहाट में खुदकुश बम धमाके में शहीद होने वाले 15 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा रात पुलिस लाइंस कोहाट में अदा की गई। नमाज जनाजा में सूबाई वुजरा, सिविल और अस्करी हुकाम और मकामी अमायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद में शहदा की मैयतें कोहाट, करक, लकी मरवत, बनू और मर्दान अजला में उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई, जहाँ उन्हें पूरे सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। हुकूमत ने आज से आइंदा 3 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया है। वजारत तवानाई की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 88 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 424 रुपए 4 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह पेट्रोल की फी लीटर कीमत 1 रुपए 65 पैसे कमी के साथ 389 रुपए 14 पैसे मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, सिक्योरिटी और खुशहाली के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का अयादा किया है। इस आजम का इजहार अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तखार अहमद ने इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने आबनाए बाबुल मंदब में हौसी मलेशिया की जानिब से तिजारती बहरी जहाजों और उनके अमलों पर हमलों की भी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तिजारती बहरी जहाजों पर हमलों के आलमी अमन इस्तेकाम, तवानाई और गजाई तहफ़ुज़ पर दूरस असरात मुरतब होते हैं। आसिम इफ्तखार अहमद ने कशीदगी में फौरी कमी, बहरी जहाजों और अमले के अरकान की सलामती समेत आबनाए बाबुल मंदब में मामूल की आमद और रफ्त की बहाली पर जोर दिया। गजा के मगरबी इलाके शेख रिजवान में कायम अत्तकवा पर हुजीन कैंप में इसराइली फोर्सेज की जानिब से मोटरसाइकिल को निशाना बनाए गए हमले में एक फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। सेहत हुकाम के मुताबिक 2023 से गजा पर जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 73,821 हो गई है, जबकि 1,74,897 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। एशियन गेम्स में खवातीन के क्रिकेट मुकाबलों के सेमीफाइनल्स कल जापान में खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान निशन में सुबह 5 बजे खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और भारत इसी मकाम पर दिन 10 बजे मध्य मुकाबल होंगे। फाइनल मंगल को खेला जाएगा। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज्यादातर खुश्क रहने का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बास बड़े शहरों का दर्जे हरारत, इस्लामाबाद और कोयटा 19 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 25, कराची 28, पिशावर 23, गिलगित 12, मरी 14 और मुजफ्फराबाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लिए महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतला जुजवी अब्र आलूद और खुश्क, जबकि जम्मू में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्ज हरारत श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में 14 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 22, लेह 4, जबकि पुलवामा और शोपियां में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए।
9 बजे

0: आजम ने कहा है कि वज़ीर आज़म की खुसूसी रिलीफ स्कीम का मकसद कमजोर तबके को सहूलत फराहम करना है। सदर ने नेपाल के कौमी दिन के मौके पर उसकी हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद दी है। मनसूबाबंदी के वजीर ने पोलियो वायरस के फैलाव के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के हुकूमती अज़्म का अयादा किया है। कोहाट में होने वाले बम धमाके में शहीद अफराद की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सिक्योरिटी के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का अयादा किया है। एशियन गेम्स में खवातीन के क्रिकेट मुकाबलों के सेमीफाइनल्स कल जापान में खेले जाएंगे। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

Righto. In the name of Allah, the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. Mere, of course, assalamu alaikum. Mere Pakistan. Janab se mukhatib aapka host, aapka dost. DJ Sahil Sani. Alright, Janab, kaise hain aap tamam log? Kya kiran theek thaak hai? Bane fit hain? Mazay mein hain? Khoob enjoy kar rahe hain apni zindagi ko? It's 8:16 on the dial. Today is Saturday, 19th of September, 2026. Aap se leke theek kaafi der tak mera aapka saath rehne wala hai. So khoob sari mastiyan, lots of fun, only on FM 101. आज सैटरडे है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो है वो तकरीबन 80% लोग जो वो छुट्टी मना रहे होते हैं, वीकेंड मना रहे होते हैं, लेकिन सुबह सवेरे उठना उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और उठना भी नहीं चाहिए भाई, पूरा वीक जो है वो आपने अपनी नींदें पूरी नहीं की हैं, तो डेफिनेटली इस वक्त आप सो रहे होते हैं, लेकिन हमारे कुछ रेगुलर लिसनर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के लिए खास उठ जाते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए।

सो रहना हमारे साथ साथ, आप सुन रहे हैं। भाई मौसम चेंज हो चुका है, आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई हल्की हल्की धूप तो है ही लेकिन हवाएं ठंडी हैं। फिर मैंने जाके एक शर्ट जो है वो फुल स्लीव्स का, क्योंकि मैं टी शर्ट में आ रहा था तो मैंने फुल स्लीव्स का टी शर्ट पहना, सॉरी फुल स्लीव्स का शर्ट पहना। सुबह सुबह ऐसे ही होता है हरल जी। फिर उसके बाद मैंने बकायदा जो है वो हेलमेट पहना और मैं फिर निकल पड़ा रेडियो की तरफ। और मैंने ग्लव्स भी पहने आज, वो पतले वाले जो होते हैं ना कपड़े के वो वाले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मौसम जो है वो इस तरह का है कि अगर मैं इतनी लंबी ड्राइव लेके जाऊंगा तो मे भी मुझे ठंड लग सकती है, तबीयत खराब हो सकती है बेटा चांद। तो इसीलिए मैंने जो है वो फिर अपने आप के साथ ये वाले मामलात किए और मैं रेडियो की तरफ आ गया। So, मौसम अब चूंकि चेंज हो चुका है लेकिन ये वीक जो है वीक और 10 डेज जो कमिंग 10 डेज हैं, ये जरा ड्राइनेस वाला सीन बताया जा रहा है कि जी ड्राई रहेंगे, उसके बाद फिर बारिशों का एक स्पेल जो है वो शुरू होगा। अभी फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है लेकिन लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये जो खुश्क सर्दी वाला सीन है ना, ये भी बड़ा बैड होता है ना, तो आपने अपनी वाटर इनटेक बहुत अच्छी रखनी ताकि आपको इस तरह के मसाइल ना हो, डिहाइड्रेट ना हो आप। भाई मैंने तो शुक्र अदा किया गर्मियां खत्म हुई हैं। भाई इतनी गर्मी थी, इतनी मुश्किल हुई है, मुझे तो जिंदगी इतनी मुश्किल लगना शुरू हो गई थी। पता है सबसे बड़ी जो ये प्रॉब्लम है ना, ये कहां होती है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वहां होती है जहां पे आप जो है वो एसी में ज्यादा बैठा करते हैं, तो इस वजह से ज्यादा होता है। जो लोग एसी में ज्यादा नहीं बैठते उनको इतना ज्यादा पता नहीं चलता। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि ऑफिस में सारा दिन मेरा ऑफिस जो है वो उसमें एसी लगा हुआ है और सारा दिन जो है वहां पे ठंडा रहता है। लेकिन इस बार इस सीजन हमने चूंकि घर शिफ्ट किया था तो मैंने अभी तक एसी इंस्टॉल नहीं करवाया था क्योंकि गुजारा हो रहा था। हमारे बेडरूम के बिल्कुल साथ टेरेस है तो टेरेस की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो दोनों विंडोज से भी और दरवाजे से भी जो है वो अंदर आती हैं। इस वजह से जो है जनाब मैंने इंस्टॉल नहीं करवाया, मेरा बिल भी ज्यादा नहीं आया। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जब आदत हो जाए ना ठंडे ठंडे माहौल में रहने की तो फिर बिल भी भरना पड़ता है ना। राइट, सो प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूं आज की पहली आवाज, और आज की पहली आवाज कौन सी है मेरे पास। So here we go, ladies and gentlemen. This is me and Noman Khaled with his Desi Thumka. Here we go. Noman Khaled, Summer Khaled.

अच्छा आज मैंने कुछ बहुत मजेदार म्यूजिक मैंने आपके लिए निकाला है, कुछ फिल्मी म्यूजिक भी जो है वो मैंने आपके लिए निकाला है। सो अब मैं वो प्रोग्राम में शामिल करने जाऊंगा, और जब मैं आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करूंगा या आपकी रिक्वेस्ट शामिल करूंगा तो डेफिनेटली आपने मुझे कोई फिल्मी गाना जरूर बताना है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में शामिल कर ले। नॉर्मली आपको पता है कि मैं गाने बहुत कम प्ले करता होता हूँ, सो मैं एक काम करता हूँ, अब जनाब पोस्ट जो है वो हम भेज देते हैं कि हमारी पोस्ट लगा दें ताकि हम इजीली फिर आपको भी प्रोग्राम में शामिल कर देंगे।

जी मैं जो हूँ वो फोल्डर खोल के वो बैठा हुआ जहाँ पे मैंने वसीम को बेशुमार जो है वो पिक्चर्स भेजे थे, उस समय से मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी सी तस्वीर जो है वो निकाल के हम भेजें आज, जिसने पिक्चर लगानी है हमारी उसको भेज दें, वो प्रोग्राम में इसको शामिल कर ले। सो कौन सी वाली, ये वाली, वो वाली, ये वाली, वो वाली, ये वाली, वो वाली, कौन सी वाली भेजूँ जी?

है ना, आपके भाई की तस्वीरें बड़ी अच्छी आई हुई हैं। चले हम ये वाली पिक्चर जो है वो भेज देते हैं उस नंबर पे जिस नंबर पे हमें कहा गया है भेजने के लिए। सो हियर वी गो, और बता देते हैं कि जी हमारी पिक्चर अपलोड कर दें।

सो डेफिनेटली अभी थोड़ी देर में पिक्चर लग जाएगी, हम प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे. 111111 इज द नंबर, 9202540 इज द नंबर. आप मुझे कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. एक गाने के बाद हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स को भी. और अभी जो गाना मैं शामिल कर रहा हूँ फिल्मी ट्रैक है. मैंने डेफिनेटली आपको बताया कि मैं फिल्मी गाने जो है वो कुछ प्ले करने जा रहा हूँ. सो हियर वी गो.

8:35 हो चुके हैं. वेल, आपको मालूम है कि कुछ जो है वो अभी जो कंटेनर्स वगैरह जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मूव किए हैं, और जिसकी वजह से आगे कल से जो है वो शायद रास्ते जो है वो इतनी आसानी से फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस हम शायद इतनी आसानी से हमारी रसाई नहीं होगी स्टूडियोज तक या इस्लामाबाद तक. तो मे भी हो सकता है कल से शोज जो हैं वो मे भी शो जो हैं वो ना हो मेरे स्पेशली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी रसाई मुश्किल हो जाएगी वहाँ से. तो बाकी हालात क्या होंगे ये तो आपको वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहेगा.

एक गाना सुनेंगे, उसके बाद शामिल होंगे आप प्रोग्राम में, दोबारा से हम वापस आएंगे क्योंकि एक कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे रिसीव करनी है, तो मैं इस गाने के बाद आपको वापस मिलूंगा. मैंने आपसे कहा था कि जी मैं आपको कुछ फिल्मी गाने सुनवा रहा हूँ, सो हियर वी गो, दिस वन्स फॉर यू गाइस.

0: राइट जी, 8:47 हो गए, आप सुन रहे हैं FM 101, मुझे कहते हैं साहिल, और प्रोग्राम है जी हमारा आप सबका फेवरेट कॉफी एंड कुकीज। पूरे प्रोग्राम पे आज अजारा दार ही मेरी 111 इज द नंबर, 9202540 इज द नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आज का प्रोग्राम सोलो है जी। अभी अभी मुझे पता चला है कि ये शो आज सिर्फ मैंने ही करना है, और कल के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया कि शायद मामलात इस तरह के होंगे कि हम जो है वो आप की तरफ ना आ सकें शो करने के लिए। So here we go. Sorry, my bad. गलत बटन दबा दिया है मैंने। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। माइक कौन सा है जी? माइक नंबर 4। Here we go. Assalamualaikum. अरे आइए आइए, अभी आप कुछ देर पहले आई थी, फिर आप चली गई, अब आप फिर आ गई हैं, हैं? अच्छा ऑन ईयर आ जाए जी। सुनाए कैसी हैं मिस राहत जॉनसी मौजम है? आपको पता, अभी मेरी मैम सदफ से लंबी बात हुई, तो मैम सदफ मुझे क्या कह रही थी? मैम से तो कहती है, रात मारे मौसम ने मुझे नहीं छोड़ना, अगर तुम्हारी बर्थडे पे मैंने तुम्हारे साथ प्रोग्राम नहीं किया, शो नहीं किया तो
1: ये है,
0: मुझे बता रही
1: थी
0: और इतनी वो मोहब्बत से बता रही थी, वो कह रही थी कि, और खास इन्होंने कहा है कि इन्हें कह दें कि ये लाजमी आएंगे 101 की बर्थडे पे भी। मेरी बात सुनो, हमने आज तक अपनी मैम की बात नहीं सुनी है, तुम हम पे जोर लगवा रही हो।
1: दिल्ली से बात कर लूं मैं,
0: है
1: दिल्ली से करूं बात।
0: अच्छा अच्छा, यहाँ तक आप कहाँ तक रसाई पहुँच गई आपकी? आपकी भैया आपकी तो बड़ी पहुँच है। अच्छा सुनाए कैसी है जिंदगी, कैसी गुजर रही है?
1: बड़ी शादी की सालगिरह।
0: किसकी शादी की सालगिरह? आपकी शादी की सालगिरह? हाय मेरे रब्बा, मैनू पता ही नहीं शादी थी, सालगिरह सी। ऐ लो जी ताड़े लिए गिफ्ट ऐ। है क्या कह रही
1: है?
0: हाँ जी, वो बस रास्ते बंद है, उनकी तरफ रास्ते बंद हो गए, उन्होंने कंटेनर लगा दिए हैं, वो कह रहे हैं कि जो जो लोग जो हैं है वो ये भी कर सकती है, लेकिन ये कि बंद करा दिया, उन्हें बंद कर दिया है कि भाई बंद करें ऐसे लोगों को,
1: ये सारी साजिश आपकी है।
0: हाँ जी, मैंने मैं अभी तो आपने मेरी साजिश देखी नहीं है अभी तो मैं कीती नहीं है। ठीक है, और सुनाए क्या चल रहा है जिंदगी में? आज नाश्ता क्या किया ये बताएं।
1: अभी नाश्ता आज थोड़ी लेट होती।
0: अच्छा, बाहर से आएगा आज नाश्ता? राइट,
1: घर
0: बनाएंगी। क्या बनाएंगी वैसे?
1: पराठा अंडा।
0: हाँ, पराठा अंडा चाय, वो ही। मैं भी आज पराठा अंडा चाय ही खा के आ रहा हूँ, मस्त वाला, मजेदार वाला।
1: अच्छा लग रहा
0: है,
1: मौसम
0: अच्छा हो गया ना यार, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस, कि मौसम बहुत प्यारा हो गया है। यू नो व्हाट, मुझे गर्मियां बहुत बुरी लगती है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मुझे पसीना बहुत आता, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मुझे भी नहीं अच्छा, मुझे जुलाई अगस्त इसलिए पसंद नहीं, मैं शर्ट पहनता हूँ ना, कपड़े पहनता हूँ तो मैं फंस जाता हूँ उसमें, मेरे हाथ पांव चिपक जाते हैं साथ, मुझे गुस्सा चढ़ता है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ मौजूद थी राहत बानो मौजम, और ये फिर क्रैश कर गया सिस्टम, भाई इसको रिफ्रेश ही करा दें कम से कम, ताकि हम इजीली कॉल्स प्रोग्राम में शामिल कर सकें। बहरहाल जी, किधर गया बीजी म्यूजिक, हम इसको रिफ्रेश भी कर लेना। मुझे कॉल आ गई फिर मैम की, मैं क्या कर लूं? वेट करें, जाना सुने।

मेरे दिल नू जच दिए जद मूड बनाए घूम मचाए घूम घूम और नच दिए जिम चुपा लटते गुची पाए बोलो कोई नंग जाके नखरे दिखाए मुंडिया नूडा।

0: राइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं F101, मुझे कहते हैं साहिल और 8:56 हुए चाहते हैं.
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या,

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम ने कहा है कि वजीर आजम की खुसूसी रिलीफ स्कीम का मकसद कमजोर तबके को सहूलत फराहम करना है। कोहाट में होने वाले बम धमाके में शहीद अफराद की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की खुदमुख्तारी, इलाकई सालमियत और सिक्योरिटी के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का इरादा किया है। एशियन गेम्स में खवातीन के क्रिकेट मुकाबलों के सेमीफाइनल्स कल जापान में खेले जाएंगे।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

keep it locked, keep it loud. FM 1 हमेशा आपके साथ.

0: This is FM 101.
1: Coke Studio, Season 14.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी रिलीफ स्कीम के तहत रियायती पेट्रोल हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहां रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर भेज दें। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर भेज दें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: This is
1: one.

एंटरटेनमेंट हो या अपडेट्स, यह तुम्हारी हर मूड का दोस्त।

0: This is FM 101.
1: Mm-hmm.

0: 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी रिलीफ स्कीम का मकसद कमजोर तबके को सहूलत फराहम करना है। मनसूबा बंदी के वसीले पोलियो वायरस के फैलाव की रोकथाम की कौमी कोशिशें जारी रखने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। अक़्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे और आबने बाबरु मंदब के जरिए मामूल की आमदोरफ्त की बहाली पर जोर दिया है। जापान में जारी एशियन गेम्स में खवातीन के क्रिकेट मुकाबलों के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: जी
1: जो सरकारी एदाद शुमार हैं उसके
0: 8 मिलियन से आपका मराद है 80 लाख
1: 80 लाख हिंदू,
0: 80 लाख लोग,
1: लेकिन जो सेंसस है उसमें अब तक जो है वो 5 मिलियन की बात की जाती है।
0: ठीक है।
1: इनके पास कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं था
0: जी
1: जिसकी तहत आप किसी शादी को रेगुलेट कर सके।
0: ठीक है।
1: तो ये पाकिस्तान बनने के बाद ये पहला ऐसा कानून था जिसके तहत आपकी शादी के रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन पैदा हुआ। अदरवाइज नादरा ने
0: जी
1: एक अरेंजमेंट किया था 2006 में,
0: ठीक है,
1: जब साउथ पंजाब से एक हिंदू फैमिली को जब कार्ड बनाने की बात आई तो नादरा ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है हमारे डाटा में, हमारे सिस्टम में, कि बगैर शादी के सर्टिफिकेट के आपका CNIC बना जाए।
0: ठीक है।
1: क्योंकि उसी वक्त नादरा में भी रिफॉर्म्स हो रहे थे, मैनुअल किस्म के CNIC बनते थे, उससे वो डिजिटल की तरफ जा रहे थे, तो जाहिर है वो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी पूरी होनी थी
0: जी।
1: तो उस वक्त से ये प्रोसेस शुरू हुआ कि इस पे काम करना चाहिए। फिर जब 18वीं तरमीम हुई, माइनॉरिटीज जो हैं वो सूबाई सब्जेक्ट बन गए
0: जी,
1: तो फिर कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, कुछ हुकूमती हमारे जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी ये सोचा कि ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सिंध में रहती है
0: जी,
1: और जो सबसे ज्यादा बिजनेस होल्ड करती है, एग्रीकल्चर में उनका बहुत बड़ा रोल है, तो इस कम्युनिटी के ये जो पर्सनल लॉज हैं उस पे भी काम होना चाहिए। शुक्र है कि इस वक्त सिंध में इफेक्टिवली सिंध हिंदू मैरिज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 से राइजुल अमल है, और उसमें जो बुनियादी फीचर्स हैं उसके कानून के, उसमें एक तो एज का तायुन हो गया।
0: ठीक है।
1: क्योंकि 2013 में सिंध में एक कानून बना था चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट,
0: ठीक है,
1: 2013, उसमें 18 साल की उम्र का तायुन था कि 18 साल से कम उम्र की किसी बच्चे बच्चे की शादी नहीं हो सकती। लिहाजा हमारे यहाँ जो शादियां होती थी वो 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल में भी हो जाती थी, उसकी कोई रेगुलेशन उस तरह से नहीं थी।
0: बिल्कुल सही।
1: जब कानून आ गया तो जाहिर है हिंदू मैरिज एक्ट में भी उसको ये इंश्योर किया गया कि शादियां दो हिंदू बच्चे और बच्ची के दरमियान 18 साल से उम्र होने के बाद हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू, शादी हमारे यहाँ जरूरी नहीं है कि कोई पंडित करे, हर कम्युनिटी का अपना अपना पंडित है।
0: बिल्कुल ठीक।
1: और इस कानून की खूबसूरती यह है कि आप अपनी शादी जिस तरीके से भी करना चाहें,
0: ठीक है,
1: जो आपके रिचुअल्स हैं ट्रेडिशंस हैं उसके तहत कोई भी शादी कराए,
0: ठीक है,
1: सरकार का उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
0: बिल्कुल सही।
1: हमारे यहाँ 4 फेरे होते हैं, 7 फेरे नहीं होते।
0: ठीक है।
1: इंडिया में जो हिंदू रहता है उसके पास 7 फेरे हैं,
0: ठीक है।
1: उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे हिंदू हैं जो नानक पंथी कहलाते हैं या बाबा गुरु नानक को मानने वाले हैं, वो फेरे नहीं खाते।
0: अच्छा।
1: वो लावा लेते हैं गुरुद्वारे में।
0: अच्छा।
1: तो उसकी भी बाइंडिंग नहीं है कि आपको 4 फेरे खाएंगे तो इस कानून के तहत आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी, ऐसा कोई उसमें नहीं है। तो ये जो इंक्लूसिवनेस है इस कानून की वो विजिबल है, वो अच्छी है।
0: बिल्कुल।
1: तीसरी बात जो इसमें है, हमारे यहाँ तलाक का तस्वीर नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: हमारे यहाँ जुडिशियल सेपरेशन होती थी,
0: ठीक है,
1: और जुडिशियल सेपरेशन का जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो ये था कि लड़का या लड़की सेपरेट तो हो जाते थे लेकिन वो शादी नहीं कर सकते थे।
0: अच्छा।
1: यही अजाब था औरत पे कि वो इस बाइंडिंग की वजह से वो दूसरी शादी नहीं उसकी हो पाती थी। मर्द तो चलो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, कभी कभी ट्रेडिशंस या बाकी चीजें उस पर कुछ ज्यादा असरअंदाज नहीं होती, तो ये कम अज कम उसको ये तय हुआ कि अब अगर अलग होना है तो आप तलाक या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो उसमें आर्टिकल है,
0: ठीक है,
1: वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये फैसला कोर्ट करेगी, पंचायत नहीं करेगी।
0: बिल्कुल ठीक।
1: एक और बात जो मैं समझता हूँ एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट
0: जी,
1: हमारी औरत जब विडो हो जाती थी, बेवा हो जाती थी, विधवा हो जाती थी
0: जी,
1: तो उसकी शादी का कोई पिछला प्रैक्टिस हमें मिलता नहीं था। मैंने अपने शहर में अपने मोहल्ले में ऐसी खवातीन भी देखी जिनकी शादी के 1 महीने के बाद उनके शोहर की डेथ हो गई।
0: ठीक है
1: किसी हादसे में, किसी बीमारी की वजह से।

0: वो बेचारी 80-80 साल की हो गई, उन्होंने दोबारा शादी नहीं की क्योंकि हमारी सोसाइटी उसको इनकरेज नहीं करती थी। इस कानून में री मैरिज ऑफ वुमन है।
1: ओके,
0: तो मैं समझता हूं कि ये जो कानून है वो जेंडर बायस नहीं है,
1: ठीक है,
0: और स्टेट लॉस से कहीं भी कंट्राडिक्शन में नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: आखिरी बात, शादी को धोखेदेही होती है, फ्रॉड होते हैं, उन चीजों को रोकने के लिए यहाँ पे सजा और जजा का तायुन किया गया है।
1: बिल्कुल।
0: तो एक ऐसा कानून जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स की, उसको ये प्रोटेक्ट भी करता है। सबसे विक्टिम जो होने वाली खातून है, औरत है, उसको ये कानून प्रोटेक्शन देता है, वो चाहे मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो या मेरी बीवी हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जितने भी फीचर्स हैं इस कानून के, वो सिंध की मौजूदा हालात और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके आईन मुताबिक है और उस पर अमल हो रहा है।
1: बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताइए कि फिर तलाक के क्या अब ग्राउंड्स क्या मुकर्रर किए गए? आपने तो कहा ना कि इससे पहले हिंदुओं में ये तसव्वुर नहीं था, लेकिन अब ये तसव्वुर अगर क्रिएट किया गया है या कर रहे हैं इसको, तो क्या तलाक के ग्राउंड्स हो सकते हैं?
0: देखिए, जो ग्राउंड्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए चाहिए
1: जी,
0: वो आप अपनी सोसाइटी के जो हालात हैं उसको नजर में रख के आप डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वायलेंस है,
1: ठीक है,
0: हमारी सोसाइटी का एक सच है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो उसमें लड़कियां मार के पीटते रह जाती थीं, उनको हम वालदेन सिखाते थे कि बेटा तेरी अब ये डोली जा रही है, अब अर्थी आएगी ससुराल से, आप वापस नहीं आएंगे, आपका घर वो है,
1: ठीक है।
0: तो उसके दरमियान इस वल्नरेबिलिटी को जो है वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे,
1: ठीक है।
0: अब इसमें आप अगर क्रूरिटी है, उसमें टॉर्चर है, उसमें मेडिकल ग्राउंड्स हैं, मेल फीमेल अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो वो डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है कोर्ट को, या मजहब तब्दील अगर कोई करता है,
1: ठीक है,
0: तो उसमें भी ये है कि जो विक्टिम पार्टी है, शोहर अगर मजहब तब्दील करता है तो बीवी कोर्ट में जाके उससे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ले सकती है,
1: ठीक है,
0: और अगर औरत कन्वर्ट होती है तो उसका हस्बैंड जाके कोर्ट से वो डिक्री ले सकता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। तो इस तरह से, या डिसअपीयरेंस है, एक बंदा लंदन चला गया, अमेरिका चला गया, दुबई चला गया, गायब हो गया 4 साल 3 साल, अब औरत सारी जिंदगी बैठी रहेगी, तो वो कोर्ट में जाके अपना वन साइडेड डिसोल्यूशन का डिक्री ले सकती है,
1: ठीक है।
0: तो ऐसे मतलब हालात के मुताबिक हम समझते हैं कि जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है, क्योंकि शादी एक सेहतमंद अमल है और सोसाइटी इस तरह से परवान चढ़ती है, हमारी हर कौम को जनरेशन चाहिए, नौजवान चाहिए उनको ले जाने के लिए, तो उसमें इनसिक्योर थी खातून इस कानून के बाद। मैं समझता हूँ एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए बाप, एज ए भाई, एज ए शोहर, इससे औरत और मर्द दोनों का जो रिश्ता है वो महफूज हुआ है इस कानून से।
1: बिल्कुल ठीक। अच्छा अब आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि सिंध में, क्योंकि कई बरादरियां हैं, आपने जैसे खुद कहा कि जो हिंदू बरादरी है उसके कई फिरके हैं, कई उसके अंदर भी सब डिविजन्स हैं, सो क्या सब ने इसको जो है वो खुले दिल से कबूल किया इस कानून को, या कोई आपको ऐसी नजर आती है चीजें कि कुछ जो है लोग उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है?
0: देखिए, हमारे यहाँ जो हिंदू पॉपुलेशन है
1: जी,
0: उसका 92% वो कॉस्ट्स हैं जिनको हम शेड्यूल कॉस्ट कहते हैं।
1: बिल्कुल ठीक है।
0: और वो बाय प्रैक्टिस हिंदू है। जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो तस्वर है वो सोशो इकोनॉमिक क्लास है,
1: ठीक है,
0: लेकिन हमारे जो रिचुअल्स है वो कॉमन है।
1: अच्छा।
0: वही पंडित उनका हो, अपनी बिरादरी का हो, हमारी कम्युनिटी का हमारा पंडित हो, लेकिन उसको फेरे खाने, वही मंत्र पढ़ने,
1: ठीक है,
0: तो शादी का जो तरीकेकार है वो भी ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी 4 फेरे खाते हैं, हम भी 4 फेरे खाते हैं,
1: ठीक है,
0: लेकिन ये जो बाकी मामलात हैं वो तो सब पे अप्लाई होते हैं, 18 साल से कम उम्र की शादी का तो सब पे ये लागू होता है कि वो मुसलमान हो, कोली हो, भील हो, हिंदू, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी हो. तो ये भी एक अच्छी बात है इस कानून की कि ये ऐसा कानून है जिसमें पाकिस्तान में रहने वाली तमाम जातें जिन जो भील, कोली, मेघवार, जिनकी मेजॉरिटी है
1: जी बिल्कुल,
0: और जो अपर कास्ट जिनको कहा जाता है सो कॉल्ड, वो भी इसी कानून को मानते हैं और उनकी प्रैक्टिसेस सेम है, इसलिए ये कानून सब पे राइजुल अमल है.
1: बिल्कुल सही. अच्छा, अब मेरी अब अगली आपसे बात पूछना चाहूंगी जो मेरे एक इंटरेस्ट की है कि देखें, मुझे सिंध के हद तक तो ये पता था कि उससे पहले पंचायत के जरिए शादी होती थी, ठीक है, और उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन इतनी इन्वॉल्व नहीं थी. लेकिन अब पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हजारों शादियां हो चुकी हैं. चले हम उन लोगों को ले लेते हैं जो इस कानून से पहले यंग कपल्स हैं, इस कानून से पहले जिनकी शादियां हुई, उनके लिए अब क्या मतलब हुक्म है कि वो क्या दोबारा शादी करें या क्या करें, आप बताइए.
0: इस कानून में ये भी खूबसूरती लिखी हुई है कि जो शादी अब हो रही है वो 15 दिन के या 45 दिन के अंदर उसको रजिस्टर्ड होना है.
1: अच्छा,
0: मेरी शादी को 38 साल हो गए
1: जी,
0: कहीं रजिस्टर्ड नहीं है
1: जी, ठीक है.
0: तो मैंने साल पहले अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराया.
1: अच्छा,
0: तो इस कानून के तहत ये भी हो सकता है कि आप पुरानी शादी भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं.
1: बिल्कुल. नंबर वन, उससे क्या फायदा होगा हासिल?
0: फायदा ये होगा कि हम बाहर ट्रेवल करते हैं, पासपोर्ट बनाना है, या मेरी शादी को, मेरी बीवी को या मुझे, हमारे अज़दवाजी रिश्ते के हवाले से कोई डिस्प्यूट सामने आ जाता है,
1: ठीक है,
0: तो वो कैसे एस्टेब्लिश करेगी या मैं कैसे एस्टेब्लिश करूंगा, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए.
1: तो आपने डॉक्यूमेंटेशन
0: जी कर दी?
1: कर दी.
0: उसके बाद जो पंचायतों का रिवाज था, देखिए जरूरत इजाद की माँ है
1: जी, बिल्कुल ठीक है.
0: जब कोई और अरेंजमेंट नहीं है
1: जी,
0: तो जाहिर है पंचायत एक सपोर्ट सिस्टम है जो इस सोसाइटी के मामलात को चला रही है
1: जी, बिल्कुल.
0: वो एक सर्टिफिकेट बना के दे देते थे. अच्छा, एक और जो गलतफहमी लोगों में पाई जाती है कि जो शादी कराएगा उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ऐसा नहीं है
1: जी. अच्छा,
0: इस कानून में शादी कोई भी कराए,
1: ठीक है,
0: कोई भी पंडित करा दे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है
1: जी,
0: वो एक पंडित होगा जो जिसके पास, जिसको हम रजिस्ट्रार कहते हैं या जो भी कहें
1: जी,
0: वो सर्टिफिकेट देगा,
1: ठीक है,
0: और उसके पास वो कपिल को ले जाएगा वो पंडित जिसने शादी करवाई थी.
1: अच्छा,
0: ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन पंडित के पास भी रहे, जिसमें शनाख्ती कार्ड बुनियादी जरूरत है, माँ बाप के कार्ड चाहिए, उसके बाद दो गवाह चाहिए. तो ये एक ऐसा तरीका है कि जहां से इनिशिएट होती है वो रेगुलेशन.
1: अच्छा, और ये सिंध का जो कानून है हिंदू मैरिज एक्ट, वो के खैबर पख्तूनख्वा के मैरिज एक्ट से इस तरह मुख्तलिफ है कि उधर उन्होंने कहा है कि जी वो जो मैरिज के लिए खास पंडित जो है उनको रजिस्टर किया जाएगा, जबकि आपके सिंध के अंदर ये नाफिजुल अमल है कि कोई भी शादी करवा के जो रजिस्टर करते हैं पंडित उनके पास रजिस्टर करवाया जा सकता है. जिसमें जो इंक्लूजन का एक और तरीका हमें नजर आता है कि तमाम जो बरादरियां हैं जो अपने अपने तरीके से शादी कर रही हैं या अपने रिचुअल्स को ज्यादा अहमियत देती हैं, वो उन सबको अहमियत दी गई है कि आप अपनी तरीके पर शादी कर लीजिए और वापस आइए, और ये पंडित जो है ये रजिस्टर करते हैं सब हिंदुओं की शादियां, तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर ले. क्या यही मकसद है?
0: देखिये, कानून चारों सूबों में और कैपिटल टेरिटरी में वही है
1: जी, बिल्कुल ठीक है.
0: फर्क आता है रूल्स में,
1: ठीक है.
0: रूल्स हर सूबा अपने तरीके से बनाता है, क्योंकि पंजाब
1: हाँ
0: और बलूचिस्तान ये वो दो सूबे हैं इंक्लूडिंग केपीके या खैबर पख्तूनख्वा
1: जी,
0: जिन्होंने कौमी असेंबली में पास किए हुए कानून को एडॉप्ट किया था.
1: बिल्कुल ठीक.
0: सिंध ने अपना कानून बनाया
1: जी, ठीक है,
0: लेकिन वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक रहा. उसके बाद अमेंडमेंट हुई 2018 में, जिसमें वो कॉम्प्रहेंसिव कानून बना,
1: ठीक है.
0: तो इसमें कोई फर्क नहीं है. और अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने या असेंबली ने जो कानून पास किया है उसमें हर वो पंडित जो रजिस्टर्ड होगा वही शादी कराएगा, ये रूल्स में हो सकता है, कानून में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई.
1: बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि लोगों की जिंदगी पे, खासतौर पे औरतों की जिंदगी पे इससे क्या फर्क पड़ेगा?
0: ऐसा नहीं होता कि कानून बन गया और उस पर अमल शुरू हो जाएगा. उसके लिए हुकूमतों को, सोसाइटी को, अवेयरनेस देनी पड़ती है, और आपको पता है इस बात का, मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, इसलिए कि आपने एक पूरा कैरियर बनाया है रिसर्च में, और आप जो ह्यूमन राइट्स के जो सेक्टर्स के या जो विक्टिम्स हैं उनको सुना भी है, देखा भी है। 92% जो लोग हैं वो देहात में रहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो शिनाख्ती कार्ड भी नहीं बनाते, ना उनको कहीं ट्रेवल करना है। अब तो हुकूमत ने उसको फिर एक काउंटर करने के लिए कि जिस बच्चे का बेफार्म नहीं बनेगा, बना हुआ होगा, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा स्कूल में।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा, बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत का वो प्रोग्राम है जिसमें पहली दफा वुमन एम्पावरमेंट दिखने को मिलती है, उनके शिनाख्ती कार्ड भी बने, उनके बैंक अकाउंट्स भी बने, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है।
1: ठीक है।
0: शादियां रजिस्टर्ड कराना न कराना, अब उसके लिए प्रॉब्लम ये, एक तो इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, बैकवर्डनेस है कि वो देहात में रहते हैं, उनकी एक्सेस नहीं है यूनियन काउंसिल तक या टाउन कमेटी तक या म्यूनिसिपल कमेटी तक।
1: ठीक है।
0: दूसरी तरफ जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो कस्टोडियन है इस कानून का
1: जी,
0: उसमें भी स्पिरिट की कमी है, उसमें भी जज्बे की कमी है।
1: ठीक है।
0: उनको भी वो गाइडलाइन उस तरह से, शायद हम पूरा सिंध घूमे हैं, पूरा पंजाब घूमे हैं, बलोचिस्तान तो खैर हम नहीं गए, बाकी सूबों में हमने जिस तरह से जाके लोकल गवर्नमेंट के अफसरान के साथ, पंचायतों के साथ, बार एसोसिएशंस के साथ, लेकिन उस तरह से अभी तक शादियां रजिस्टर्ड नहीं हो रही, पंडित रजिस्टर्ड नहीं हो रहे।
1: ठीक है।
0: एक और जो इश्यू आ रहा है
1: जी,
0: कि सिंध गवर्नमेंट समझती है
1: जी
0: कि जो लोकल काउंसिल्स हैं, चाहे वो यूनियन काउंसिल है, टाउन कमेटी है, म्यूनिसिपल कमेटी है, वो आजाद काउंसिल्स हैं, उनके पास अपना फोरम है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इसलिए हम कोई यूनिफॉर्म फीस उस पे राइज नहीं कर सकते।
1: ठीक है।
0: तो किसी यूनियन काउंसिल ने 100 रुपए रखी है, किसी ने 1000 रखी है, किसी ने 2000 रखी है, किसी ने 1 साल मुद्दा रखा है, किसी ने 2 साल रखा है।
1: ठीक है।
0: तो उसकी वजह से भी हमारी फीस है, पंडित बहुत गरीब होते हैं, वो शादियों से बाकी काम काज क्रियाक्रम होता है उससे कुछ जो उनको मिलता है वो मिलता है, तो उस पर अभी काम जारी है, उसको अभी और अवेयरनेस की जरूरत है, उसको पुशअप करना पड़ेगा, तब लोग आके अपनी बच्चियों को, बच्चियों की शादियों को रजिस्टर्ड करेंगे ताकि उसका कोई फ्रूट उनको मिल सके। दूसरा, मैं आपको ये भी कह दूं कि हमारी खवातीन के अभी बहुत से केसेस जो हैं वो कोर्टों में मौजूद हैं जो इस शादी के कानून के बाद हुआ है, मगर मेरी शादी पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं कौन सी रेमेडी ले सकता हूँ कोर्ट से?
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो अब हमें इस पे फोकस करना चाहिए, लोगों को हम हर जगह जाके यही कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से, एनजीओ से, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनियन काउंसिल पे, टाउन कमेटी पे, उनको भी कहते हैं कि आप अपने इलाकों में जो पंडित हैं उनको रजिस्टर करें ताकि वो जो शादी कराने वाला पंडित है उसको धक्के ना खाने पड़े, वो आसानी से पहुंचे और वो सर्टिफिकेट है वो उनको मिल जाए ताकि वो अपनी सिविल डॉक्यूमेंटेशन का जो इनिशियल स्टेज है उसको पूरा कर सकें।
1: बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। हमारी बात हो रही थी कृष्ण शर्मा जी से, और शर्मा जी ने बहुत अच्छा सैर हासिल जो है गुफ्तगू की है सारे चीज पे। मैं अपने सामईन के लिए इस पूरे जो भी हमारी गुफ्तगू रही आज उसका थोड़ा सा आदा करना मुनासिब समझती हूँ। तो मैं जैसे कि बताना चाहती हूँ कि किशन शर्मा जी ने कहा कि एक तो जो ये मैरिज एक्ट है, ना सिर्फ ये जो अब शादियां की जाएंगी उनको रजिस्टर करेगी वो शादियां, बल्कि जो इससे पहले, इस मैरिज एक्ट के बनने से पहले शादियां हो चुकी हैं, पुरानी शादियां हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए भी ये मैरिज एक्ट काम करेगा। इसका मतलब है कि पुरानी शादियां भी इस मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर की जा सकती हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा कि क्योंकि सिंध में जो हिंदू बिरादरियां हैं जिनके मुख्तलिफ रस्म व रिवाज हो सकते हैं, उनके मुख्तलिफ रिचुअल्स हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये इजाज़त दी गई है कि हर बिरादरी अपने अपने हिसाब से शादी करे, लेकिन एक पंडित जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्तस होंगे या जो जिनको हुकूमत पाकिस्तान ये लाइसेंस देगी कि वो जो है मौजूद हैं, उनके पास ये शादी करवाने के बाद रजिस्टर करवाई जा सकेगी, और शादी कायम होने के 15 से लेकर 45 दिनों के दरमियान में ये शादी रजिस्टर करवाना जरूरी होगा। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज पर रोशनी डाली कि अब बहुत एक खुशाइन बात यह भी हुई है कि 18 साल से कम उम्र में कोई हिंदू शादी नहीं हो सकेगी. इसका मतलब है कि लड़का और लड़की की दोनों की उम्र कम से कम 18 साल होगी. और ये उसी बात का एक बाजगश्त है क्योंकि हमारा आईन कहता है कि तमाम पाकिस्तानी शहरी आईन और कानून के नजर में एक है. और फिर हमारा जो कानून बना है जिसमें हमने ये प्रोविजन रखी है कि 18 साल से कम उम्र ना लड़की और ना लड़का इनको शादी नहीं हो सकेगी. और अब अगर हिंदू बरादरी के कानून में भी ये बात शामिल कर ली गई है तो इससे ये नतीजा निकलेगा कि तमाम पाकिस्तानी शहरी एक जैसी उम्र में शादी कर रहे होंगे 18 साल. और ये एक होमोजेनेसिक कानून बन जाएगा और तमाम शहरियों के लिए एक जैसी बात होगी. तलाक के लिए जो ग्राउंड्स की बात हुई है वो ग्राउंड्स वही हैं. डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, डिसअपेयरेंस ऑफ वन पार्टनर हो सकता है कि एक पार्टनर जो कि हक़ ज़ौजिया 2 या 3 साल से नहीं कर रहा अदा, उसके खिलाफ जो है वो यकतरफा डिक्री भी ली जा सकेगी. और इसके अलावा अगर ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोई भी एक पार्टनर अगर इनफर्टिलिटी का शिकार है या वो हक़ ज़ौजिया अदा करने के काबिल नहीं है तो दूसरा जो पार्टनर है इसको मेडिकल सर्टिफिकेट के जरिए साबित करके अदालत से डिक्री ले सकेगा ताकि उसकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए. मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए.
0: थैंक यू मैम. मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि पाकिस्तान जैसे सबका है, मजहब तो हर एक का अपना अपना है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन मेरा मुल्क हम सबका है,
1: बिल्कुल.
0: तो ये मैसेज जिस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन किया है आपने
1: जी,
0: मैं जाती तौर पे तो बहुत उससे मुतासर हुआ.
1: बहुत बहुत शुक्र
0: कि मुतहद पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान बन सकता है.
1: बिल्कुल सही. तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं. मुत्तहिद पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान. खुदा हाफिज.
2: दिस इज FM 101.
3: एंड नाउ यू आर ट्यून्ड इनटू
4: FM 101.
5: You're listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
2: This is FM 101.
6: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I.

0: 101.1 FM का लाहौर स्टेशन और FM 101 के लाहौर स्टेशन से मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे और आपकी प्रेजेंटर निम्रा अरूज। वेल जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, जिंदगी को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप मेरा पूछते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एक दफा फिर से आप लोगों के साथ हूँ। आज दिन क्या है जी? आज दिन है हफ्ते का सैटरडे और टाइम हो चुका है जी 11:34 और डेट हो गई है जी 19 तारीख सितंबर की और सन है जी 2026। इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ रहता है एवरी सैटरडे लेडीज लाउंज में 11 to 1 मेरा और आपका साथ होता है। और आज जो है ना, आज इस साथ की स्पेशल बात यह है कि आज मैं अकेली नहीं हूँ, आज मैंने और 2-3 लोग बुलाए हुए हैं, उनको तंग करना है मैंने ढेर सारा, ठीक है ना, उनको अच्छा वाला सताऊंगी मैं। ठीक है, तो लेट्स सी कौन है हमारे साथ, अपना तारुफ खुद करवाएंगी।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा इरफान
0: जी। साइमा कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने शुरू में ही आपको डरा दिया थोड़ा सा, तो आप डर तो नहीं गई?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी आपको पता नहीं है मेरा। खैर जनाब, अच्छा आज के दिन हम क्या करते होते हैं साइमा, थोड़ा सा मैं आपको अपना बता दूं कि मैं क्या करती हूँ। मैं कुछ भी नहीं करती, मैं बिल्कुल भी जो है ना वो क्या एक वो जो सीरियस किस्म की चीज़ें होती हैं ना, उनको जल्दी डिस्कस नहीं करती। ठीक है, मेरी कोशिश होती है, आज सैटरडे है, वीकेंड पे इंसान जो है ना वो उसको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, पूरा वीक हम काम करते हैं, कोई भी काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, उसके बाद जो है ना ये 2 दिन हमें मिलते हैं, सैटरडे और संडे, तो इन 2 दिनों को ना हमने इंजॉय करना होता है। तो उसके लिए मेरी कोशिश होती है कि हम अच्छा सा म्यूज़िक सुनें और कुछ हल्की फुल्की सी बातें करें, अपनी रूटीन शेयर करें। चूंकि लेडीज़ लाउंज है तो लेडीज़ लाउंज में थोड़ा सा अपनी खवातीन को भी मद्देनज़र रखना होता है कि उनसे रिलेटेड ज़रूर मैं कोई ऐसी बात लेकर आऊं जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो सके। ठीक है, और बस जरूर। और ठीक हो गया सर, अभी हम प्ले करने जा रहे हैं एक अदर ट्रैक, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वापस आएंगे ना फिर आप लोगों के साथ मजीद बातें करेंगे। और प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए आप लोगों को बता देती हूँ क्या करना है आपने। वैसे तो मैंने ये पॉज किया था, किधर चला गया, ये रहा। ओके, सो प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक तो हमें SMS कर सकते हैं, दूसरा आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। SMS किस तरह से करेंगे आप? आप जाएंगे अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे, वहां जाकर लिखेंगे 101, एक अदद देंगे स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे 4471 पर। और साथ ही हमारा ऑफिशियल पेज है जी फेसबुक पर, FM 101 लाहौर, उस पेज पर जाइएगा, प्यारी सी AI से बनी हुई पोस्ट है जिसने शक्ल बिल्कुल चेंज कर दी है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, शक्ल क्यों चेंज कर देते हैं,
1: फीचर्स आपके काफी,
0: हाँ टोटल चेंज हो जाता है, वो लग ही नहीं रहा होता कि ये ओरिजिनल बंदा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ना हाई हो जाती हैं। तो बहरहाल जी, उस पोस्ट पर जाकर आप कमेंट करेंगे और प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। सो इंजॉय कीजिएगा ट्रैक को, उसके बाद वापस आती हूँ। बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ है रूना लैला जी की और सुनते हैं इसको, स्टिक अराउंड टू FM 101, मुझे कहते हैं निम्रा।

0: B101. Just great music.
1: Step into the world of women and talk about everything that matters to you, from fashion to feelings and everything in between. Welcome to Ladies Lounge with your favorite RJ, Nimra Aruj.
2: Alright, welcome back. Once again, आपको खुशामदीद कहते हैं. जिन्होंने अभी अभी FM 101 tune in किया है, उनको हम कहेंगे welcome. Welcome to my show and welcome to FM 101 Radio Pakistan Lahore. मुझे कहते हैं Nimra Aruj और मेरे साथ मौजूद हैं
3: साइमा इरफान
2: हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा आपका साथ रहेगा एक बजे तक. अच्छा जी, टाइम चूंकि हमारे पास शॉर्ट है, एक अदद कमर्शियल प्रोग्राम हमारे पास चल रहा होता है स्टार्ट में बिल्कुल, जिसकी वजह से जो है ना वो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है. तो आज जो है ना वो मैंने क्या सोचा हुआ था, आज मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं एक सवाल करूंगी. बहुत सारे लोग मुझे ऐसे सुन रहे होंगे जिनको शौक होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको वही शौक जो है बहुत बुरा लगता होगा. शौक क्या है, बहुत सारे लोगों को ना आदत होती है दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की. तो वो कहते हैं ना बिल्ला वज्जा डैडी बनने की. सो माजरत एडवांस में, अगर कोई ऐसा शख्स मुझे सुन रहा है जिसके अंदर ये कीड़ा मौजूद है, मेरा मकसद सिर्फ पूछने का ये है कि भाई आपको मिलता क्या है. क्या मिलता क्या है, एटलीस्ट मुझे बताएं आगे कि आपको, मतलब कोई आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो, कि आपकी लाइफ में या आपके इर्द गिर्द जो है वो कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिससे आपको बहुत इरिटेशन होती हो, और वो इरिटेशन ये हो कि भाई वो बिला वजह आकर ना अपने काम पे फोकस करने के बजाय आपके काम में आके टांग अड़ाता हो, या आपको मशवरे बिला वजह आके, मतलब आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, एक अरसे से कर रहे हैं, बड़ा स्मूथ कर रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक शख्स आता है, सडन आ जाता है, और वो जो नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना था, मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, मतलब इस तरह के कमेंट्स जो है ना वो पास होते हैं. तो अगर कोई ऐसा बंदा सुन रहा है तो वो भी बताए कि भाई आपके अंदर ये कीड़ा है, और ये कीड़ा आपको क्या कहता है, करने को क्या कहता है. और अगर आपके साथ कोई इस तरह का शख्स इन्वॉल्व हो, या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो कि आपको बार बार आके जो है ना वो मजीद आपके कामों में जो है ना वो टांगे अड़ाने की कोशिश की हो, तो आप मुझे बताएं आपने उसको कैसे डील किया, कैसे उसको टैकल किया. साइमा, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है?
3: ऐसे अक्सर औकात होता है, और मैं अगर आपको बताऊं तो मैं जो आजकल की जो जेंजी है, दोनों जेंडर्स, मेल्स का भी बता सकती हूँ, फीमेल्स का भी बता सकती हूँ. जैसे आपने बात शुरू की थी, मेरे जेन में सबसे पहले जो एक चीज है वो रील थी, ट्रेंडिंग रील्स वगैरह तो काफी होती हैं, जिससे लड़के होते हैं अगर वो अग्री करेंगे इस बात से, मस्जिद में जाते हैं तो कोई एक अंकल बैठे होते हैं पीछे, तुम्हारी पेंशन में नमाज नहीं होगी, तुम्हारी इस तरह नमाज नहीं होगी, तुम्हारी इस तरह नमाज नहीं होगी, तुमने वुज़ू सही नहीं किया. फिर वो उनका ये कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे कहते हैं सिर्फ आपकी नमाज कबूल होगी, मेरी तो गई क्यों, आप कबूल करने वाला है. तो ये लड़कों को मुझे लगता है कि वो अग्री करेंगे इस बात. हमने काफी अक्सर औकात देखा हुआ है कि तुमने वुज़ू सही नहीं किया, तुम नमाज सही नहीं पढ़े, एटलीस्ट
2: तुमने कपड़े कैसे पहने हैं,
3: कपड़े कैसे पहने हैं.
2: फीमेल्स को भी ये कमेंट आता है अक्सर, है ना, फीमेल को भी कि भाई तुमने दुपट्टा अच्छे से नहीं लिया हुआ, ये कौन सा कलर पहन लिया, इस तरह के होते हैं ना. मतलब मेरा दिल करे यार मैं ये कलर पहनूं, तो दूसरे बंदे को बड़ा मतलब तंगी हो रही है, क्यों हो रही है भाई.
3: कॉम्प्लीमेंट देके अगले का दिन बहुत अच्छा बना सकते हो,
2: बिल्कुल
3: आपके पास ये है राइट, आपके पास ये एक आपके पास इख्तियार है, और आप उसको गलत वे में इस्तेमाल करके उसका इस तरह मुनासिब नहीं लगता,
2: मतलब एक नागवारियत सी आ जाती है. देखिए हम, मेरा ख्याल है कि किसी की राय को एक हद तक जो है वो कबूल कर सकते हैं, ठीक है, उसको हजम कर सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता, फिर जब एक्स्ट्रा हो जाता है ना, फिर वो डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. फिर आपको, अब मैं अपनी, मतलब ये मेरे साथ कल हुआ, एक साहब काफी अरसे के बाद जो है ना वो आए, और मैं अपना काम एक अरसे से कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रही हूँ, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की, मतलब मेरे बॉसेस ने कभी कंप्लेन नहीं की. अब वो कल साहब आते हैं ना, और मैं जो रेगुलर काम करती हूँ मैं बड़ा अच्छा करती हूँ, अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही हूँ, SOPs का ध्यान रख रही हूँ. अब वो हर थोड़ी देर बाद आके, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना था, आपने ये कर दिया. हालांकि उनके, मतलब मुझे पता है यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे पता है मैंने आधा घंटा पहले आना है, मैंने अपनी क्यू शीट प्रिपेयर करनी है, मैंने इस सिस्टम पर कुछ चीज़ें रखनी है, इस सिस्टम पर कुछ चीज़ें रखनी है, ये मेरे सामने कमर्शियल एक लॉग बुक हमारी पड़ी होती है, तो मैं आती हूँ, मैं इस पर नज़र डालती हूँ थॉरली कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी किस टाइम पे प्ले करनी है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, मुझे मालूम है. बट अगर कोई आए और वो आके बार बार कहता रहे आपने ये देख लिया था, आपने ये कर लिया था, तो वो एक इरिटेशन होने लगती है, यार मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, मैं अपना काम 100% कर रही हूँ, कभी मेरी तरफ से कोई ऐसा ब्लंडर नहीं हुआ. छोटी छोटी मिस्टेक तो देखें इंसान है, ह्यूमन एरर्स हर जगह होते हैं, बट ब्लंडर हो जाना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है. तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ. तो मुझे ना इतनी इरिटेशन हुई कि मेरा सारा दिन दिन आप कह लें कि वो कहते हैं ना बस दिल कर रहा था कुछ उठाऊं और
3: मूड सारा खराब हो गया सिर्फ एक बात की वजह से.
2: मतलब आप मुझे फिर पेन किलर लेना पड़ गई, इतना ज्यादा मैं प्रेशराइज हुई.
3: सी कितना एक्सट्रीम जा सकता है, आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आपकी एक बात किसी की इवन मेंटली भी कितना
2: मेंटली कितना उस बंदे ने मुझे टॉर्चर किया. कि मैं ना नॉर्मली होता है कि मैं अपने हस्बैंड को घर मैसेज करती हूँ निकलने से पहले कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो उन्होंने मुझे बताया आगे से मैंने ना 4-5 मैसेज, अभी उन्होंने देखे भी नहीं है लेकिन मैंने 4-5 मैसेजेस जो है ना उनको पहले यही कर दिए कि आज मुझे फलाने ने जो है वो पागल बना दिया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया. नॉर्मली मैं वेट करती हूँ, मैं घर जाती हूँ उस टाइम पे इनका एक्सरसाइज का टाइम होता है तो मैं ऊपर ही छत पे चली जाती हूँ. छत पे इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिम शिम का, तो वहां पे बैठ के अपनी एक्सरसाइज करते हैं, मैं अपनी सारी स्टोरी सुना देती हूँ. तो मतलब एक अच्छा वो होता है ना, आपने सारा दिन का अपना शेयर करना है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देनी होती है. तो मैं कल इतना इरिटेट हो गई थी कि मैंने ना वही मैसेजेस पे, हालांकि इन्होंने देखे भी कब थे, मेरा ख्याल है शाम में जब मैं घर आ भी गई और ये ऑफिस चले भी गए उस टाइम इन्होंने मैसेजेस देखे थे, लेकिन उफ़ल्ला मैं बता नहीं सकती कि मैं बड़ी मतलब मेरा मुझे था यार कल मेरा शो है मैं सवाल ज़रूर करूंगी. अब मुझे नहीं मालूम कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई बंदा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन अगर कोई सुन रहा है ना तो ज़रूर मैसेज पहुंचाइएगा कि ऑनियर जो है ना वो आपकी मैंने वो मतलब कर दिया, आपको फेमस कर दिया मैंने.
3: दिल का बोझ भी हल्का हो गया,
2: बिल्कुल
3: एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है.
2: ऐसे ही है.
3: और फिर आप क्या करते हो, आपने कहा ना कि वो मैसेजेस इवन कि उन्होंने बहुत देर बाद देखे, बट हम कोशिश करते हैं कि उसको निकालें.
2: हालांकि देखो उनको पता भी नहीं कि वो कौन बंदा है क्या है, लेकिन मुझे ये था कि यार मैं तो पागल हो रही हूँ इस बंदे की बातें सुन सुन के और मुस्तकिल आके ना नेगेटिविटी, ये नहीं किया वो नहीं किया, हालांकि मैंने सब कुछ किया उसके कहने से पहले किया, उसका काम भी नहीं था. ठीक है, एक होता है ना आपको ड्यूटी दी हुई है, आपको कहा हुआ है कि आप मतलब आपने मॉनिटर करना है सारा कुछ कि भाई काम कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. हर बंदे की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हर बंदे को वो पूरी करनी चाहिए. तब बात यह है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं. और मुझे
3: फैक्टर होता है कि आप लोगों से एक तो पर्सनल ग्रज रख लेता है कोई, हाँ, कोई रीजन होगा. यहाँ पे कुछ वो लोग भी होते हैं जिसने हमने बात की कि डैडी बनने का शौक होता है, कुछ जो खावाते हैं अम्मा बनने का उनको शौक होता है, वो कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट हम भी संभाल लेंगे.
2: बिल्कुल, हमने इस पे भी नजर रखनी है, इस पे भी नजर रखनी है. भाई आप पहले अपना काम तो सीधा करें ना, आपको अपने काम का पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, आपको जिस सीट पे एलोकेशन दी गई है आप वो सीट प्रॉपरली संभालें, वो नहीं किया जा रहा. तो आपकी ये चीज़ें, बहुत सारे लोगों की ये चीज़ें ना बड़ी मतलब उस बंदे के लिए जो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है ऑलरेडी, उसके लिए ऑब्वियसली मायूस भी मतलब मायूसी आ जाती है और वैसे ही थोड़ी सी गुस्सा और वो कह लो कि मतलब अजीब तरह का ना मतलब डिसअपॉइंट हो जाता है बंदा. बस मैं तो यही कहूँगी. तो आपके साथ अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ आके ज़रूर शेयर करें. किया क्या था आपने उसके साथ वापसी पे, मतलब बदले के तौर पे आपने क्या किया ये जरूर बताइएगा मुझे. शायद नेक्स्ट टाइम मेरी जब उस बंदे के साथ मुलाकात हो, कोई टकरा हो, तो मैं कुछ आपसे सीख कर जाऊं. अरे जी अभी साहिर अली बग्गा हैं जी और लैला खान हैं, पश्चो ट्रैक है, समझ कुछ नहीं आती, म्यूजिक अच्छा है, सो इंजॉय कीजिएगा. 12 बजने में है जी 5 मिनट, वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद. Stick around to FM 101. अगर आप लोग इस टाइम रोड्स पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव रियली वेरी केयरफुली.

का नथी ब्रावड़े।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम ने कहा है कि वजीर आजम की खुसूसी रिलीफ स्कीम का मकसद कमजोर तबके को सहूलत फराहम करना है। मंसूबा बंदी के वजीर ने पोलियो वायरस के फैलाव के मुकम्मल खात्मे की कौमी कोशिशें जारी रखने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगूर और चागी के अजला में कार्रवाईओं के दौरान 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 7 अहम मकामात पर 5G की आजमाइशी सर्विसेज फाल कर दी हैं। और अब खबरों की तफसील। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा है कि वजीर आजम की खुसूसी रिलीफ स्कीम का मकसद कमजोर तबके को रिलीफ फराहम करना है और किसी भी मुस्तहिक शहरी को जोग्राफियाई महल्ले वकू की वजह से इस सहूलत से महरूम नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में फ्यूल सब्सिडी से मुतालिक कौमी रहबर कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Step into the world of women and talk about everything that matters to you, from fashion to feelings and everything in between. Welcome to Ladies Lounge with your favorite RJ, Nimra Arooj.
1: ऑल राइट तो जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज विद आरजे निमरा और मैं उनके साथ हूँ साहिमा इरफान। उम्मीद करती हूँ आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। और हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि वो लोग जो जिनको बहुत शौक होता है अम्मा और अब्बा बनने का, तो आप लोगों के साथ भी कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो लोग बिला वजह आके मुफ्त के मशवरे दे रहे होते हैं, बिला वजह सर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और अब बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं, तो आप लोगों को कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ? और अगर हुआ है तो आप हमारे साथ शेयर करें आप लोगों ने कैसे उसको हैंडल किया, टैकल किया उस सिचुएशन को। इसी के साथ हम भी अपने
2: बोले
1: हम भी अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे।
2: बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ना इससे एक चीज़ याद आ गई, मेरी बेटी ना अक्सर आके कंप्लेन करती होती थी कि क्लास फेलो है उसकी और ना वो हर चीज़ में उसके साथ इन्वॉल्व होती है, मतलब ये कि वो उसको उससे बात नहीं करना चाह रही या उससे बात कर नहीं रही है, और वो और उसकी फ्रेंड जो है, एक उसकी फ्रेंड है जो बचपन से उसके साथ है, तो वो उसके साथ बैठी बातचीत कर रही है तो वो बिला वजह बीच में ना आके जो है वो घुसती है, मतलब मुस्तकिल जो है वो कोई ना कोई लुक में दे रही होती है, बात वो कर रहे हैं लेकिन इंटरफेयर आके कर रही होती है। तो मैं उसको हमेशा ही मशवरा देती थी कि बेटा कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया करो, बच्चे हैं ना, बच्चों का दिल करता है कि एक दूसरे के साथ खेलें, बातचीत करें, सारा कुछ करें। लेकिन जब मेरे साथ ऐसी, मतलब कल तो मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ हो गई ना जो मैं मुझसे मुझे भूलेगी नहीं वो कभी भी, तो इसलिए शायद मैं ज़्यादा कॉन्शियस हुई भी हूँ, तो मैं अपने बच्चों को ये मशवरा दे रही होती थी। बट अब मुझे समझ में आई कि यार बाज़ुकात इन चीज़ों को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने अपने किसी सीनियर से भी बात की, उन्होंने कहा कि यार लेट इट गो करें, उनकी आदत है, वो ऐसे ही करते हैं। तो मुझे ये लगा यार ये बाज़ुकात नहीं आपसे इग्नोर होता, आपको कोशिश करनी चाहिए कि यार दूसरे के कोई भी हो, दूसरे के काम में ना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है? और जब आपको पता भी लग रहा है कि यार अगले बंदे को नागवार गुजर रहा है, ठीक है, आप उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा कोशिश करें ना कि आप जरा एक साइड पे निकल लें, लेकिन बस आदत है तो फिर आदत है।
1: पर जिनकी आदत होती है ना वो फिर बाज नहीं आएंगे, ये हम लोग समझ सकते हैं या वो लोग समझ सकते हैं जो इससे गुजर रहे होते हैं।
2: बिल्कुल ऐसी
1: जो वो तनकीद कर रहे हैं ना आपके ऊपर, वो इस बात को नहीं समझ रहा, उसकी आदत है, वो कर रहा है, आप उसी से तो परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिफरेंट फिर पहलू होते हैं, स्टेजेस होते हैं कि अगर स्टार्ट का है तो आप कोशिश करें अपने अंदर भी पेशेंस पैदा करने की,
2: पैदा करें
1: कि उसे इग्नोर करें, अवॉइड करें जितना मैक्सिमम हो सकता है, फिर एक लिमिट आती है।
2: बिल्कुल,
1: अगर वो उसको क्रॉस कर रहा है तो फिर आप अपने लिए ऑब्वियसली बातें स्टैंड लेना तो बनता है कि आपकी भी एक बर्दाश्त की हद है, उससे ज्यादा आप कब तक बर्दाश्त करेंगे।
2: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मेरे पास ना कुछ मैसेजेस भी हैं, मेरा ख्याल है कि उनको ऑनियर कर देते हैं, अदरवाइज हमारे लिसनर्स जो है ना वो नाराज हो सकते हैं। 4471 पर हमारे साथ एहसन हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं जी मैम वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगी, आपका शो बहुत ज़बरदस्त ऑसम शो, आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, इतनी सारी तारीफें की हुई हैं, बस करें, और ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच एहसन आपका। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है जी, बाबर अली हैं, कह रहे हैं सिस्टर जी सलाम फ्रॉम बाबर अली, नवाज अली, बहुत सारे नाम हैं, निफाज अली, फ़ाइज अली, मोहसिन खान, अफनान खान, अख्तर खान, गुलदासीर, सैयद नूर ही लिखा है ना, ज़ियाउला एंड ऑल फ्रेंड्स ऑफ कली कॉलेज मालाकंड। ओके, थैंक यू सो मच, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माजरत। अच्छा, कह रही हैं जी सिस्टर जी आप पठान हैं जो पश्तों के सॉन्ग सुनते हैं बाबर अली सवाद से। देखिए मेरी बात सुने, पश्तों का ना मतलब गाने का ताल्लुक जो है वो किसी कास्ट के साथ नहीं है, मेरा ख्याल है हम इंजॉय करते हैं म्यूजिक को। एक वो टाइम था जब मुझे पंजाबी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, ठीक है, मैं चूंकि उर्दू स्पीकिंग हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो मेरे ऊपर से गुजर जाती थी, फिर मैं ना किसी को कहती थी यार ट्रांसलेट करके बताओ। और इस हवाले से एक बड़े मज़े का वाक्या हुआ था मेरे साथ, वो भी मैं बताती हूँ। तो वो टाइम भी गुजर गया, और पश्तो जाहिर सी बात है हमारी रूटीन में हमारे इर्द कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पश्तो बोलता हो, जिसकी वजह से हमें समझ आ जाए, तो हम उसकी म्यूज़िक को इन्जॉय कर लेते हैं, और म्यूज़िक ही होता है इन्जॉय करने वाला, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे साथ ना बचपन में एक चीज़ हुई थी, मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं जो यहाँ पे आरजे भी हैं, मेरे बाद उनका शो होता है, एक दफ़ा ना मैं उनके घर गई हुई थी और उनको पता था कि इसको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती है. उनके घर वालों ने ना मुझसे सवाल किया, सब बैठे हुए थे जैसे हम सारे बैठे हुए हैं, और न्याने न्याने किसको बोलते हैं, मुझसे ये सवाल पूछा. अब मैं ना सुनिए, मेरे बाद उनका शो होता है. एक दफ़ा ना मैं उनके घर गई हुई थी और उनको पता था कि इसको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती है. उनके घर वालों ने ना मुझसे सवाल किया, सब बैठे हुए थे जैसे हम सारे बैठे हुए हैं,

0: के बुरा हाल सबका कि यार इसने क्या जवाब दिया है ना. फिर उन्होंने खैर मुझे बताया न्याने बाल बच्चों को बोल दिए. हाँ बच्चों को बोलते हैं, छोटे बच्चों को बोलते हैं. बट मुझे नहीं मालूम था, मैंने बड़ा बेसाख्ता जवाब दिया था कि मट्टी के खिलौने. तो आपके साथ ये चीजें हो जाती हैं. लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे, मुझे पंजाबी में लड़ाई करना बड़ी अच्छी आ गई है. जब मेरा मुझे गुस्सा आता है ना, मैं पंजाबी में लड़ती हूँ.
1: पंजाबी के डिफरेंट साइड्स हैं. हाँ. अगर आप लड़ाई करें तो वो बहुत एक्सट्रीम भी चली जाती है. पंजाबी दूसरी साइड पे मीठी जबान भी बहुत.
0: मतलब मैं जो बोलती हूँ ना, वो जैसे गुलाबी अंग्रेजी बोलते हैं ना, मैं गुलाबी पंजाबी बोलती हूँ. बहरहाल जी, अच्छा जी. सो अभी आप लोगों के फेसबुक के मैसेजेस की जाने भी बढ़ते हैं. 12:10 हो गए हैं. टाइम चूंकि हमारे पास शॉर्ट है, पहले मैं फेसबुक के मैसेजेस ऑन करती हूँ, उसके बाद कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है. कॉलिंग सेशन में आपने मुझे बताना है कभी आपका वास्ता, कभी आपका टाकरा किसी ऐसे शख्स से पड़ा हो जो बिला वजह की, जिसको आदत हो इंटरफेयर करने की आपके किसी भी काम में, आपकी लाइफ में, तो आपने उसको किस तरह से टैकल किया था. कोई ऐसा वाक्या जो आप कभी नहीं भूल सकते, किसी भी हाल में भूल ही नहीं सकते. मेरे साथ ना मुस्तफ़ा मौजूद हैं, आरजे मुस्तफ़ा, और कह रहे हैं जी आप बड़ी खतरनाक बातें कर रही हैं, जरा आप मुझे बंदे का नाम बताएं किसने आपके साथ ऐसा किया था. कहते हैं मैं पूछूंगा जाके उसको. अब मैंने भी ना बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर किया. मैंने कहा मेरा कोलीग था. अब समझ जाएं ये कोलीग कौन हो सकता है. यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं, ठीक है, मेरे अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत सारे कोलीग्स हैं. तो मुस्तफ़ा अब आप सोचें कि कोलीग कौन था. अच्छा जी, हमारे साथ रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं शादरा से. अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया रियाज भट्टी साहब आपका. बरकत साहब हैं, बरकत जमाली बलोच, थैंक यू जी. मोहम्मद हफीज़ुर रहमान हैं बकर से. मदनी महमूद हैं जी हमारे साथ. मोहम्मद उर्स लगारी साहब मौजूद हैं. ग़ुलाम नबी खान मौजूद हैं. मोहम्मद तारिक मौजूद हैं. कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम निमरा आपी, वेलकम टू द शो. जिंदगी गुजारने के लिए ईमान और आगे क्या लिखा है इन्होंने, मजबूत रखो. सलाम टू ऑल, सलामत रहो, खुश रहो. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका. मनाजिर महमूद मनाजिर हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया. कतर से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं. मोहम्मद हमसा हैं जी हमारे साथ मूसा वाली से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. साजिद इलियास साहब मौजूद हैं जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी. और बहुत सारे मैसेजेस आपके भी. तारिक मिनहास साहब भी मौजूद हैं, शो की तारीफ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया. मलिक मोहम्मद आदिल मौजूद हैं सऊदी अरेबिया से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और फिरोज आलम जान मौजूद हैं हमारे साथ मदीना मुनव्वरा से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. एम एजाज अली हैं शरखपुर शरीफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और ढेर सारे मैसेजेस किए हैं आपने, बहुत सारे लोगों को सलाम दुआ दी है, सबको आपका सलाम पहुंच गया. रियाज भट्टी साहब अगैन, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. ढेर सारे मैसेजेस हैं इनके. अल्हम्दुलिल्लाह मल्ला खेल है हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया भाई. अगेन रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं. इमरजा चौधरी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद बोल रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू. और जी कह रहे हैं स्पेशल सलाम आरजे मसूद साहब को. आप जानते हैं इनको? नहीं भाई, मैं तो नहीं जानती. वैसे कौन है ये, कहाँ होते हैं ये? अमृता चौधरी साहब, ढेर सारे मैसेजेस आपके भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एम नईम टेलर हैं, गुड शो, आप ही सलामत रहें, बहुत शुक्रिया. आरजे वसीम साहब को सलाम दे रहे हैं जी. वसीम भाई को सलाम पहुंच गया आपका. और इतने सारे मैसेजेस हैं ना मेरा, मुझे ये है कि मैं जल्दी से ऑन करूं और उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ले सकें. रियाज भट्टी साहब दोबारा से मौजूद हैं. और खजर हुसैन हैं जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इकबाल मेहदी साहब मौजूद हैं सकरदू से, ओके थैंक यू. खालिद मलिक साहब मौजूद हैं जी, आप भी शो की तारीफ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया. और कह रहे हैं कि जी बाज़ लोगों को समझ नहीं आती, टांग अड़ाने की आदत से अक्सर जख्मी हो जाते हैं. बड़े प्यारे अंदाज में आपने मीठी मीठी कर दी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, एक मेरा ख्याल है गाना प्ले करते हैं या डायरेक्ट कॉल्स पे चलें, क्या कहती हैं आप?
1: कॉल्स पे चलते हैं.
0: कॉल्स पे चलें, चलो ठीक हो गया, कॉल्स पे चलते हैं जी. इसको मैंने रिफ्रेश किया ताकि मुझे पता लग जाए और मैसेजेस तो नहीं है. अच्छा जी, कॉल्स के लिए

8042111001 हमारा टेलीफोन नंबर है, आप लोगों ने हमें कॉल करनी है और कोई मजेदार किस्म का वाकया बताना है आपने, कि कोई ऐसा शख्स किसी ऐसे बंदे से आपका वास्ता पड़ा हो जिसने बिला वजह जिसको आदत हो इंटरफेयर करने की आपकी डेली रूटीन में, ठीक है, आपने उसको किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से संभाला, आपने हमारे साथ शेयर करना है. सो हियर वी गो, लेट्स सी कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. वाओ, रेगुलर कॉलर हमारे. आपको पता लगा क्या हुआ था अभी? अच्छा, उसकी रीजन मैं बताती हूँ. हाँ, वॉल्यूम खोलना पड़ेगा मुझे, तो बेहतर नहीं आप हेडफोन्स यूज कर लें, है ना? मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप बीजीएम यूज करें, मैं हेडफोन्स का बंदोबस्त करती हूँ. स्टिक अराउंड.

0: Alright, let's see who is with us. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Aap ji kya hal hai? Theek ho?
0: Alhamdulillah, main bilkul theek hu. Naam batayega.
1: Main aap ji Ravi de kande de Bodhi Jatt bol rahe hain aap ji.
0: Bodhi Jatt sahab baat kar rahe hain. Kaise hain aap? Theek hain. Acha pehle ek kaam kare, aapke piche se mujhe apni hi awaaz wapas aa rahi hai. To kindly apna radio set band kar dein.
1: Haan ji, aap ji kar deta
0: hu. Okay, thank you so much. Acha mujhe ye bataye kya kehna chahenge topic ke hawale se.
1: میری آپ سامان اسلام آپ جی.
2: وعلیکم
1: آپ جی، یہ کہنا چاہ رہے کہ باقی آپ جی سارے کو بندہ ہے ہر کام کے بھی ٹانگا ڈال لینا
2: ہر جگہ کا یہ خاص ہے کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے وہاں پہ.
0: بالکل. آپ کا کبھی ٹکرا ہوا ہے ایسے کسی شخص سے؟
1: ہاں جی، ہمارے پاس ہی ہے، ادھر تھوڑی دور ہے.
0: اچھا، پھر آپ جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہوں گے، ہے نا؟ دل ہی دل میں کہہ رہے ہوتے ہوں گے لے پھر آ گیا جی.
1: ہاں جی ہاں جی، تو اسی اٹھ کے چلے جانے آپ جی، اور کوئی کام کرنے لگ پے نا، جی نے کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور دینا.
0: صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. تو کبھی کبھی سیریسلی غصہ آیا آپ کو اس کے اوپر؟
1: بڑا آپ کی یہ پتا نہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر لی جائے.
0: اچھا، کنٹرول ہو جاتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. ایسے ٹھیک ہو گیا. چلیں، تھینک یو سو مچ بودی جٹ صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھے گا. بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ہمارے ساتھ ہے بودھی جٹ. اور یار نہیں، ویسے دل تو میرا بھی اس طرح کا کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ
2: غلط ہے.
0: بالکل ایسے ہی ہے. اور مصطفیٰ کے لیے انہوں نے سلام دعا بھیج دیا. اور مصطفیٰ نا میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے نا کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں، وہ میں شیئر نہیں کروں گی کہ کون ہے. مصطفیٰ سیدھے ہو جاؤ، بندے دے پتر بن جاؤ. جی 04221100101 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، اس نمبر پر آپ لوگ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. لیٹ سی نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. السلام علیکم جی،
0: کون ہے ہمارے ساتھ؟
3: بابر علی فرام ملکن درگے سوات.
0: جی بابر علی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟
3: سید جی بالکل آپ ٹھیک ہیں؟
0: الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آپ بتائیے.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
3: اچھا یہ کون سے ٹاپک ہے؟ جو بندہ کسی کے کام میں کام رکھتا ہے.
2: ہاں جی بالکل، ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں، مشورے دے دیتے ہیں بلا وجہ، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان سے.
3: ہاں جی بالکل، یہ بس بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہ کیوں کیا اس طرح کے اس طرح ہوتے ہیں لوگوں، لیکن یہ کہ ہم یہ طرح نہیں کر رہے ہیں. بس ہم جو ہم اپنے ہر انسان کو اپنی مرضی پر چھوڑتے ہیں، بس ہر انسان کی اپنی مرضی، ہم نہیں کرتے کسی کو.
0: ویری گڈ ویری گڈ، آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے؟
3: آپ کا پروگرام 101 جو ہے نا، یہ سنتے تو بات سنو، میں نے اس لیے کال کیا، میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ کبھی کبھی آپ کے یہ 101 پر ہی آتے کہ آپ نے پروگرام یہ
0: اچھا یہ میں آپ کو آن ایئر بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، چلیں، تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ.
2: یہ تھے ہمارے پٹھان بھائی غالباً.
0: بالکل ایسے ہی ہے، بابر علی صاحب موجود تھے، ہمارے خلاف مالا کن سے ہمیں کال کر رہے تھے. اچھا ٹیون کیا ٹیون کیا ٹیون کیا، شکریہ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 101 کو جو ہے وہ کیا کہوں، 101 لگایا اردو میں، ایسے ہی کچھ ہوگا. تو ٹیون کیا کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چینل ہے وہ لگا لیا، ٹھیک ہے، تو اردو میں تو یہی مطلب ہے. تو ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا. سو میرا خیال ہے نیکسٹ ایک اور کال لے لیتے ہیں. لیٹس سی کون ہے ہمارے ساتھ. ویری نائس، آپ پھر آ گئے، بہت شکریہ آپ کا، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، تھینک یو. یہ تھے ہمارے ریگولر کالر جو ہمیں مسڈ کال دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. آپ پریشان ہو گئے، نہیں ہوا کیا آپ کو؟ ये रेगुलर कॉलर कौन से हैं? मैंने भी लगाया है लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही, ये बात किसे कर रही है?
2: दो मिनट कंफ्यूज हो गई, हो क्या रहा है, समझ आया?
0: ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं जो मिस्ड कॉल देते हैं और भाग जाते हैं। अच्छा, कभी आपने बचपन में किसी नेबर की बेल देके भागे हैं?
2: कहीं बचपन में, अभी बड़े होके भी हम भागते
0: हैं। हाँ, आपका तो बचपन अभी भी चल रहा है। मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ,
2: बहुत ज्यादा किया, बहुत एंजॉय
0: बहुत किया। कभी कभी पकड़े गए? कभी कुछ ऐसा हुआ?
2: नहीं,
0: पता लग गया हो कि यार इसी ने बेल दी थी, ये साथ वालों के घर से कोई बंदा निकला था।
2: बिल्कुल भी नहीं गए हम, प्रॉपर ना ग्रुप में जाते थे, चार पांच बंदे, एक आगे खड़ा, एक थोड़ा पीछे खड़ा, एक बेल बजाके फिर भागते थे। बहुत एंजॉय किया है
0: यार, वो टाइम बड़ा मजे का होता है, वो जो टाइम। अब तो फिर भी थोड़ा सा जाहिर सी बात है, अब मैं कोई इस तरह के काम करूँ ना तो भाई बड़ी हो गई हो, तुम्हारी बच्चे जवान हो रहे जवाब यही होता है।
2: कुवत और सलाहियत है ना भागने की, बस बजा दो। एज मैटर नहीं करती।
0: मैं अभी कुछ अर्सा पहले ना उसके साथ, जो हमारी बहुत अच्छी आरजे हैं, आरजे जूपिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, उनके साथ हम गए एक प्लेलैंड। तो वहाँ पे ना वो जो दीवार पे चढ़ते हैं उसको क्या, मुझे स्पेसिफिकली नाम नहीं पता, ठीक है, वो आपने वो हार्नेस पहना हुआ होता है और उसके बाद जो आपने वॉल पे जाके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके ना वहाँ पे एक बजर होता है उसको बजा के तो नीचे आना होता है। जूबिया पीछे पड़ गई कि जी जाना है जाना है। अब मज़े की बात यह है कि जब तक ना बंदा जिम कर रहा होता है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर तक जिम कर रही थी और मतलब अच्छी एक्टिव थी, तो अभी कुछ अर्से से मेरा वो जिम वाली रूटीन ख़राब हुई हुई है तो मैंने नहीं किया, तो उसमें आपका स्टेमिना बहुत अच्छा डेवलप हुआ हुआ होता है। तो जूबिया जो थी ना वो ऊपर तक पहुँच भी गई, एक तो उनकी हाइट बहुत अच्छी है इस वजह से भी, और माशाल्लाह वो यंग है, और मेरा ऑब्वियसली अब थोड़ा सा जो है वो सीनियर्स में थोड़ा शुमार होने लग गया है, तो ऊपर से फिर मेरा वेट अप बढ़ना शुरू हुआ उसकी वजह से, जिम छोड़ने की वजह से, और कुछ खाने पीने की मेरी रूटीन इस तरह की है। तो मैं खैर वहां से जो है ना वो बड़ा करके आई, तो मैंने कहा यार वाकई मतलब मैं आधे रास्ते गई हूँ, ऊपर तक नहीं गई थी, मैं वापस आ गई थी। बाद में ना मेरे गोडे गिट्टे मेरे शोल्डर्स, क्योंकि आप शोल्डर के मतलब वजन आपका सारा जो है ना पड़ा होता है आपके शोल्डर्स पे, सारा वेट आपका उस पे जा रहा होता है। तो जब अगले दिन जो है ना मैं उठूँ, मुझसे खड़ा ना हुआ जाए, मुझसे चला ना जाए, मैंने कहा यार चक्कर क्या है ना, मेरे बाजू दुख रहे हैं ये सारे, मतलब मेरे शोल्डर्स दोनों तरफ से ना दुख रहे थे। फिर मैंने कहा यार देखो जरा, अब पता लग रहा है कि एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर।
2: कोई नहीं, आपने वो मोमेंट एंजॉय कर लिया।
0: हाँ, वो मैंने एंजॉय किया, दिल खोल के एंजॉय किया। और मैं हमेशा खवातीन को कहती हूँ कि अपने लिए ना टाइम जरूर निकालें, ठीक है, हम पड़ जाते हैं घर के कामों में, बच्चों में, बस वही चीजें देखनी है हमने। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो अपना अपनी उनकी आइडेंटिटी ना पीछे रह जाती है कहीं पे, और उनका होता है जी बस सुबह उठना है, नाश्ता बनाया, खाना बनाया, बर्तन समेटे, घर समेटा, काम वाली आई उसे काम करा लिया, मींस कि ये एक रूटीन हमारी चल रही होती है। तो हम अपने आप को टाइम देना छोड़ देते हैं, बाल कैसे हैं, बिखरे हुए हैं, कपड़े आपने कैसे पहने हैं, इन चीज़ों पर हम फोकस नहीं करते। जबकि मुझे ये लगता है कि यार आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना अपना आपको पहले ख्याल रखना चाहिए, भाई हम ठीक होंगे तो हम अपना घर संभाल सकते हैं, तो हम अपने बच्चे संभाल सकते हैं।
2: पर्सनल डेवलपमेंट एक ऐसी,
0: बिल्कुल ऐसे ही है। और आप यकीन माने कि जब आप खुद फ्रेश होते हैं ना, आपको किसी भी चीज से आप फ्रेश हो सकते हैं। बहुत सारी खवातीन विंडो शॉपिंग करके बड़ा इंजॉय कर लेती हैं, फ्रेश हो जाती हैं। कुछ खवातीन वैसे ही बाहर कहीं किसी के घर से हुए हैं, किसी से मिल आए, किसी अपने फ्रेंड्स के साथ हुए हैं, तो वो भी एक फ्रेश हो जाता है। पार्लर चले जाए, अपना एक स्पा डे स्पेंड करके आ जाए, तो वो भी एक अच्छा मतलब एक्टिविटी आपको लगता है। मीन्स कि हर बंदे का ना अपना एक फ्रेश होने का लेवल होता है, सेटिस्फेक्शन होती है आपकी। तो मैं तो जब मुझे ये चीज़ें समझ आना शुरू हुई ना, एक टाइम था मैंने भी अपने आप को ना बस वो कह लो कि अच्छा जी अब घर उठे हैं, काम किया, ड्यूटी पे जाना है, चले गए, यहाँ आना है, आ गए, अपना आप छोड़ दिया था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं ही फ्रेश नहीं हूँगी तो मैं किस तरह से अपना घर संभालूंगी, अपने बच्चे संभालूंगी। और शायद वही वजह है जो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना कि आप अपनी एज से पीछे लगती हैं, तो ये शायद इसकी रीज़न ही यही है कि मैं अपना ख्याल रखती हूँ। मैं अपने मल्टीविटामिन्स पूरे करती हूँ, लाजमी मैं देखती हूँ। वो अलग बात है कि वो थोड़े थोड़े मसले जो है ना, कभी यहाँ से टूटा हुआ, यहाँ से दांत टूट गया, यहाँ से जॉ का मसला हो गया, इस तरह के इश्यूज रहते हैं। वो मेरा ख्याल है हर एक के साथ ही कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। बट द थिंग इज़ कि मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ, मैं अपने अपनी ख़रीदारी लाजमी शौक से करती हूँ। भाई बच्चे कह रहे थे मम्मा आप अपने लिए ले आती हैं, मेरे लिए नहीं। मैं फिर उनको ये जवाब देती हूँ बेटा आपकी जो ज़रूरत की चीज़ है ना वो मैं आपको देती हूँ, ये मेरा टाइम है, ये मैं करूँगी। अगर आइसक्रीम खानी है सब बच्चों के साथ बैठ के खा ली है मैंने, फिर कोई ऐसा एक टाइम आएगा जब मैंने अकेले ने कुछ खाना है। ठीक है, और बच्चों को पता होता है कि यार ये हमारी माँ का ना मी टाइम है, इसमें हमने इंटरफेयर नहीं करना, उससे आप वैसे ही रिफ्रेश हो जाते हैं. उसमें आपको पता होता है आप मेरा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मैंने बच्चों का सारा काम कर दिया, मैं पार्लर चली जाऊंगी, मैं जाके आराम से मसाज वगैरह लेकर आऊंगी वापस और मैं फ्रेश होंगी. इवन उस दौरान मेरे बच्चे मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रहे होंगे, मम्मा कब तक आएंगी, मम्मा कब तक आएंगी. मैं कहा भाई मैं आपका काम सारा करके आई हूँ, अभी ये टाइम जो है ना ये मेरा टाइम है, तो इसमें आपने मुझे तंग नहीं करना. तो वो एक नई एनर्जी आ जाती है. और इसीलिए मैं अपनी खवातीन को ज़रूर ये चीज़ें रिकमेंड करती हूँ कि भाई अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को तवज्जो दें, यही टाइम है, ये टाइम निकल जाएगा, जिंदगी खत्म होना ही होना है. ठीक है, ये तो एक वो आप कह रहे हैं ऐसा ट्रुथ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो अच्छे से चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, है ना.
2: इसमें जब आपकी फैमिली आएगी तब आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए. अगर आप पर्सनली हर तरीके से हेल्दी हैं, अगर आप इंजॉय करें, तो आपके जो रोजमर्रा के काम है ना घर के, मुझे लगता है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे होना शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल, उन पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती.
0: बिल्कुल ऐसे ही है, आपको वो लगता है कि बस ऐसे चुटकी बजा के, मतलब आप खड़े होते हैं ना, फिर आप कर लेते हैं वो सारी चीजें. तो अपनी सेहत पे अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज कोशिश करें कि जहाँ पे ठीक है ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी सेहत के हवाले से, अपनी मेंटल सेहत के हवाले से जो है ना वो कम कॉम्प्रोमाइज करें. वहाँ पे आपको जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए मेरे हिसाब से. अच्छा जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं. कॉल एक और मैं चाह रही हूँ मैं ले लूँ 04211100101 पर, और उसके बाद हम गाना चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
4: अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ, क्या
0: अल्लाह का शुक्र है. अब्दुल्ला भाई आप बताइए, आप ठीक हैं?
4: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है.
0: बहुत शुक्रिया.
4: मैं तो यही कहना चाहता हूँ अभी, क्योंकि ये दुनियाई का काम कभी भी अच्छी तरह नहीं रहेगा, जब एक काम करेगा दूसरा खराब हो जाएगा.
0: सही कह रहे हैं,
4: अपना कर लेना चाहिए और दूसरा जो अच्छा खाना पीना अगर शुक्र हो भी मिल जाए फिर भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेना.
0: बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया, ठीक हो गया. मैंने कुछ नहीं किया इनको बहुत जल्दी थी जाने की. अच्छा, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, ट्रैक ऑन एयर करते हैं और देन आप लोगों की कॉल्स लेंगे. एंजॉय की जगह इसको एंड कीप ऑन डायलिंग 04211100101. आई विल बी राइट बैक.

0: ओके तो जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज विद आरजे निमरा और सायमा और मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन
1: जी? अपी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: जी अपी, मैं अब्दुल मीर बोल रहा हूँ, फरुखाबाद गाँव मेरा, हर चंद है बर्फी वाला मेरा नाम है।
2: अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। कैसे बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, मुझे बताएं क्या कहना
1: चाहिए।
2: उसको आसान लफ्ज़ कहते हैं, बिला वजह लुच तलने का शौक होता है, ऐसे ही होता है
1: ना। ऐसे लोग होते हैं रंग च भंग पाने वाले।
2: हाँ जी हाँ जी,
1: शैतानी नहीं करनी चाहिए।
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा शख्स आपको टकरा?
1: हाँ बिल्कुल, कई बंदे ऐसे होंगे। साढ़े ना घर बड़ा सुकून सी, खिलाफ गल्ला ही बड़िया करता है, हालांकि गल कोई नहीं होंगी। उधर चाह की प्याली पीती लड़ी सपोर्ट, ते मुड़के चाह पी के गया, ते मुड़के जो बाद च होया फिर वो लोगों ने तमाशा देखना होंगे।
2: बिल्कुल ऐसे ही है।
1: साडा प्यारा सलीम दर्जी भी सुनता पिया,
2: ठीक है,
1: रजा भी सुनता होगा, एसम शाह समझी रेडियो क्लब वालों तुहानू बहुत बहुत सलाम।
2: वालेकुम असलाम, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और जी ये तो थे अब्दुल हमीद बर्फी वाले हमारे साथ। अच्छा इन्होंने टेलर का, सलीम साहब हैं हमारे टेलर कॉलर हैं, उनका जिक्र किया, मेरे ना माइंड में एक चीज़ आ गई फ़ौरन ही। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने कपड़े सिलवाए और ठीक ठाक उन्होंने पैसे लिए, मैं बड़ा हैरान हुई। नॉर्मली मैं रेडीमेड ले लेती हूँ, तो खैर वो मैंने सिलवा तो लिए, उसके बाद ना मेरी सेटिस्फेक्शन भी नहीं हुई कि वो वाले नहीं सिए। और मज़े की बात यह है कि आगे ना एक शादी आने वाली है, मैंने एक सूट रखा हुआ है और मैं, वो मुझे असल में गिफ्ट आया था सूट, वेलवेट का सूट है, और मैंने ना अंकल से पूछा, अंकल आपकी, आप कितनी स्टिचिंग ले रहे हैं? अंकल ने कहा जी 4,000 रुपये मैं ले रहा हूँ वेलवेट के सूट की स्टिचिंग के लिए। मैं उनकी शक्ल दे मैंने कहा यार पता नहीं, सूट तो खैर अच्छा है, मतलब ब्रांड का सूट है, साज उसके ढेर सारे पैचेस हैं। अब मैं ना शॉक में पड़ गई, मैंने कहा ये गिफ्ट ही मुझे महंगा पड़ गया, अब मैं इसका क्या करूं? तो दर्जी भाई हमारे जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब ठीक ठाक अमीरों वाले काम कर रहे हैं, अमीर बंदे हैं माशाल्लाह, तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए वैसे इस हवाले से। कभी आपका
0: वेलवेट का सूट इतने सारे पैचेस के साथ 4,000 मुनासिब
2: नहीं? नहीं नहीं नहीं नहीं, पैचेस की अभी बीच में कीमत नहीं थी।
0: अच्छा,
2: कीमत सिर्फ वेलवेट के सिंपल सूट की थी। तो मैंने खुद सोचा यार उसके तो पैचेस इतने सारे हैं, काम वाले पैचेस हैं उसके साथ अटैच करवाने हैं, और वो तो आराम से मेरा ख्याल है कोई 3-4 हज़ार रुपया तो पैचेस का लग जाना है, तो वो 8-10 हज़ार रुपये का मुझे सूट इस तरह से पड़ जाएगा। तो मैं उस दिन की मैं पिट रही हूँ। फिर मैं यही कहना चाहूंगी जो लोग गिफ्ट देते हैं ना, थोड़ा सा या तो फिर रेडीमेड दे दिया करें,
0: ठीक है,
2: फायदा तो हो किसी को, या फिर अगर देना है तो फिर इस तरह का दें कि अगले को सिलवाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैं ना सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ अच्छा मैं सिलवाऊँ ना सिलवाऊँ, क्या करूँ इसका ना, पिछले साल भी बड़ा रह गया था, और प्रजाइट सी बात है ऐसा ऐसा ट्रेंड खराब पुराना हो जाता है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं ख़वातीन को। तो मैं मतलब दर्जी भाई प्लीज़ ऐसे तो ना करें, थोड़ा सा जो है वो डिस्काउंट मिलना चाहिए हमें भी।
0: दर्जी भाई सुन रहे हैं अगर तो कम कर दें कुछ।
2: हाँ मैं उनके पास जाऊँगी कि देखें मैं FM से आई हूँ, मुझे थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा वाला डिस्काउंट दें। बहरहाल जी ऐसी चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं, मेरा ख्याल है हर औरत का यही रोना है। खैर जनाब, अच्छा अब ये थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे एज के हवाले से, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं, वैसे तो मुझे भी पता है कि अखलाकन किसी भी औरत से उसकी उम्र पूछना मुनासिब बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों ख़वातीन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स क्यों है कि हम अपनी ओरिजिनल अगर एज बता देंगे तो उसे क्या हो जाएगा। कभी आपके साथ हुआ, आपने कभी किसी को अपनी एज गलत बताई हो?
0: नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करती हूँ। मुझे
2: क्या फील होता है आपको?
0: पर्सनली ये बात बहुत बुरी लगती है। अच्छा मुझे एक चीज़ मुझे लगता है कि जो ज़्यादा एक शोभा है इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री जो है, जो और फिर एक्टर्स वगैरह एक्ट्रेसेस जो है, मुझे लगता है उनके यहाँ जो हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ कि ज्यादातर वहां से ये बात चलती है कि वो छुपाते हैं, और फिर ये होता है कि उनको इस चीज की जरूरत होती है कि वो इंडस्ट्री में ये दिखा सके कि हम बहुत यंग
2: है।
0: तो मुझे लगता है एक ये चीज वहां से चलती है, पर मैं पर्सनली बताऊँ मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, भाई जो हो बता दो सिंपल।
2: अच्छा, और मजे की बात ये कि आप एक माइंड में चीज रखनी चाहिए, जब आप बीमार हैं, आप डॉक्टर पे गए हैं, तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाके तो अपनी उम्र सही बताएं ना, क्योंकि वहाँ आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि जो आपको दवाई देते हैं, ठीक है, जो भी आपको मेडिकेशन की जाती है, कोई प्रोसेस इस तरह का किया जाता है, कोई ट्रीटमेंट इस तरह का किया जाता है, उसमें आपकी एज को भी देखा जाता है। इवन आपका जो भी कोई इशू चल रहा है वो डायग्नोस्टिक उसका उस पर ही डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि हर यंग बच्चे हैं उनमें अगर हेयर फॉल हो रहा है, कोई और मतलब कोई दर्द हो रही है, कोई घुटनों में, कोई हड्डियों में, उनकी रीजन कुछ और होगी, लेकिन अगर एक मीडियम एज का या 30+ का कोई बंदा है उसकी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी एज भी सही बताएं।
0: बिल्कुल,
2: मेरे जहन में ना एक खौफ होता था कि यार अगर एज गलत बता दी, और वो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है किसी भी ऑपरेट के लिए, तो वो एनेस्थीसिया तो वो एज के हिसाब से देते हैं, तो अगर एनेस्थीसिया जो है वो आपको अगर आपने एज कम बताई है तो वो कम देंगे, और आप असल में आपकी एज ज्यादा है, तो आपको तो होश आ जाएगा,
0: बीच बोल के बैठ जाएंगे।
2: मेरे दिल में ये खौफ था। तो मैंने सही से बताई भाई।
0: डॉक्टर्स को सही बताती है,
2: सबको सही बताती हूँ, मुझसे कोई पूछे, मैं कहती हूँ यार एज जो है ना वो आपकी एक क्या कहना चाहिए उसको, ठीक है, एक चल रही है चल रही है, उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है, ये तो एक फैक्ट है ना, बट आपका अपना आप इस तरह से आपको रखना चाहिए। एक कुछ लोगों को वैसे ही छोटे बनने का शौक होता है, मतलब अजीब सा शौक होता है, बस वो मतलब बाहर वो नहीं होते लेकिन वो उनको शौक होता है भी हम छोटे ही कहलाएं, तो वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, मतलब ड्रेसिंग, अगर मैं हमेशा ये कहती हूँ यार ड्रेसिंग आपकी सोबर होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको सूट भी करें, ठीक है, और मतलब ऐसा कुछ मैं पहन के आ जाऊँ जो हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उससे थोड़ा हटके हो, तो डेफिनेटली लोग कहेंगे यार इसको क्या हो गया, ये पागल हो गई है। तो पहला जो कमेंट होगा वो यही होगा, इसको क्या हो गया, ये पागल हो गई है।
0: अच्छे से मुझे एक बात याद आई, एक सेलिब्रिटी थी, नाम मेरा तो मुनासिब नहीं है, हाँ, थी, उन्होंने ना क्या किया कि वो 40 साल की हुई थी और उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब क्या हुआ है कि उसके 3 या 4 साल बाद वो 41 अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है।
2: हाँ।
0: तीन या चार साल गुजर चुके हैं। हाँ। आपके 4 साल आगे आ चुके हैं, और फिर आप उसे पब्लिकली लगा भी रही हैं।
2: हाँ।
0: आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप जो भी हैं पब्लिकली आप लगा रही हैं, तो देखने वाला का तो कॉमन सेंस भी यूज करनी चाहिए। अगर आप
2: ऑटोमेटिकली हो जाता है, फिर सारे मजाक बनाते हैं ना, कुछ लोगों को अपने आप को वैसे वो ट्रोलिंग में डालने का शौक हो रहा होता है। बहरहाल जी, ऐसी चीजें तो चलती रहती हैं, साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस भी हैं मेरे पास, और अच्छा रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं, इकबाल मेहदी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सलाम दे रहे हैं और शो की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और कौन कौन है जिसका मैसेज मैंने ऑनर नहीं किया। मुनव्वर अब्बास हैं जी, जाहिद खान हैं, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है, और 1111-0101 हमारा टेलीफोन नंबर है, चेक करते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम निमरा बेटी, आपको और आपकी ये साथी हैं इनको, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से?
3: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूं लाहौर से।
2: जी कैसे हैं आप सर, ठीक हैं?
3: अल्लाह का शुक्र। मैं तो ना जब भी नमाज पढ़ता हूँ दुआ करता हूँ या अल्लाह लोगों से और बुरे लोगों के शर से बचाना, शैतान से और शैतान की चालों से बचाना। ये जो लोग होते हैं ना किसी के घर में ऐसे करने वाले, इनसे बस ना ही मांगनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह ही मदद करता है, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। दूसरा जो आप कह रही थी कि खवातीन को अपना ध्यान रखना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ये जो मियाँ होते हैं ना, मियाँ खामन खामन, इसको अपनी बीवी को ख्याल रखना चाहिए। मैं तो आपकी आंटी का रखता हूँ, रोज लहसुन प्याज बनाता हूँ, रोज सब्जी बनाता हूँ, रोज दे देता हूँ, और जब मेड ना ये बर्तन सर्तन ऐसी
2: करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है,
3: ये इनका काम है कि कभी ये भी कहें आप बैठे में हम आपके लिए अंडा फ्राई बना के रखते हैं, आप तो रोज रखती है हमारे लिए, आज हम लेके आते हैं आपके,
2: आपको मैं और हंसाती हूँ, जरा सब्र करें आप। بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے.
3: تھینک یو.
2: وعلیکم السلام, اللہ حافظ. اچھا میں آنیسٹلی بتا رہی ہوں, میرے میاں سب بھی ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا شروع سے یہی رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ, جیسے میں دن میں گئی ہوئی ہوں, انہوں نے کیونکہ نائٹ شفٹ ہوتی ہیں ان کی, تو ڈے میں اکثر برتن پڑے ہوئے ہیں کچھ, ہے یہ سمیٹ کے جاتے ہیں. پہلے تو نا تھوڑا تھوڑا کھانا بھی بنا دیتے تھے, ہم بھی اس میں ڈنڈی مارنا شروع کی ہوئی ہے.
0: بٹ وہ مساوی ہوتے ہیں نا, یس کر رہے تھے کہ سب کچھ میں کرتا ہوں, کبھی ان کو بھی کرنا
2: نہیں, وہ کہہ رہے میں خیال رکھتا ہوں, مطلب وہ یہ بات کر رہے ہیں.
0: میں کرتا ہوں, مجھے اس بات پہ کہ چلو.
2: ہاں اچھا,
0: بڑی اچھی بات ہے.
2: ہاں جن لوگوں کو کمپلینز, جن خواتین کو کمپلینز ہیں کہ جی ان کے میاں صاحب خیال نہیں رکھتے, تو اس صورت میں تو میں یہ کہوں گی تھوڑا سا نا سیلفش ہو جانا چاہیے بندے کو, ٹھیک ہے. بیوی کو تھوڑا سا اس مقام پہ آ کے نا سیلفش ہو جانا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کا خیال نہیں رکھ رہا نا تو فائن, میں اب لفظ نہیں بول سکتی, ٹھیک ہے اوکے, جائیں آپ, جہاں مرضی جائیں, آپ اپنے لیے جو ہے نا اپنی کسی بھی چیز پہ پھر کمپرومائز مت کریں. آپ خود جو ہے وہ صحت مند رہیں گے تو آپ اپنا گھر سنبھال سکتے ہیں, اور یقین مانیں ماں باپ ہوتے ہیں تو بچوں کو اچھا سنبھال سکتے ہیں, کوئی بھی ماں باپ کی کمی پورا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں, آپ کی خالائیں, آپ کے چاچا پھوپھیاں, جو بھی تعلق اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں بہت پیارے ہیں اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. تو اس لیے کوشش یہ کریں, اگر ٹھیک ہے آپ کو آپ کے میاں صاحب سے شکایتیں ہیں, میاں صاحب نہیں آپ کا خیال رکھتے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ خود اپنا خیال رکھیں, ٹھیک ہے.
0: بالکل بے شک, ہاں
2: گھر کے کاموں میں ہیلپ آؤٹ کرنا, بالکل, بس وہ بھول جاتے ہیں نا, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا ہم ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ یاد رکھتے ہیں سنتیں, اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. چلیں جی, لیٹس سی نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے, اور تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا.
4: جیسے آپ کے آرڈر اور لوہے کا گارڈن.
2: نہیں نہیں, آرڈر میں بالکل نہیں کر رہی ہوں, میں ریکویسٹ کر رہی ہوں. کون سا بات کر رہے ہیں, نام بتائیے گا.
4: جی مائی نیم از محمد عثمان مغل.
2: محمد عثمان مغل سے بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
4: جی میڈم میں شادرا ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. آپ کے شو میں نے پہلی بار کال کیا, لیکن کمبائن میری آپ سے بات ہو چکی ہے.
2: اچھا چلیں, ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں, اور مجھے بتائیں ٹاپک کے حوالے سے کیا بات کریں گے.
4: ہاں مسعود بھائی کے شو میں بات ہوئی تھی, عید کے شو میں.
2: اوکے اچھا ٹھیک ہو گیا, تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے مجھے.
4: نہیں ان کے شو میں نے دو کال کی ہیں, تو آپ کے شو میں یہ میری دوسری کال.
2: چلیں چلیں, خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے شو میں, اور مجھے یہ بتائیں ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گے.
4: ہاں ٹاپک آپ کے تین چار پانچ چھ اکٹھے ہو گئے ہیں, سوچ رہا ہوں کہ کس کے اوپر.
2: نہیں مین سوال تو میرا وہی ہے, کبھی کسی ایسے بندے سے تعلق واسطہ آپ کا پڑا ہے جو بہت زیادہ انٹرفیئر کرتا ہو, بہت ٹانگے اڑانے کی عادت ہو,
4: وہ ہر
2: اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بتانا ہے آپ نے.
4: وہ ہر گھر میں ہوتے ہیں لیکن وہ ہینڈل نہیں ہوتے.
2: نہیں ہوتے. اچھا مطلب میں گھر کی بات نہیں کر رہی, میں اوور آل بات کر رہی ہوں نا. دیکھیں گھر والوں کو تو آپ بیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے گھر والے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہے, لیکن جو باہر والے ہوتے ہیں نا, جو آپ کے انوائرمنٹ میں, آفیشیل انوائرمنٹ میں ہو, یا پھر آپ کے ویسے مطلب ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, کوئی بھی اس طرح کی چیز, تو وہاں پہ تھوڑا برداشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے.
4: میں یہی درج کر رہا ہوں کہ یہ گھر سے باہر جاتے ہیں نا, جب گھر سے ہم کوئی بات لیک کریں گے پھر وہ باہر جائے گی.
2: بالکل ایسے ہی
4: باہر تو جو ہوتے ہیں وہ شرارتی شیطانی یا کو جو بھی کہہ لیں, ان کے پاس جب بات جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ اب اس کو ہم پکڑیں گے, یہ بڑا ہوشیار بنتا رہتا ہے, بڑا شاطر رہتا ہے, اب اس کی شاطری کا پتا چلے گا. جب اس سے وہ سنتے ہیں نا کہ یہ یہ یہ یہ بات ہوئی ہے فلاں فلاں,
2: بتائی نہیں تھی. بالکل بالکل.
4: پھر اس سے بچنا کیسے ہے کہ اس سے بچنا ایسے ہی ہے کہ اگنور کر کے اس کو فیل نہ ہو کہ یہ مجھے اگنور کر رہا ہے, تو بچہ تو نہیں جائے گا اس سے, کیونکہ کہیں نہ کہیں موڑ پہ ملاقات ہو جاتی ہے.
2: بالکل ایسے,
4: جب پھر وہ سامنے آئے گا پھر سارا ریمائنڈ ہو جائے گی بات, یار یہ وہی شخص ہے یہ پھر میرے سامنے, کیونکہ وہ کہتے ہیں شیطان جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے, وہ ہر طرف سے آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے.
2: بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا,
4: تو اس سے مقابلہ کرنا بڑا بہت
2: مشکل ہو جاتا ہے.
4: مشکل ہو جاتا ہے,
2: بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. ٹھیک ہے,
4: آپ کا आपका शुक्रिया मैडम, और आपके साथ ये जो गेस्ट आई हैं इनका भी शुक्रिया।
2: ये गेस्ट नहीं है, ये भी मेजबान है, आपको पता है, ये हमारी आरजे हैं, ठीक है, अपकमिंग आरजे। हाँ बिल्कुल, अभी ये ट्रेनिंग पे हैं और इसीलिए मेरे साथ बैठी हुई हैं।
4: नहीं हमने तो फिर वो गेस्ट ही कहना ना।
2: नहीं गेस्ट थोड़ी हुई, माइक उनके पास है, टोटल उनके पास है माइक, ठीक है चले,
4: क्योंकि पता नहीं ना इसलिए मैंने कहा।
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, चलें, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये तो थे मोहम्मद उस्मान मुगल साहब। अच्छा आवाज, क्योंकि लिसनर्स को मेरी ज्यादा जा रही होगी ना, तो लोग कह रहे होंगे कि मैंने आपका माइक जो है ना वो बटन बंद किया है जो कि शरारत अक्सर की जाती है, लेकिन मैंने ऐसी कोई शरारत नहीं की आपके साथ,
0: बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे, थैंक यू।
2: अच्छा जी, सो क्या करना चाहिए, कॉल लेनी चाहिए कि गाना प्ले करना चाहिए? वैसे कॉल ही ले लेते हैं क्योंकि 12:48 हो गए हैं और मजीद हमारे पास 5 मिनट हैं, उसके बाद हम अपना शो वाइंड अप करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट आरजे जो है ना वो आ चुकी हैं शीशे के उस पार, मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है, तो लेट्स सी हमारे पास कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं लियाकत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आपकी सेहत तबीयत ठीक है? बहुत अरसे के बाद आप आए हैं।
5: हाँ बस इसी तरह ही है, वो कई प्रोग्राम मिस हुए हैं, कहीं पे बात नहीं हुई, तो फिर मैंने कहा चले आज।
2: बहुत
5: दो बंदे बड़े जहर लगते हैं।
2: जहर लगते
5: हैं मैं बताता हूँ।
2: जी जी बताएं।
5: दो बंदे बड़े जहर लगते हैं जो किसी की बात में सांगड़ आते हैं, और दूसरे जो बिला वजह गिला करते हैं।
2: बिला वजह गिला करते हैं,
5: ठीक है। तो बात है कि गिला तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, वो किसी की टांग किसी की बात में टांग भी नहीं।
2: देखिए गिला तो मेरा ख्याल है इंसान उससे करता है ना जिससे वो मोहब्बत करता है कि नहीं?
5: वो
2: जिससे कोई सरोकार ही नहीं है उससे बंदे ने क्या गिला करना?
5: देखिए कई लोग ऐसे भी होते हैं कि यार मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला,
2: वो ना शुक्रापन होता है ना,
5: हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये लोग ये भी अच्छे नहीं होते,
2: ठीक हो गया।
5: देखें वैसे भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, जैसे भी
2: बिल्कुल बेशक बेशक बेशक
5: करना चाहिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके,
2: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ओके जी अल्लाह हाफिज़। ये तो थे लियाकत साहब हमारे साथ। अच्छा गिला तो इंसान उसी से करता है जिससे वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और एक्सपेक्ट उसी से करता है जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, और कोई अननोन बंदा है उसे हमें क्या मतलब परवाह कि भाई हमने अगला बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसका तो हमें कोई मतलब माइंड में नहीं होती चीज़ें। खैर जनाब, टाइम जो है ना वो 12:50 हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें शो को वाइंड अप करना चाहिए है, सो क्या कहना चाहेंगी लास्ट में आप?
0: लास्ट में यही कहूँगी बस, जो हमारे आज का टॉपिक था, और जो मैं अगर अपनी जनरेशन की बात करूँ या जिस एज में यहाँ के भी जो ख़वातीन या जो लड़कियाँ, के लिए ख़वातीन कहना तो गैर मुनासिब होगा, तो उनके साथ जो दो तीन वो फेस करती है ना, एक तो ये होता है कि इस उम्र में जब की ग्रेजुएशन हो रही है, या एक तो जॉब का, लड़के भी बन उनके साथ भी होता है, जॉब के लिए आप ग्रेजुएशन हो गया थोड़ा उनको टाइम दो, वो एडजस्ट कर लेंगे अपना सब कुछ। और फिर ये भी होता है जो हमारे जो बड़े हैं ना, जो पेरेंट्स हैं, उनको आई गेस ये बात समझनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो रिश्ते वाली आंटियां होती है ना, जो अक्सर लोगों को इनसे ही मसला होता है, तो ये होता है आई गेस उनको भी काम करना चाहिए अपने ऊपर, कि आप लोगों का जो काम धंधा है वो चलता रहेगा, बट जो बच्चे के जहन के ऊपर जो है ना दबाव मत डालो। तो बस यही कहूंगी कि खुश रहें, और दूसरों को भी खुश रहने की जो है कोशिश करें,
2: सांस लेने दें,
0: बिल्कुल, अगर कोई अच्छा नहीं बोल सकते तो फिर कुछ बुरा भी ना बोले, खामोश रहने की कोशिश करें,
2: बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया साइमा, मैंने आपकी बात को नोट डाउन कर लिया। सो जनाब, हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे फिर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी 11:00 to 1 लेडीज लाउंज में। सो अभी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसे लोग जो है ना, जो भी सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हर बंदे को ना अपने काम पर फोकस करना चाहिए, बिला वजह उस वक्त तक को अपना मशवरा ये भी सोच के नहीं देना चाहिए कि यार इस मशवरे का अगले बंदे की ज़िंदगी पे कोई उलट असर हो गया तो ज़िम्मेदार कौन होगा। ठीक है, ज़िम्मेदारी डेफिनेटली आपके ऊपर आएगी क्योंकि मशवरा तो आपने दिया था उसको, तो इसलिए जब तक कोई आपसे मशवरा ना मांगे, या जब तक कोई आपसे क्वेश्चन ना करे, जब तक किसी भी मामले में आपको बीच में इन्वॉल्व ना किया जाए, बिला ज़रूरत नहीं आगे होना चाहिए है। और ख़ास तौर पर अपने वर्क प्लेसेस पर इस तरह की ओंगियाँ मोंगियाँ जिन्हें बोलते हैं ना, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बी डिसेंट और बी प्रोफेशनल, یہ بہت ضروری ہے ہر بندے کو. جب آپ مطلب آتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں, جب پتا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ کو بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹاسک آپ کا ہے, یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, اور اس کے کچھ ایس او پیز, کچھ اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں. تو پلیز ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے چلیں, اور بلا وجہ کسی دوسرے کو جا کے اس طرح سے اریٹیٹ کرنا کہ اگلا بندہ اپنا کام اچھا کرنے کے باوجود جو ہے نا اس کو مطلب اس کی طبیعت پہ اثر ہونا شروع ہو جائے, وہ مینٹلی جو ہے وہ ڈسارٹ ہو جائے, مینٹلی وہ ڈپریشن میں آ جائے. ان چیزوں کو اوائڈ کیا کریں, کوشش کیا کریں کہ جو آپ کی چیزیں ہیں, جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان پر فوکس کریں, اور دوسرے بندے کو بھی نا ان اپنی ذمہ داریوں کو اس کو پورا کرنے کی کا مارجن دیں. غلطیاں ہوتی ہیں, سب سے ہوتی ہیں, لیکن ہر ایک کو جج کرنا ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے.
0: مجھے بس ایک بات یاد آ گئی, آپ نے بولا اونگیاں بونگیاں. ہمارا ریسنٹلی وزٹ ہوا تھا اسلام آباد میوزیم میں, جب گئے تو وہاں پہ ایک انسٹرومنٹ میں نے دیکھا, وہ ڈھول ٹائپ تھا, اس کا نام تھا اونگا بونگا.
2: اوہ
0: نیو ایکسپلور, بہت مزے کا تھا.
2: اوکے تو مارجن دینا چاہیے ایک دوسرے کو, ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, اور ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم دوسروں کو فوراً جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے اپنا وہ کہہ لو کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے, یار دوسرے یہ ایسے کیوں ہیں, یہ ویسے کیوں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے, جو ہماری رسپانسبلٹی ہے ہم وہ کر بھی رہے ہیں. یہ چیز سوچنی چاہیے, کسی دوسرے کو جو ہے نا جا کے بلا وجہ اریٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ ٹائم کیا نا مجھے, میں نے وہیں پہ بس کچھ سنا دینی ہے, یہ ایک اور وارننگ ہے. Anyways, جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, 12:54 مجھے دیجیے گا اجازت. ان لوگوں کی قدر کیجیے گا جو آپ سے محبت کرتے ہیں, جو آپ کو سراہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देख

This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: Hello, listeners. मैं हूँ शाजिया।

0: एक बात बताऊं, मुझे भी FM 101 बहुत पसंद है और मैं बहुत सुनती हूं। आप भी सुनते रहें FM 101।
1: Tune in to One Above FM 101.
2: This is FM 101. This is FM 101.

FM 101. A belly belly, a shower shower.

This is FM 101. This is FM 101. This is a

0: एक बात बताऊं, मुझे भी FM 101 बहुत पसंद है और मैं बहुत सुनती हूं। आप भी सुनते रहें FM 101।
1: Tune in to one above, FM 101.

जी जनाब जी आए नूं कहने वेलकम ते खुश आमदीद। तुसी सुन रहे हो देसी बीट्स, अपनी मेज़बान ज़ैनब अरशद नाल। हर हफ्ते नूं थोड़ी साड़ी मुलाकात हुंदी है, एक तो तीन तीन बजे ताईं साथ निभावन वास्ते स्टूडियो च रहांगे मौजूद। थैंक यू सो मच, तुसी अपनियां मुहब्बतां चाहतां राही मैसेजेस राही प्रोग्राम दा हिस्सा बन रहे हो। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवीन साहिबा साडे नाल मौजूद ने, प्रोग्राम दे हवाले नाल पसंदीदगी दे इजहार दा बहुत शुक्रिया जी। वेलकम कहने आ तुहानूं, असीं कहने आ जी आयां नूं। अली इमरान आ गए ने शादबाग लाहौर तों। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक बेहतरीन अलहमदुलिल्लाह। तुसी कह रहे हो कि तुसी वहम दा शिकार हुंदे हो या नहीं हुंदे? नहीं, बहुत ज़्यादा हुंदी आ बहुत ज़्यादा हुंदी आ। सवाले नाल भी मैं गलबात करांगी कि किन्हां चीज़ां दे हवाले नाल सानू कॉन्शियस होना चाहिए, सानू थोड़ी बहुत जिहड़ी है वह कह लो कि ध्यान रखना चाहिए। मुहम्मद इजाज अली शरकपुर शरीफ तो असलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा हाल पूछ रहे हो नाले, सानू कह रहे हो वेलकम तो खुश आमदीद जी आया नू, बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। शमसी रेडियो लिसनर्स क्लब लाहौर दी जानिब तो खुश आमदीद आ गया। सब दा पहला सब दी खैर आ गई हैं, अच्छा आ गई हैं आप लोग जी, आ गई बहुत अच्छी आर्ज ज़ैनब अरशद, बहुत शुक्रिया। नाल मुहम्मद इजाज अली कह रहे ने कि कर खर्चा होवे चर्चा। वाह वाह वाह, क्या बात है। कुछ रस्ते मंजिल तिकर नहीं हकीकत तिकर लैके जाते हैं। सोहनी गलबात की है। गुड आफ्टरनून कह रहे हो, बेस्ट विशेस कह रहे हो, सलाम पहुँचा रहे हो अपने दोस्तों नू, बेस्ट फ्रेंड्स नू, जिन्हें शामिल ने मुहम्मद रजा चौधरी, एहसन खान, सजाद अली लाडला, साहू वीर यार परदेसी सानू सुनते। असलाम अलैकुम, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून आप पी जी बी। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा तुसी गीत दी रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं जरूर कोशिश करदी हां। मेरे ख्याल से ओही वाला है ना अजरा जहां साहिबा दी आवाज़ वाला, मैंने कन्फर्म करिया जे। अकबर खान आ गए कराची तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानू कह रहे हो जी आया नू, मेरा हाल पूछ रहे हो आज वसीम अहमद साहब नू, मेरा सलाम। तमाम सुनन वाले नू सलाम, आए थे उन्होंने मुलाकात भी हो गई जी, थोड़ा सलाम जरा वो भी पहुंच गया। मनाजिर महमूद आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम जैना मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा हाल पूछ रहे हो, सानू कह रहे हो वेलकम। रब तआला थानू सलामत रखे, बेस्ट विशेज आ, बहुत शुक्रिया। कतर तो शामिल होने का शुक्रिया। मुहम्मद हमजा खेमता सानू सुनते ने, मूसा वाली पिपलों तो शामिल हो रहे हो, थैंक यू सो मच। बरकत रमदानी जमाली बलोच आ गए प्रोग्राम च, तुसी कह रहे हो जी जाफराबाद बलोचिस्तान तो, मैं भी सुनदा वा, बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस शो, वेरी नाइस शो, सुपर हिट आर जे ज़ैनब अरशद, बहुत शुक्रिया जी। अर्जेंट सॉन्ग प्ले। अच्छा चलो जी, लभ के इनू प्ले करते हैं, ठीक है। थोड़ा जहा तो इंतजार फरमाओ, हूँ असी जरा बोल लीए, मैसेजेस पढ़ लीए, थोड़ा जहा जरा रिलैक्स कर लीए। अहमदुल्ला मलखेल सानू सुनते ने, असलाम अलैकुम। वालेकुम असलाम। राहुल लाहौर तो सानू कह रहे हो वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया। कह रहे हो कि लोगों के खलूस ते मुहब्बत नू उन्हां दी कमजोरी या बेवकूफ़ी कदी नहीं समझना चाहिए, वरना एक दिन तुसी खलूस ते मुहब्बत नू तलाश करोगे तो दुनिया थानू बेवकूफ़ कहेगी। क्या बात है जी। मोहम्मद तारिक साहब सानू सुनते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई ने किया है कि आप ही रब तआला थानू सलामत रखे, तमाम खूबसूरत समाता नू सलाम, शमीम आपी नू सलाम, फरी आपी नू सलाम, हमेशा दी तरह प्रोग्राम जबरदस्त माशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच जी। सोहबतपुर बलोचिस्तान तो सानू सुनते ने नज़ीर खोसो। अच्छा जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। नज़ीर खोसो नाल कह रहे हो, कह रहे हो प्रोग्राम में बहुत पसंद कर रहे हो। खिजर हुसैन आ गए, तमाम दोस्तों नु सलाम दे रहे हो, अस्सलाम वालेकुम आपी की हाल है, वेलकम टू द शो, बहुत प्यारा शो, बहुत प्यारी आवाज़, थैंक यू सो मच। कवल नाज आ गई हैं सानू सुन दिया ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर तो, बहुत ही मोहब्बत नाल ते चाहत नाल। कवल थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम जी जी आया नु, मेरा हाल पूछ रहे हो, प्रोग्राम नु पसंद कर रहे हो, बेहतरीन अंदाजे बयां। शमसी रेडियो लिसनर्स क्लब वालों सब नु सलाम, अच्छी सेहत और तंदरुस्ती की दुआ सब वालों सलाम आ गया, सब का बहुत शुक्रिया।

0: This is FM 101.
1: Hello, listeners. मैं हूं शाजिया।

0: एक बात बताऊं, मुझे भी FM 101 बहुत पसंद है और मैं बहुत सुनती हूं। आप भी सुनते रहें FM 101।
1: Tune in to one above FM 101.

जी लिसनर्स, जी आइनू कहने वेलकम ते खुश आमदीद रेडियो पाकिस्तान 101 एफएम दे लाहौर स्टेशन तो ज़ैनब अरशद है थोड़े नाल नाल ठीक 3 बजे ताई। जिहड़े भी साढ़े सुनने वाले सन कॉल्स कर रहे ने 042 दे इजाफी कोड नाल 111 000 101 नूं तुसी डायल कर सकदे हो, लेकिन ठीक 2 तो बाद

0: This is FM 101. This is FM 101. This is FM 101.
1: This is FM.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: वो होते हैं कि बार सफर ना कुछ लोग ना जेलसी करवाने के लिए या कुछ
1: हाँ?
0: मतलब वो खुद करवाते हैं कि ये अगला बंदा सोचे कि हाँ हमारे बारे में ही बात हो रही है, मगर ना ऐसा करना चाहिए अगले बंदे ने वहम विच पा दियो।
1: बिल्कुल सही है, अगले नु गलत साबित कर दो कि तुसी जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, है ना।
0: हाँ, वो कहते शायरी वाली आप या इनका नाम लिया था ना
1: जी,
0: शहजादा लाडला भाई, हाँ उनको मेरा बहुत बहुत सलाम, वो भी बहुत प्यारी शायरी करते हैं
1: जी। बिल्कुल ऐसे ज्यादा उर्दू दे हुंदे ने ताइयो शामिल नहीं हुंदे साडे कोलो बहुत,
0: लेकिन बहुत अच्छे। किसी नू वहम विच पाया?
1: मैं हुणी दसांगी ते 3 बजे की दसांगी।
0: चलो ठीक है, इंतजार।
1: थैंक यू सो मच,
0: अल्लाह
1: हाफिज। वैसे जाना बेवे तुसी सस्पेंस पाता है, इस सवाल का जवाब है नहीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, आप जानवर शहर, क्या बात है, क्या बात। अरे विचार नु ते अभी ओ ब्याह देखा है ना, फिर ही लाहौर आ गई, कभी गुजरा वाले कभी इस्लामाबाद।
1: प्रोग्राम तो ठीक 15 मिनट पहला
2: मेनू पता आप ही अपना असन खाया से ना लैंदा भी नाराज हो जाते किसी वेले ते आपकी कार साडी मिल रही है ना।
1: चीनी पाती है नहीं पाई, ए बोती हो जाएगी या थोड़ी हो जाएगी, एंज उंज कुछ
2: नहीं हो। बाकी आप वहम नहीं करना चाहिए, कोई भी वहम जरा ना दिल रोग लग जाता
1: किसी वहम पाओ।
2: जे चार जने असी बैठे हैं ना, एक परा बैठा तो उन्हें छाती ना पावे मेरी गल करांदा है, ओदे दिल च ना आवे भी यार ये रगा भाई जे ऐसा था ये मेरी ही गल करदा फिर बंदा वहम पा जांदा। हौली हौली भी ना गल करो तो उच्ची गल करो दूसरे नु सुन दे,
1: बुरी गल है। हाँ बिलकुल सही है, बिलकुल सही
2: है। ओनू फिर शक पा जांदा भी मेरी गल हो रही है, कोई गल है जे आके पुछे की गल भी की नहीं नहीं कोई गल नहीं नहीं ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
1: ਬਾਕੀ
2: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ,
1: ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ
2: ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ।
1: बहुत शुक्रिया, रब रखा बेबी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद भाई साडे नाल मौजूद रहे लाइव कॉल ते आने दा शुक्रिया जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਕਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਕਰੀਦਾ ਬਲਕਿ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ।

Big radio, big style. Please, FM 101.

0: Big radio, big style.
1: Please play
0: FM 101.
2: लगता है आज बहुत आंसू भरेंगे. हेलो,
3: अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है. साथ देंगे मेरा?

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।
2: प्रोग्राम सुनने वाले सारे भैन भरावां नूं ते बुजुर्गां नूं साईमां दा सलाम पहुंचे। सोहणे भैन भराओ, इस दुआ दे नाल कि तुसी हमेशा सेहतमंद, खुशोखरम ते मुस्कुराते रहो, तुहाडी मेज़बान साईमां तुहाडी मेल ते SMS प्रोफेसर सुलेमान साहब दे तिब्बी मशवरे लैके हाजिर खिदमत है। मोहतरम सुनन वाले, जिंदगी तो प्यारी कोई शह नहीं, लिहाजा एदी हिफाजत भी साडा दीनी फरीजा है। ते जिंदगी दी हिफाजत दा बेहतरीन तरीका ए वे कि अल्लाह ना करे जदो कोई भी बीमारी महसूस होवे उहदा फौरी इलाज करवाया जाए ताकि सेहतमंदी नाल खुशगवार जिंदगी गुजारी जा सके। सोहणे भैन भराओ, हमेशा वांगू अज भी साडे स्टूडियो विच मौजूद होणगे पाकिस्तान दे मशहूर ओ मारूफ तबीब हर्बल फिजिशियन प्रोफेसर सुलेमान साहब। इस तो पहले कि तुहाडी उहनां नाल मुलाकात करवाई जावे, पहलां तुसी नोट फरमाओ साडा पता ते फोन नंबर ताकि तुसी तिब्बी मशवरे ते बेहतरीन इलाज लई प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं आ वी मिल सको। ते नोट फरमाओ, सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड, लाहौर। फोन नंबर 042-377-27160, यानी 042-377-27160। मोबाइल नंबर है 03004142608, यानी 03004142608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com। जी भैन भराओ, जरा एक्टिव हो जाओ ते रेडियो दे नेड़े नेड़े आ जाओ, क्योंकि इंतजार दियां घड़ियां मुक गईयां ते हुण मिलने आ पाकिस्तान दे बहुत ही मशहूर ओ मारूफ ते माया नास तबीब हर्बल फिजिशियन यूनानी मेडिकल कॉलेज दे साबिक वाइस प्रिंसिपल ते पाकिस्तान तिब्बी फाउंडेशन दे चेयरमैन जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं। सुलेमान साहब, मैं तुहानूं इस प्रोग्राम दे विच वेलकम कहनी आ ते शुक्रिया अदा करनी आ कि तुसीं साडे प्रोग्राम नूं रौनक बख्शी।
3: साईमा जी, शुक्रिया ते मैं तुहाडा अदा करना वा कि तुसीं मैनूं अपने भैन भरावां दी खिदमत दा मौका दिंदे हो।
2: जी, बड़ी मेहरबानी सुलेमान साहब। सुलेमान साहब, हुण मैं सब तो पहले जिहड़ा SMS मैं तुहाडी नज़र कर रही हां ओह मिर्ज़ा नासिर बेग साहब ने तहरीर कीता है।
3: अच्छा,
2: लिखदे ने कि जनाबी आली, मेरी शादी नूं 10 साल दा अरसा हो गया है।
3: जी जी।
2: सुलेमान साहब, काफी इलाज दे बाद हुण इक आखरी उम्मीद ते हर्बल इलाज भी करवाउणा चाहुंदा वां, बराए मेहरबानी रिपोर्ट्स वेख के मैनूं मशवरा दिओ कि इहदा इलाज हो सकदा है।
3: मोहतरम नासिर साहब, अल्लाह ताला ने मौत दे सवा हर बीमारी दा इलाज उतारिया है। ते इस हवाले नाल हदीसे मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी गई जिंदा इलाज ते दवा ना उतारी गई होवे। मेरे भाई, जदों मरीज नूं किसे इलाज तों फायदा नहीं हुंदा, ओह समझदा है कि यह बीमारी नाकाबले इलाज है, हालांकि उनका इलाज मौजूद हुंदा है, लेकिन मरीज किसे दूजे मालिज नाल राबता करन तों गुरेज करदा है। मेरे मोहतरम, मैं तुहाडी रिपोर्ट्स वेखियां ने, इहदे विच कोई इन्ना वड्डा मसला नहीं कि उनका इलाज ना होवे, लिहाजा मैं तुहानू मशवरा देंगा कि तुसी फौरन ही इलाज शुरू कराओ ते सोहणे रब ते भरोसा रखो, इनशाला ना सिर्फ तुहाडी इह तकलीफ ठीक हो जाएगी बल्कि सोहणा रब तुहानू इनशाला साहिब औलाद भी करेगा।
2: आमीन सुम्मा आमीन। जी नासिर साहब, तुसी हर्बल फिजिशियन प्रोफेसर सुलेमान साहब दा मशवरा सुनिया, मैनू यकीन है कि तुसी इस मशवरे ते अमल भी करोगे। सुलेमान साहब, तुहाडी इह गल दुरुस्त है कि अगर मरीज नूं इक इलाज तों फायदा ना होवे ते फिर ओह इलाज नूं गैर मुअसर समझदा, हालांकि बिलखसूस हर्बल इलाज ते खुदाई इलाज है।
3: जी बेशक सहमा जी, बहुत अच्छी गल कीती है कि ऐ खुदाई इलाज है।
2: बिल्कुल सही फरमाया। सुलेमान साहब, अगली मेल हाजिर है जड़ी जुबैर साहब ने तहरीर कीती है। लिखदे ने कि मेरी उम्र 32 साल है लेकिन असाबी कमजोरी इन्नी है कि मैं अपने आप नूं 50 साल दा मरीज तसव्वुर करना वा। सुलेमान साहब, मैनूं असल विच शादी तों पहलां टाइफाइड बुखार होया सी, ओहदे बाद असाबी कमजोरी शुरू हो गई ते हुण इस प्रॉब्लम दी वजह नाल मैनूं ज़हनी तौर ते बहुत डिप्रेशन रहिंदा ते मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। जी सुलेमान साहब,
3: जुबैर साहब, टाइफाइड बुखार यकीनन खतरनाक बीमारी है ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ, ਮੇਦਾ, ਅਸਾਬ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਹਿਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਮੇਦੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕੁਵਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
2: ਜੀ ਸੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਲਓ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਲਾਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿੱਬੀ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਬੀਬ ਹਰਬਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੋ, ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ, ਦਵਾਖਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪੁਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਨ ਰਾਵੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0423772716 0, ਯਾਨੀ 0423772716 0, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਏ 0300414-2608, ਯਾਨੀ 0300414-2608। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ suleiman.dawakhana@gmail.com। ਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਮੇਲਸ ਔਰ SMS ਦਾ ਜਵਾਬ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਮੇਲਸ ਔਰ SMS ਦਾ ਜਵਾਬ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

यूं तो उनसे और मिलना होता हमारा, और क्या, और क्या होता, क्या हुआ, ये बातें बहुत अच्छी लगी।

मैं समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

कुछ दिल में रह गया कि अब दिल की सुनू तो सिर्फ मेरी आवाजें गूंजती हैं। वो जा रही थी और हाले दिल आंखों से बह रहा था। हाले दिल का एक लम्हा मेरी आंखों से होता हुआ मेरे जूते पर जा गिरा। वो जूता आज भी मैं पहनने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रात के 10 बजे अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आवाम को बगैर किसी परेशानी के पेट्रोल सब्सिडी की बावकार फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। फ्यूल सब्सिडी की नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने इंटरनेट की सहूलत के बगैर इलाकों में वाके पेट्रोल पंप्स पर SMS के जरिए फ्यूल टोकन इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। DGISPR ने कहा है कि अगर तालिबान हुकूमत दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने से मुतालिक दोहा माहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहती है तो पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। एशियन गेम्स वेमेंस क्रिकेट मुकाबलों के पहले सेमीफाइनल में कल नशीन जापान में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Thank you.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

शाइनिंग फ्रिक्वेंसी होगी दोस्तों आपकी FM 101। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े FM रेडियो नेटवर्क की लाइव ट्रांसमिशन सुन सकते हैं। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, तमाम दोस्तों को कहते हैं जो खुश आमदीद। रात 12 बजे से ऑनवर्ड ये ट्रांसमिशन जो है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान, जहाँ जहाँ 101 के स्टेशन हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया में radio.gov.pk के ज़रिए जो है वो सुनी जाती है, और दुनिया से इस ओवरऑल मुल्क से बाहर जो है radio.gov.pk पे एक्सेस करके लोग सुन सकते हैं। दोस्तों, मौसम बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आज जब स्टूडियो में आया तो अमूमन जो है वो इतनी ज़्यादा सर्दी जो है, मतलब हल्की फुल्की जो ठंड है वो फील होती थी, लेकिन आज के दिन जो है तो ज़्यादा जो है वो फील हुआ है कि अब कम अज़ कम रात के औकात में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, ख़ासकर आप मोटर बाइक की सवारी करते हैं, जो कि आजकल वही आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने अपने साथ हल्का फुल्का एक एक्स्ट्रा शर्ट या आपने अपर वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करना है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो चुका है।

इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है दोस्तों, मौसम बदल चुका है काफ़ी हद तक और अब पंखों की फ़िलहाल ज़रूरत है लेकिन उतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको फील नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अगर आप रात के औकात में बाहर निकलते हैं तो बराए मेहरबानी, अगर बाइक राइडर है आपने तो एक्स्ट्रा आपने शर्ट या अपर वगैरह का इस्तेमाल जरूर करना है। ड्राइव प्लीज यहाँ से कीजिएगा, अपना ख्याल रखें और अपने से मुंसलिक अफराद का ख्याल रखें। आजकल तो खुशियां देखने वाली हैं, जो लोग चखियाजाद रावल चखियाजाद रामणी चौक और पार्कव्यू सिटी वाली साइड रहते हैं, जो कि पाई ये जो एक अंडर पास की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया था और इस एरिया के लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया है, सब वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इस अंडर पास के हवाले से मैंने भी काफी दफा आप लोगों से जिक्र किया कि आजकल बहुत ज्यादा औखा होता है लेकिन कल से बहुत खुशी है जी। की आवाज के प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लौट कर वापस आएंगे, आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आपसे करेंगे गपशप। आप जानते हैं कि 12:30 तक हम सुनाते हैं आपको बैक टू बैक जबरदस्त किस्म का म्यूजिक, थोड़ा खतरनाक रहेगा।

ओके जी, आप लोग 4471 पे मैसेज करेंगे, इसके अलावा facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे आप तमाम दोस्तों के पैगाम हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से, प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। अगर आप इस वक्त ड्राइव करते हुए हमारी बात सुन रहे हैं तो प्लीज 71 पे मैसेज करेंगे, इसके अलावा facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे आप तमाम दोस्तों के पैगाम हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से, प्रोग्राम आपके लिए पेश

ट्रैफिक का, और इसके अलावा हमारे चेक पोस्ट पर जितने नौजवान जवान मौजूद हैं उनसे कॉपरेट किया करें, अपना आईडी कार्ड, ऑफिशियल कार्ड, ये चीज़ें आपने लाजमी जो है वो सामने रखनी है ताकि ईजी हो, आपको भी देर ना हो और उनके लिए भी किसी भी किस्म का मसला ना हो। 12:16 दोस्तों, आज के दिन हम क्या बात करेंगे, आज के दिन हम ये बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि अमूमन कुछ यादें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान चाहता है कि अपनी मेमोरी जो है इससे उन चीज़ों को डिलीट कर दिया जाए, मतलब कभी ज़िंदगी में वो दोबारा याद ना। आपने अमूमन देखा होगा कभी किसी दोस्त से या किसी शख्स से बात की जाए तो वो कहते हैं यार प्लीज़ इस हवाले से बात ना करें, इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुंसलिक हैं जो कि याद आती हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आपने को बहुत दुखी बात तो हमसे शेयर नहीं करनी, ओवरऑल वैसे आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, कौन सा वक्त, कौन सा लम्हा, कौन सी चीज़ या किस शख्स को अपनी लाइफ से डिलीट करना चाहेंगे, तो ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिर आप वापस आकर आपके एसएमएस साथ साथ शामिल करेंगे जो 4471 और facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे हम तक पहुंचेंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने मैसेज करने हैं जी 4471 पर, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और बहुत ही खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 44 पर।

facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पे। दोस्तों आपके कुछ पैगामात, मैडम आजमीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे गज़नफर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बख्तावर क्यानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। क्यानी भाई आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। इसके अलावा जी आपने मैसेज किया है बख्तावर, दो मैसेजेस आपने किए, बहुत शुक्रिया जी। इस टॉपिक के हवाले से प्लीज़ लाजमी गुफ्तगू किया करें, जो भी सवाल पूछा जा रहा है। आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि ज़िंदगी से क्या ऐसी याद है जो आप डिलीट करना चाहते हैं, जो कभी आपको आपके सामने ना आए, या आप उसके हवाले से बात ना करें या किसी से सुने ना, आप ऐसी क्या चीज़ है जो डिलीट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो आप लिख के आज हमें बताएंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा 4471 पर फरहान हमारे साथ मौजूद। आपने कहा भाई आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, अब मैंने आपसे कुछ ही देर बाद ऑफिस के लिए निकलना है, आज मेरी नाइट शिफ्ट है, और आपने बताया कि मौसम जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो है वो बाइक राइडर्स के लिए थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो मैं लाजमी अपने साथ जो है वो एक अपर ज़रूर रखूँगा, इसमें कोई शक नहीं है मेरे दोस्त। जो लोग बाइक राइडर्स होते हैं, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र बाइक्स पर होता है, उनके लिए 15-20 दिन पहले नहीं बल्कि एक महीना पहले सर्दियाँ आती हैं और एक महीना बाद ख़त्म होती है। मतलब वो रात में आपको पता है कि नमी का असर और ठंड जो है वो रहती है, तो मौसम पहले इनके लिए चेंज होता है सर्दी आने का भी और सर्दी जाने का भी, लिहाजा आपने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। नूर हाशमी साहब आप लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बहुत शुक्रिया। आदाब आपने लिखा। वकास बुटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम रूमी पार्क। मेरे दोस्त ये कहाँ पे, लाहौर पे है कराची में है? अस्सलाम वालेकुम जी। GMK आपने लिखा है जी, बहुत शुक्रिया। गज़नफर महमूद कियानी इसके एब्रिविएशन है, मोस्ट वेलकम। और तमाम सुनने वाले को सलाम, आपने कहा बहुत शुक्रिया। पाक आर्मी जिंदाबाद आपने लिखा। प्लीज़ अपना नाम लाजमी बताया करें ताकि आसानी हो सके, हमें पता चल सके कि हमारी आवाज़ कौन सुन रहा है और कहाँ तक सुनी जा रही है। स्ट्रिंग्स बैंड की आवाज़, ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है जी, इसके लिरिक्स बहुत कमाल के हैं। ये है मेरी कहानी, और आप आंखें बंद करके इसके लिरिक्स सुनेंगे। वैसे भी रात के इस पैर आधी आधी तो नींद आई होती है, 12:24 हो चुके हैं जी। शादियों का सीज़न भी सोने आने लगा है जी, आने वाले 1-2 महीने जो हैं वो सख्त खर्चों वाले महीने हैं। उसामा इस्लामाबाद से मौजूद है, VIP पश्तो सॉन्ग प्लीज प्ले। ऑलवेज VIP मेरे दोस्त, अभी हमने प्ले किया आपसे कुछ ही देर पहले पश्तो ट्रैक, आपने सुना, इसका म्यूजिक बहुत कमाल का था। फिलहाल ये सुने, एंजॉय करें, वापस आते हैं, गपशप करेंगे। बंदा इन आशीष को कहते हैं जी, गज़नफर महमूद क्याली, ताल्लुक में रह जी जन्नत नजीर से, जिसे कहते हैं कश्मीर। अल्लाह ले केड़े पास डुरबे हो।

डॉक्टर फरहान ने जी इस्लामाबाद से मैसेज किया, आप कहते हैं ड्यूरिंग द ड्यूटी इस वक्त रेडियो ट्यून किया, आपने टॉपिक रखे है कि ज़िंदगी से क्या जो है हम डिलीट करना चाहेंगे, क्या ऐसी यादें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं। तो डॉक्टर साहबा कहती हैं कि ये डॉक्टर की डिग्री जो 3-4 साल हमने की है, चूँकि जो ड्यूटी टाइमिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ हैं, लेकिन एंड पे वो लिखती हैं कि इससे मैं काफ़ी ज़्यादा मुतमइन हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये गलत फ़ैसला मैंने उस टाइम लिया था। चलें जी, अब आप लोगों की खिदमत करें, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दें, और ये जो आपने फील्ड में आई हैं ये बड़ा जी मोतबर फील्ड है, इसमें आप काफ़ी लोगों की खिदमत करती हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसमें कामयाब करें। तो दोस्तों, इस वक्त आपसे हम टॉपिक पे आज हम बात यही कर रहे हैं कि क्या ऐसी कुछ याद है, कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि समरा ने मैसेज किया, वो अपनी दोस्त को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहेंगे, 7 साल उनके उन्होंने ज़ाया किए, फिर उसके बाद जो उन पर ट्रस्ट करने की वजह से 2-3 साल चीज़ें और उन्होंने उसकी वजह से सफ़र की वो। इसके अलावा बख्तावर क्यानी ने मैसेज किया था, वो अपनी कज़न्स को डिलीट करना चाहती, तो हमें एक और मैसेज भी मौसूल है, समरा ने किया है, वो कहती हैं जी अगर कज़न को डिलीट करने की बात आए तो फिर तो मेरे पास ढेर सारी लिस्ट मौजूद है जिसको हम डिलीट करना चाहेंगे। अल्लाह लियो केड़े पास टूर पे, इतना ज़्यादा बदनाम मत करे अपने कज़न्स को। कुछ लोगों ने अपने कज़न्स में शादियाँ की होती हैं, रिश्ते किए होते हैं। कौन सबसे कुछ ही देर बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे, सैयदा अरीबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप कहती हैं आप हर वो चीज़ डिलीट करना चाहेंगी जब मुझसे ज़बरदस्ती घर के काम करवाएंगे। अच्छा, आप अपने घर के कामों से बहुत ज़्यादा तंग होकर वो चीज़ें डिलीट करना चाहती हैं। बक्तावा क्या नहीं कहती हैं, भाई मैं आपके शो में कॉल करूँगी, जी ज़रूर करें, नंबर में थोड़ी देर तक बता देता हूँ। मेहर असद हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सैयदा अरीबा कहती हैं सबसे वफादार चीज़ें वो यादें हैं जो हम भूलना चाहें मगर भूल नहीं पाते। अल्लाह ले केड़े पास टुर गए। आतिफ असलम की आवाज़ के प्रोग्राम में शामिल करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा, और ख़ास ये आपके लिए है।

0: चलें जी, लाइव कॉल्स का वक्त हो चुका है 051-111-0101 और 051-920-2540 पे दोस्तों आप लोग लाइव कॉल्स करेंगे और सेगमेंट को प्लीज़ ध्यान में रखा करें जिस हवाले से बातचीत हो रही होती है उस टॉपिक फॉलो किया करें। अपने दिल के अगर कोई बात करना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम, लेकिन मोस्टली जो होते हैं दोस्त वो टॉपिक को फॉलो नहीं करते, तो ये एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी मेरी और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो नए कॉलर्स हैं उनको भी अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकें। 051-111-0101 ये हमारा टेलीफोन नंबर है और इसके अलावा आप लोग जो SMS कर रहे हैं वो तो हम प्रोग्राम में शामिल कर ही रहे हैं। अशरफ खान साहब मर्दान से हमारे साथ मौजूद हैं, आपने कहा है कि तमाम सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम अशरफ खान साहब, बहुत मोहब्बत आपका, आपका शुक्रिया आज की पहली कॉल। और रिक्वेस्ट ये है कि हेडफोन्स का जब इस्तेमाल करेंगे तो ड्यूरिंग द कॉल एक तो रेडियो सेट आपने ऑफ करना है, दूसरा हैंड फ्री मत इस्तेमाल किया करें। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: सर जी आज तुम्हारी पहली कॉल माशाल्लाह।
1: वो बिच मिला करो साहब जी, वो शहजादा वादी कश्मीर और वन वन के बेताज बादशाह सादे मोहतरम
0: जी, अल्लाह माफ कर
1: जी, मां सदके करा ऐ सोणियो ओ मां वारी कछे।
0: इश्तियाक साहब कैसे हैं आप? ठीक है।
1: जी मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, शुक्र है सरकार चाहिए कि मैं तो सना बड़ा शुक्र गुजार,
0: अल्लाह ताला से सेहत दे इस तरह बार बार अपने आप की।
1: जी पहली कॉल चाहिए, अल्लाह ताला तो की सलामत रखे, अजीज मान
0: अजीज बेटे हो, जजाक अल्लाह
1: अजीज बा की सलामत सलूक पेश करता जी साजी मां तो की जन्म देता।
0: अच्छा मैं वही क्या ना, मैं क्या पहले से कॉल चाहिए कि नहीं, मैं परेशान रहने हो। अच्छा टॉपिक ऊपर क्या गल कर सो?
1: बीमार हां तो मैं किसे की भी डिलीट ना करना चाहना, सब मोहब्बत करने वाले, सब प्यार करने वाले, मैं किसी का ना ना आना फलाने की कदम की डिलीट करता फलाने करता, बेटी हो जानी है पूरी दुनिया पे छोड़नी है,
0: पूरी दुनिया सुननी पी। ठीक हो, क्या सोना था पैगाम दे सो?
1: जी मैं किसी की भी तो दो चार बंदे की सलाम देता, आज ये जानो उस्ताद जी 2.5 महीने हो गए तो काला प्या करना, खुदा नहीं करता मेरी कॉल नहीं मिली।
0: चलो तक आई तक आई तक उससे नहीं पहली कॉल मिली तो दो सलाम जिन्ना की देना चाहे हो।
1: हैदराबाद तू बड़े प्यारे इंसान है, उन्होंने सलाम पेश करना, असली बेटी है ये कराची तू आने जी, मैं उधर आज डाकरे शो जी आने तो मैं उन्हें सलाम पेश करना रहना, बड़े अच्छे ना उन्हें ना जी परवीन आपी,
0: परवीन आपी ठीक हो गया जी, जी
1: मैं उन्हें की सलाम पेश करना चाह रहा, ते तो अलावा जनाब अनीला बेटी की सलाम पेश करना चाह रहा लाहौर तू, एक और साड़ी बेटी है लाहौर तू जी रमशा बेटी, तो इतू चली गई बेचारी इस्लामाबाद चली गई, अल्लाह ताला उसकी सलामत रखे, उनकी शादी होगी, माड़ी बेटी है ਉਹ ਦਿਨੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਕੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਹੁਣ
1: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੋਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਬਨ ਵਨ ਸਦਫ ਰਾਣੀ ਕੀ ਸਲਾਮ ਔਰ ਸਲੂਟ, ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਔਰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗਦਰ ਕਿਆਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਵੈਲਕਮ ਬਿਸਮਿਲਲਾ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਕਾ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ।
2: ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ?
0: ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਸਰ, ਰੇਡੀਓ ਆਫ ਕਰ ਦੇ ਪਲੀਜ਼।
2: जी बिल्कुल कर दिया है, आप ठीक है?
0: सर आवाज अभी भी आ रही है मुझे, डिस्टॉर्शन। बहरहाल नाम बताएं अपना प्यारा सा।
2: ठीक है, अभी ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है जी?
2: तो
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना प्यारा सा नाम तो बताएं सबसे पहले।
2: जी मलक इरफान बात कर रहा हूँ, मंडी बाल दी।
0: मलक इरफान साहब, क्या चीज रिमूव करना चाहेंगे जिंदगी से अगर आपको मौका मिले, या डिलीट का बटन काम करना शुरू कर दे तो?
2: अगर बटन काम करना शुरू कर दे सर, मेरा एक दोस्त था, एक नहीं तकरीबन कुछ दोस्त थे।
0: अच्छा।
2: इनके साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरा, मतलब जिंदगी की ना तमाम खुशियां मैंने उन पे छावर की। मैं एक फारिग होता था, जब भी किसी को कोई काम पड़ता था ना, मुझे कहते इरफान यार मतलब वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। मैं नहीं कहता था यार इनका टाइम अच्छा गुजर जाएगा, मेरा क्या जाएगा।
0: अच्छा।
2: तो अब जब गुजनफर भाई मेरे पे माड़ा वक्त आया ना, तो उन सब ने मुझसे मुंह फेर लिया। अगर मेरा बस चले तो मैं उन सब की यादें, वो मतलब उनके साथ जो गुजारे लम्हे है ना, था उनको डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में मतलब ना आपका साथ देता।
0: इसमें तो कोई शक नहीं जी, अच्छा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में काम आए और सबसे खूबसूरत चेहरा भी वही है।
2: को एक पैगाम दूंगा कि अगर कोई आपके फैमिली में बंदा बीमार है तो कम अज कम अगर उसको कुछ भी नहीं ना कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते तो उसको कोई ऐसा अल्फाज ना दे, मतलब कुछ ऐसे बंदे होते हैं ना जिनकी मतलब हालात बहुत खराब होते हैं तो लोग उनके सामने कह देते हैं अल्लाह ताला इसको सामले।
0: ऐसे ही ऐसे ही है, बिल्कुल
2: सही। मैं गुजारिश करूंगा कि उस बंदे के सामने कम अज कम ऐसी बात ना करें, क्योंकि अगर बंदा मर भी रहा है गुजनफर भाई, अगर आप उनको कहेंगे ना कि यार अल्लाह ताला तुम्हें सेहत कामला अता फरमाए,
0: ऐसे ही है, बहुत प्यारी बात है,
2: जिंदगी जो है ना दोबारा मिल जाती है।
0: बिल्कुल ऐसे ही है। मलिक इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और ये
2: सुनने वालों को सलाम आपके लिए ढेर सारी
0: जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है कि जब भी आप किसी बीमार की तीमारदारी करने के लिए जाएं तो एक तो SOP यही रखनी चाहिए कि आपसे जो हो सकता है उसकी माली मदद करें, और ये चीज़ देखते हुए कि उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मजरू ना हो, और सेकेंडली हमेशा पॉजिटिव वाइब्स लेके उनके पास जाया करें, उनसे पॉजिटिव बातें किया करें, बजाय इसके कि जी हमारा एक दोस्त था उसको भी ऐसे हुआ था, उसके साथ ये हो गया वो हो गया। एग्जाम्पल्स ऐसी दी जाती हैं कि सामने वाला जो शख्स बीमार होता है वो यही सोचने शुरू कर देता है कि यार अब मेरा क्या बनेगा। तो हमेशा जब भी किसी बीमार शख्स की तीमारदारी आप लोग करने जाएं तो उससे मोहब्बत भरे अंदाज में बात करना और उससे खुशी वाली बात करनी चाहिए, और हमेशा ये कहना चाहिए आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वो लोग भी जो अल्लाह ना करे किसी भी वजह से किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है तो कोई जब भी आपसे पूछे तो ये ज़रूर अल्फाज कहा करें कि अल्लाह पाक का करम है, बहुत बेहतर हो, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मुझे जल्द सेहत याब करेगी, आमीन। कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब आदतन जो उनकी एक ना एक साइकी बन जाती है, आदत बन जाती है, कभी भी ज़िंदगी में पूछो खुश नज़र नहीं आता, मतलब क्या हाल है, ओ यार जी बड़ा रोला है, मतलब ये आपने पॉजिटिव रिस्पांस करना है जी, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का करम है, चीज़ें ठीक हो गई हैं, ठीक हो रही हैं। तो ये चीज़ें जब आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। और एक चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ कि ख़ुद को ये प्रिटेंड करना या ये कहना मजाकन भी कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, ये चीज़ बहुत नापसंद की जाती है, नहीं कहना चाहिए अपने आप को। अमीना हमारे साथ मौजूद हैं, नहीं भाई अपनी ज़िंदगी से वो सब डिलीट करूँगी जिसने मुझे दुख दिए हैं। थैंक यू जी, आपने कहाँ से मैसेज किया अमीना ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अमीना खान हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, अमीना आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्या कहेंगी ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन बात कर रहे जी?
3: दुआ फ्रॉम मुल्तान।
0: दुआ फ्रॉम मुल्तान। दुआ मुझे ये बताएं मुल्तान आप रेडियो पे सुन रही हैं या वेब स्ट्रीमिंग के जरिए?
3: FM पे।
0: नहीं अच्छा FM पे स्ट्रीम मतलब 101 फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं आप
3: जी?
0: फ्रीक्वेंसी पे सुन रही हैं
3: जी? जी
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुआ क्या कहना चाहेंगे आप?
3: मैं कहना चाहूंगी कि मैं कुछ यादों को मिटाना चाहती हूं, माजी का वक्त गुजरा हुआ है उसको।
0: ठीक हो गया, आप उसको रिमूव करना, डिस्टर्ब कर रहा है आपको इस रिसेंट लाइफ में?
3: जी जी
0: ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी किसी को?
3: अच्छी आदतें अपनानी चाहिए और दूसरों से यानी कि अच्छे से बात करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए,
0: किसी का दिल नहीं दुखाना
3: चाहिए। छोटी छोटी बातें बातें ऐसी लगती हैं कभी कभार दिल पे कि वो रह जाती हैं,
0: बिल्कुल
3: ऐसे करना चाहिए।
0: और
3: मेरा आपसे एक सवाल है।
0: ठीक है,
3: मैं पूछना चाहूंगी अगर यानी कि सामने वाला कोई बेवफा है या कोई मुखलिस है तो उसको कैसे पता चलेगा?
0: बेवफा का कैसे पता चलेगा और मुखलिस का कैसे पता चलेगा, या मुझसे पूछ रही है?
3: जी जी
0: चले चले, ये सवाल हम सब लोगों से पूछते हैं, वो इसका क्या रिस्पांस करते हैं। देखिए इंसान की नीयत जो है ना वो आप नहीं जान सकते, ये गैब का इल्म जो है ये सिर्फ अल्लाह ताला के पास है कि किसी के दिल में आपके लिए क्या सोच है, कोई आपके लिए कैसा सोचता है। हाँ कुछ चीज़ें आप अमल से देख सकते हैं और ये टाइम टू टाइम रियलाइज होता है, हफ्ते 10 दिन में या 15-20 मिनट की मुलाकात में आप किसी को नहीं जज कर सकते, क्योंकि हर बंदा जब भी किसी से फर्स्ट टाइम मीटिंग करता है या मुलाकात उसकी होती है तो ऑब्वियसली हर कोई अपने आप को बहुत पॉजिटिव प्रिटेंड करता है। और ये फैसला कर लेना कि कौन आपके साथ मुखलिस है, उसकी नीयत कैसी है, ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये टाइम टेकिंग काम है। और बाज़ुकात आपने सुना होगा कि 15-15 साल की भी दोस्तियां या रिलेशन जो हैं वो अनट्रस्टेबल होते हैं, वो नीयत ही ठीक नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुआ, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और फिर इंशाल्लाह गपशप होती है। ठीक है,
3: ओके,
0: अल्लाह हाफिज़ जी। 12:50 हो चुके हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि 1:40 से ऑनवर्ड हम जो है वो एक शायरी का हमने सेगमेंट रखा है जो 2:15 तक हो जाता है। कल आप दोस्तों ने कंबाइन शो सुना होगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें जिशान भाई थे, इसके अलावा खुरम भाई और गुंचा शौक के हमारे आरजे हैं, आरजे मुश्तबा हैदर, जो उनको आपने सुना होगा। नेक्स्ट कॉल देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे
3: हैं?
0: कौन सी कुरैशी?
3: सिद्रा
0: कुरैशी मंदरा से बात करें। सिद्रा क्या कहना चाहेंगे आप?
3: भैया कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं?
3: भैया ठीक हूँ।
0: चलो जी, टॉपिक पे कोई बात करेंगे या कुछ और कहना चाहते हैं आप?
3: नहीं, जो आप टॉपिक बताए, किसका टॉपिक है?
0: टॉपिक आपने नहीं सुना
3: भैया, मैं भी पता नहीं क्या हुआ है, मैं उधर बात कर रही थी दूसरे शो में भाई के साथ। मैंने
0: नहीं सुना, बस हमने टॉपिक यही रखा है कि खाने में क्या पसंद है आपको?
3: खाने में मुझे बिरयानी।
0: बिरयानी पसंद आप बना भी लेती हैं या सिर्फ पसंद ही है?
3: जी मैं बना लेती हूँ, कुकिंग तो मेरी बात है, शादी होने वाली है।
0: शादी होने वाली, माशाल्लाह, कब है शादी आपकी?
3: मेरी शादी इंशाल्लाह रमजान के बाद।
0: इंशाल्लाह आप हमें कार्ड भेजिएगा, वन वन लाजमी आएंगे रमजान के बाद आपकी शादी। तो आजकल आप कुकिंग सीख रही है?
3: हाँ भैया, कुकिंग सीख रही हूँ, सिलाई सीख रही हूँ, जो घर वाले मुझे सिखा रहे हैं, मेरे पीछे लगे
0: हैं। घर वाले कह रहे हैं वहाँ जाके सिलाई भी करनी है आपने?
3: हाँ, फिर मुझे सारा कुछ आना चाहिए। मुझे कहते हैं 8 से 2 बजे तक अगर शो सुन सकती हो ना, तो सब सारे काम करने पड़ेंगे।
0: मतलब वो सारे काम आपको सिखाए जा रहे हैं कि वहाँ जाके कोई टेंशन ना हो। तो कहीं आउट ऑफ सिटी है या कहीं दूर है?
3: आउट ऑफ विलेज है भाई।
0: आउट ऑफ विलेज है, चले हैं तो करीब करीब ही। हाँ चलें, बहुत शुक्रिया, ढेर सारी बिरयानी बनाना सीखें और ढेर सारी खाएं उसको। ठीक है
3: भैया,
0: ओके सिद्रा, अपना ख्याल रखें।
3: एक बात, जी अगर निशान भाई सुन रहे हैं ना, वीर को कहें कि अगली बार आते हैं वो पॉइंट लेके आएगी।
0: ठीक हो गया, मैं कह दूंगा उनको। ठीक है,
3: ठीक हो गया,
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट पता नहीं क्या कह रहे उन्होंने लाने का, मुझे तो समझ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: वालेकुम अस्सलाम, जाने शायद अंसारी बोल रहा हूँ।
0: अंसारी साहब, मैं सदके जाऊँ आपसे, सेहत ठीक है आपकी?
4: करो मेरे मौला का फातर हो जाएगा।
0: अरे क्या बात, अंसारी साहब अल्लाह का बहुत एहसान है, क्या डिलीट करना चाहेंगे अंसारी साहब आप?
4: जाने अल्लाह का शुक्र है, मेरे आपसे कद के मुताबिक जो भी मुझसे नेक काम होता है वो मैं करता रहता हूँ।
0: क्या बात है जी, क्या बात, बहुत अच्छे।
4: जिंदगी में एक कमजोर इंसान की माँ को अपनी बहन बनाया था।
0: अच्छा,
4: तो कुछ दिन तक तो वो मुझे कहता रहा मामू जो कुछ भी, फिर उसके बाद बदतमीजियां शुरू हो गई उसकी।
0: अच्छा अच्छा,
4: मुझे आए दिन फरमाइशी करो, कल में वो फरमाइशी पूरी कर दिया करता था। और बदतमीजी उसकी ऐसी, तो मैं मेरे मालिक मैंने कहता है मामू तुसे मर जाओ।
0: अस्तगफिरुल्लाह, मतलब तुम्हारे मुंह से कह रहे गल?
4: ओ, मैं उसका मजा बोल रहा हूँ कि भाई देखे इसको आप समझाए, ये क्या उसके सिर के पास कर, नहीं ये हम दोनों मामू भांजो का मामला है।
0: अच्छा ठीक है, ठीक
4: है। एक दफा कहता मेरा मामू, अगर करो आप ना बीमा पर ऐसे ले लो आप, ठीक है जी, बीमा पर ऐसे ले लेता हूँ, फिर मुझे नॉमिनेट कर दो उसके अंदर।
0: अच्छा, मतलब बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है आपका इस वाले।
4: आप मरोगे तो फायदा मुझे तो होगा।
0: अल्लाह ताला खैर रखे अंसारी साहब। बस
4: यार क्या बोलूं मैं, क्या नहीं मानते,
0: मैं समझ गया।
4: मेरे को जब भी बंदे का वो ख्याल आता है ना, बोलो यार तौबा मेरे मालिक, आइंदा किसी को पता, यानी इतना बड़ा रुतबा नहीं देना है।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे अंसारी साहब।
4: आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर गपशप करते हैं आपसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया जी। शायद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 12:54 हो चुके हैं दोस्तों, मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं ये ज़रूर आपने बताना है। अगर ट्रांसमिशन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई आप तक कंप्लेन है, आपको ठीक आवाज़ नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम, आप लाजमी मुझे बताइएगा, जो ज़राए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 4441 है, फेसबुक है, इसके अलावा आप लोग हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपसे लेटर्स के हवाले से बहुत बार कहा कि आप लोग ख़त लिखा करें, हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे, एक आधा लेटर लाजमी जो है वो शेयर करेंगे। फातिमा हमारी लिसनर हैं जी आज़ाद कश्मीर से, काफ़ी रेगुलर वो प्रोग्राम सुनती हैं, सुनती थी, बल्कि किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं सुन पा रही। आज उनका मैसेज आया है कि उनके फादर की जो तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। और इसके अलावा एक शेर लिख भेजा है उन्होंने, वो कहती हैं कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे मेरी मेरा हाफजा। तो फातिमा बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, और आपने कहा हम डिलीट नहीं ऑल फॉर्मेट करेंगे, मतलब जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं लोग वो इस को इस लैंग्वेज को समझ रहे होंगे कि उन्होंने खाली डिलीट कर नहीं, आप जब वन टाइम डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बीन में भी वो डेटा रहता है। और उन्होंने कहा कि ऐसा डिलीट करेंगे कि कभी ज़िंदगी में चीज़ें सामने नहीं आएंगी। थैंक यू फातिमा, अस्सलाम वालेकुम जी।
5: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
5: मैं लाहौर से
0: साजिदा
5: बात कर रही हूँ।
0: लाहौर से साजिदा बात कर रही है। साजिदा टॉपिक सुना है आपने?
5: हाँ जी, हाँ जी सुना, और मैं शुरू से लेके आपका शो सुन रही हूँ, जबरदस्त, और टॉपिक भी अच्छा रखा आपने।
0: तो क्या कहना चाहेंगे आप साजिदा
5: जी? मैं टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी, अगर मेरा बस चले ना तो बेतुका जो लोग बेवफाई करते हैं करते हैं, या वजह ना हो ऐसे मूड बना लेना या तंग करना, और इन ऐसे लोगों को ना मैं अपनी जिंदगी से ना डिलीट करना चाहूंगी।
0: अच्छा ठीक हो गया, मतलब बिला वजह जो लोग तंग,
5: जो इनके हमारे माशरे को खराब करते हैं, जो इनके पहले गुर्बत वो महंगाई कम है, जो इनके ये ऊपर वाले लोग ऐसे तंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ना डिलीट करना चाहिए।
0: ठीक,
5: टेंशन खत्म,
0: ये चीजें डिलीट हो जाएंगी तो आप कहती हैं टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। हाँ
5: हाँ जी बिल्कुल। और ये मंडी बहाउद्दीन से मलक रहमान रफान आया, क्या नाम था, रफान मलिक आए थे, वो बीमार है, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, नो टेंशन, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो।
0: चलो जी, बहुत शुक्रिया, मैं समझा आप उनका नाम,
5: और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, और जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही है सबको अस्सलाम वालेकुम।
0: चलो वालेकुम वालेकुम सलाम,
5: अल्लाह हाफिज़।
0: बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, और मैंने कहा कि आपने मलिक इरफान साहब का नाम लेके कहा कि आप उनको भी डिलीट करना चाहती हैं। मलिक इरफान साहब हमारे बहुत प्यारे से कॉलर हैं जी, उनको डिलीट ना कीजिएगा। बहरहाल आपने उनकी सेहत के हवाले से दुआ की है। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं लाहौर से रिमशा।
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, रिमशा आप कैसी हैं?
6: शॉर्टकट
0: ही रखा, तो रिमशा क्या कहना चाहेंगी टॉपिक पे?
6: टॉपिक में मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई मैं तो काफी कुछ अपनी लाइफ से डिलीट करना चाहती हूँ। सबसे पहले ना आजकल के दौर में ना मोबाइल को डिलीट करना चाहिए, इसमें बहुत तंगी है सबको।
0: हाँ मोबाइल को, थोड़ा तो ब्याह हो गया ना, तुम तो कह रहे हो डिलीट करे
6: मोबाइल को डिलीट करना चाहूंगी। वैसे तो मैं अपनी लाइफ से उनको डिलीट करना चाहूंगी जब मेरे पीठ से बातें करते हैं या बुराइयां करते हैं, या टेंशनों को डिलीट करना चाहिए, टेंशन होनी नहीं चाहिए दिमाग के अंदर।
0: बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन थोड़ा हम ब्याह हो गया ना तो डिलीट कर रहे हो मोबाइल, जिन्हें तो नहीं होया उन्हें तो अलग रबते रखने ने ना।
6: हाँ ना मेरी शादी उनके लिए मैं कह रही हूँ मोबाइल डिलीट हो जाए।
0: ठीक हो गया, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे?
6: इश्तियाक अंकल को मेरा बहुत बहुत सलाम, अल्लाह पाक उनको जल्दी से ठीक कर दे और उनको सीएस दे दे फटाफट।
0: आमीन।
6: वो बहुत प्यारे बोलते हैं और माशाल्लाह मुझे बातें, मुझे हंसी भी बहुत ज्यादा आती है। आपने बोला ना कि इश्तियाक अंकल को डिलीट करना,
0: इश्तियाक अंकल साहब देखें उन्होंने कहा ना मैं किसी को डिलीट नहीं करता, बहुत अच्छे आदमी।
6: बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम, आपने भी बताना कि आप अपनी लाइफ में क्या डिलीट करना चाहते हैं।
0: मैं लाजमी बता के जाऊंगा, टेंशन ना लें आप, ठीक है?
6: ठीक है जी, ओके,
0: अल्लाह हाफिज़ जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, रात का एक बज चुका है, मुझे कहते हैं गज़नफर महमूद क्यानी।

0: होगी सी, मैं कित मतलब मैं वॉल्यूम कट कर रहे से तो कट होगी सी थोड़ी कॉल। सर क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का बहुत एहसान है, बिल्कुल ठीक हूँ जी।
1: आज बिल्कुल
0: सर बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। तुसी सेहत से ठीक है ना थोड़ी?
1: अल्लाह ने शुक्र बस सेहत तो बहुत खराब थी, एक भाई ने बहुत ही कुछ अल्फाज कहे थे।
0: अच्छा,
1: तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो भाई भाई को कहे तो फिर वो मछली के कांटे की तरह गले में फंस जाते हैं और छुरी की तरह काट के रख देते हैं। उस भाई के उन अल्फाजों की वजह से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और परेशान था।
0: अच्छा, आप वही अल्फाज डिलीट करना चाहते हैं? वही अल्फाज डिलीट करना चाहते हैं जिंदगी से?
1: जी बस उसने शो में कुछ कहा था तो बहरहाल चलो मैंने उसको माफ किया है,
0: ठीक हो गया।
1: और दूसरी बात ये है कि वो एक भाई आके पहले कह के मेरी बात चले गए हैं कि हसद वालों की बात, तो मैंने पिछले आपके शो में भी कहा था तो के मुनाफिक और हासिदीन से अल्लाह पाक बचाए। आजकल के जो लोग हैं वो अपने दुखों की वजह से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है।
0: क्यों, वो सुखी क्यों है?
1: जी,
0: ठीक हो गया, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं।
1: मस्जिद का इमाम अगर कोई एक दिन अगर कोई एक सूट न ले ले तो हमको ब्लड प्रेशर की गोली खा कर रात को सोना पड़ता है।
0: ये कितना लग गया है?
1: तो मैं इन मास्कों से बात कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक बचाए, कि वो मैंने कहा था कि बावले कुत्ते की वैक्सीन है, मुनाफिक की कोई वैक्सीन नहीं है।
0: ठीक हो गया, ठीक है
1: जी।
0: बहुत शुक्रिया थ्रेड साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल
1: रखिए।
0: अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल का। 1:20 हो चुके हैं दोस्तों, आप लोगों के कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं मुझ तक फेसबुक पे, उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर जिन दोस्तों ने पैगाम भेजे हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने इस पोस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। डॉक्टर किश्वर आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज़ प्ले ठीक है एक ट्रैक है, आपने रिक्वेस्ट की, मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहबा, मलिक वसीम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद आपने लिखा। और इसके अलावा आपने कहा जी नाइस शो आरजे की ब्रॉकिंग, अपनी लाइफ से हर वो लम्हा डिलीट करेंगी जिनसे आप हर्ट हुई हैं। डॉक्टर किश्वर आरिफ ने ये मैसेज किया रावलपिंडी से, ठीक है जी। उज्मा एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी और एवरीवन, आपने बहुत शुक्रिया, अल्लाह ब्लेस यू, आमीन, दुआ दी है सबको, बहुत शुक्रिया भाई साहब। ठीक है, आपने कहा सब कज़न नहीं, सिर्फ एक ही कज़न के हवाले से बख्तावर कियानी ने कहा था। किंजा उस्मान हमारे साथ कराची से मौजूद है जी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से दोस्तों बहुत कम पार्टिसिपेशन होती है, और एक तो हैदराबाद से अंसारी साहब करते हैं, लाहौर से हमें ज़्यादातर पार्टिसिपेशन आती है, लेकिन कराची से बहुत कम जो पार्टिसिपेशन का सिलसिला रहता है। तो आप लोग प्लीज़ अगर इस वक्त हमारी आवाज़ कराची में सुन रहे हैं तो पार्टिसिपेट लाजमी किया करें, जो भी टॉपिक हमने रखा होता है उस पर बातचीत किया करें, अपने होने का जो है वो एहसास दिलाया करें। अस्सलाम वालेकुम जी, इतना आराम से बोलेंगे इतना तो हमें समझ नहीं आएगा, बराए मेहरबानी थोड़ा सा लाउडली आप बोलेंगे तो आवाज़ आएगी हम तक। चलें जी, आप सबके लिए एक पुराना ट्रैक है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट हम तक पहुंची थी, आप लोग दूसरों के काम नहीं करते हैं, तो अरशद महमूद साहब कुछ कह रहे हैं, इनके सुन लें हमारी ना सही। इतनी सरगोशियों में कौन बात करता है, ये जो लास्ट कॉलर थी।

0: शहजादी मुल्तान से मैसेज कह रहे हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कहा जी लाइफ में हर पल टेंशन्स मिल रही हैं जी, लाइफ को डिलीट करना चाहूँगी। शहजादी इस तरह नहीं बोलते, मायूसी जो है वो गुनाह है, और अल्लाह ताला आसानियाँ करें आपके लिए। 1:26 हो चुके हैं दोस्तों, आपके मेरा साथ रहेगा ठीक का 2:15 तक। किंजा उस्मान कराची से मौजूद है, बहुत शुक्रिया। जैसे हमने कराची वालों का जिक्र किया कि आप लोग की जानिब से पार्टिसिपेशन कम होती है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, आपने कहा शो अच्छा है, और कहती हैं जो भी बुरे हाथ से बस उनको आप डिलीट करना चाहेंगी। कराची पाक कॉलोनी से आपने मैसेज किया। हुसैन दिलबर हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे दोस्त, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया। आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गज़नफर भाई। आसिफुर रहमान क्वेटा से कॉल की, 4 हफ्तों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कॉल नहीं मिल रही। मेरे दोस्त 0519202540 भी हमारा नंबर है, और 0511111001 भी ये हमारा नंबर है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। साइम तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ढेर सारे गुलाब के फूल दे भेजे हैं आपने मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। गुलाब के फूल की तो क्या ही बात है जी, बहुत किस्मत वालों को ये फूल मिलते हैं, और बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। बिस्मिल्लाह फूड्स आप हमारे साथ मौजूद हैं, आज का टॉपिक क्या है, फूड से रिलेटेड है जी, आपने अगर प्रोग्राम सुना हो। और वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ये कुछ हमें मैसेजेस मिले हैं, और इसके अलावा फेसबुक पे यही मैसेज थे, 4471 पे लास्ट मैसेज जो शहजादी का था। इसके अलावा इरम ने मैसेज किया रावलपिंडी से, इरम कहती हैं कि लाइट जाती है और ये टाइम डिलीट करना है कि जी लाइट ना जाया करे, अच्छा अच्छा सिलसिला रहता है, अचानक ही लाइट चली जाती है, और लाइट जाने के बाद सबसे बड़ी टेंशन जो है वो ये है कि वाईफाई ऑफ हो जाता है और जो मोबाइल डेटा है वो कनेक्ट नहीं हो पाता ठीक से, इंटरनेट नहीं चल पाता, तो अल्लाह लियो 1 घंटा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग का टाइम है, तो 1 घंटा फ़ोन के बिना क्यों नहीं गुजार सकते, ये सवाल का जवाब लाजमी दीजिएगा। एक टाइम होता था मोबाइल फ़ोन, मतलब ये एंड्रॉयड फ़ोन तो इनकी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा भरमार जो है वो 2009-10 के बाद ही हुई है, उससे पहले इतना ज़्यादा ये आम नहीं थे, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो एप्लीकेशंस आई हैं ये ज़्यादातर जो हैं ये COVID-19 के दौरान 2018-19 में इन्होंने जो है वो इस टेक्नोलॉजी के दौर में कदम रखा। सबसे पहले आई थिंक डब मैश था, जिसमें जस्ट आप अपना वॉइस डब करते थे, आवाज़ किसी की होती थी, आप लिपसिंग करते थे, फिर उसके बाद वो चेंज हो के ये फिर टिकटॉक, लाइकी और यूट्यूब तो ऑब्वियसली सबसे पहले का है, लेकिन ज़्यादातर टाइम कंज्यूमिंग जो चीज़ें हैं वो टिकटॉक है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं रील्स देखने के लिए, और स्नैपचैट भी कोई एक बला है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर रेडियो बंद कर दें प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना बहुत प्यारा सा नाम बताएं आप।
1: जी, मेरा नाम मुदस्सिर रहमान है।
0: मुदस्सिर रहमान साहब बात, मुदस्सिर भाई क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी आपका माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है आपका
0: सर,
1: माशाल्लाह ये एक फरमाइश करनी थी आपसे।
0: सर आप फरमाइश करें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको शामिल करने की।
1: सर कोई अताउल्लाह नियाज़ी का सॉन्ग सुना दे।
0: अताउल्लाह का आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं, चले हम ट्राई करते हैं कुछ टाइम में उनका लाला तौला का ट्रैक शामिल करने के, ठीक है?
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रहे
2: हैं?
0: हाजरा मरी से बात कर रही है। हाजरा प्रोग्राम सुन रही हैं आप? यस, आपने टॉपिक सुना हुआ, असल में ना ज्यादातर सुनते नहीं है, तो फिर मैं उनसे खाने पीने का पूछ लेता हूँ।
2: खाने पीने का क्या पूछेंगे?
0: नहीं आपसे नहीं पूछ रहा, मतलब जो ये कहते हैं ना मैं टॉपिक नहीं सुना है उसको कहता हूँ यार चले इनके लिए आसानी कर देंगे, आपने क्या खाया या खाने में क्या अच्छा लगता है? अच्छा ठीक हो गया, मुझे बताएं कि क्या कहेंगे टॉपिक पे आप?
2: बस ये कहूंगी कि माजी की जगह आते हैं तलख आते हैं, उनको डिलीट करना चाहती हूँ।
0: ठीक हो गया, उनको आप डिलीट करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या खूबसूरत सा पैगाम देंगे आप?
2: बस जरूर सा पैगाम ये दूंगी कि गनफर क्या ने साहब को सुने और उनका जरूर से बस उनके शो में पार्टिसिपेट। अच्छा गनफर भाई मैंने आपसे एक बात शेयर कर
0: जी जी जी ऑन एयर ही करनी है।
2: मुझे किसी ने कहा उनसे किसी ने पूछा ना कि आपके मेरा एड्रेस मतलब मुझे पता है मैम और हिना को फोन करती हूँ और मेल में किसको बता देती
0: हूँ अमजद भाई का। हाँ अमजद भाई भी रेडियो की दुनिया में तो बहुत पहले से हैं वो, लेकिन 101 अभी उन्होंने ज्वाइन किया और बहुत खूबसूरत आवाज है, बड़े अच्छा वो प्रोग्राम करते हैं।
2: तो बस ये सबसे नवल को प्यार भरा मोहब्बत
0: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी, मासूद कौर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: क्या कहना चाहेंगे प्यारे भाई, अपना नाम बताएं सबसे पहले।
3: नदीम लगारी उत्तराखंड से।
0: सिंध से लगारी साहब ने बात किया सर, आई थिंक पहली दफा कॉल किया आपने।
3: जी जी मैं तालुक पाक आर्मी से।
0: सर तालुक आपका पाक आर्मी से, बहुत शुक्रिया सर। अभी ड्यूटी पे आप?
3: जी जी ड्यूटी।
0: क्या बात है सर, क्या कहना चाहेंगे आप?
3: मैं कहना चाहता हूँ मेरा गाना है जो चला
0: दे। क्या कहना चाहते हैं आप?
3: गाना
0: अच्छा गाना चला दे। कौन सा गाना सुनना है आपने?
3: नैन पसंद तेरे, नैन पसंद थोड़े,
0: नैन पसंद थोड़े से
3: जी।
0: थोड़ा सा आप गुनगुना के सुनाए ना, आए ना।
3: तेरे नैन पसंद थोड़े, नैन पसंद ये वाला।
0: ठीक है जी, तेरे नैन पसंद सोने नैन पसंद
3: जी जी।
0: ठीक है,
3: ख्याल गाना है।
0: ठीक हो गया, गाना चलाते हैं, ख्याल रखे अपना। ठीक है
3: ओके,
0: अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। नैन पसंद मतलब वो किसी की आंखों के हवाले से बात करें, किसी की आंखें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं और आंखों से रिलेटेड ट्रैक हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। 1:33 हो चुके हैं और 1:40 से ऑनवर्ड, नहीं जी 1:45 का टाइम है, मैं पता नहीं क्यों भूल रहा हूँ। लाला तौला की ट्रैक की रिक्वेस्ट आई है जी, अली जफर और लाला तौला का मिक्स एंड मैच ट्रैक हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। ड्राइव करते हुए अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइविंग करें, अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपको बहुत ख्याल रखते हैं।

चले जी, ट्रैक एक की रिक्वेस्ट थी, लाला तौला का ट्रैक सुनना चाहते थे। मैं एक और ट्रैक इनका ढूंढ रहा था जो कोक स्टूडियो में इन्होंने गाया था, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक था, लेकिन वो हमारी प्लेलिस्ट में मिल नहीं पाया। तो माजर चाहता हूँ मेरे दोस्त जिन्होंने लाइव कॉल के जरिए, और उन दोस्तों से भी जो रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों का ट्रैक प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया। इस वक्त जी एक बड़ा ज़बरदस्त एक मैसेज है, और वकास हमारे बहुत अच्छे दोस्त और जो लोग रेगुलर प्रोग्राम सुनते हैं 1 ओ 1 रात 12 बजे से बाद की ट्रांसमिशन, वकास हमारे ड्यूटी ऑफिसर और अब आरजे भी हैं माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त इनका प्रोग्राम भी होता है रेडियो पाकिस्तान के ही एक स्टेशन से, वर्ल्ड सर्विस वहाँ से प्रोग्राम करते हैं। आजकल नहीं कर पा रहे, उसकी भी रीज़न इंशाल्लाह किसी दिन बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। शायरी बहुत अच्छी कर लेते हैं, इनको आप सोशल मीडिया पर अगर फॉलो करेंगे, सोशल मीडिया पर टिकटॉक और फेसबुक पे इन पे इनकी काफ़ी ज़्यादा जो वीडियोस हैं, और उसमें बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है माशाल्लाह। काफ़ी अर्सा जिम जा के उन्होंने बहुत खूबसूरत अपनी जो फिज़िक है वो भी बनाई है। वकास मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया जी। और इसके अलावा सदफ़ हैं लिसनर जो हमें सुन रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया सदफ़, आपने मैसेज किया। साथ साथ वकास के लिए भी बहुत ढेर सारी दुआएं जी, हमारे ड्यूटी ऑफिसर भी रहे हैं और बहुत अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा इकबाल शाह, सैयद अदील इकबाल शाह साहब ने इस्लामाबाद पुलिस से आपका ताल्लुक, आपने मैसेज किया। सर जी आपका बहुत शुक्रिया, और कोई बात नहीं जी, इंसान मसरूफ़ होता है, आप मसरूफ़ रहे, आपने कहा कि कुछ प्रोग्राम्स नहीं सुन पाया, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आज आपने मैसेज कर दिया, यही हमारे लिए बहुत है। 1:38 ओवरऑल दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 1:45 से ऑनवर्ड जो है वो हम कुछ दोस्तों से शायरी सुनते हैं, और बहुत खूबसूरत अंदाज़, बहुत मीठे लहजे में, और बहुत सी प्यारी आवाज़ें हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करती हैं। 1 से 2 कॉल्स और प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिर हमारा सेगमेंट चेंज करने का टाइम आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अगर आप इस तरह बात करेंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, बात सुने इस तरह, तो मैं कदे खारले दी गल नहीं सुनी है यार। अल्लाह ने किड़े पास टर पे इस तरह ना किया करें जी। अगर आपको घर से बहुत ज्यादा सख्ती है रात के स्पेयर कॉल करने की, तो

0: ओके जी, वेलकम बैक दोस्तों। अब से 2:15 तक हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल कर सकें, और इस दौरान हम आपसे खूबसूरत किस्म की शायरी सुनेंगे। देखते हैं कि सेगमेंट की सबसे पहली कॉल कौन हमारे साथ मौजूद है और क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम,
0: कैसे हैं मेरे दोस्त?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस टाइम भी कुछ ठा ठू हो रही है, खैरियत है, कितने हो?
1: शादियाँ कर रहे हैं लोग।
0: अबासी साहब, वही बस शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और
1: क्या करें, खुश रहे लोग। आप ही बात ही बात करो।
0: मैं पहचान लिया सर, और लोगों को अभी भी कहते हैं वक्त है, बात जो होनी थी।
1: नहीं, कल परसों ही ऐलान हुआ था कि एक डिश है, तो ये करें, ये ना करें, वो ना करें, लोग कहाँ सुनते हैं।
0: चले, जुर्माने होंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी चीजें। क्या सुनाना चाहेंगे सर?
1: सर मैं जिदा से पिछले प्रोग्राम में आप जब एंड कर रहे थे तो बताया कि रेगुलर कॉल फलां है, फलां की कॉल नहीं मिली, फलां की नहीं मिली। आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैं आउटसाइड में भी यहाँ भी रहता
0: हूँ। बस सर मैं माजर चाहता हूँ, मुझे आप हमेशा याद रहते हैं। आपको याद होगा एक टेन्योर में आप बिल्कुल गायब हो गए थे, ये अभी दोबारा आप बड़े बहुत अरसे बाद माशाल्लाह रेगुलर हुए। जाहिर बात इंसान मसरूफ होता है ज़िंदगी में, और भी चीज़ें होती हैं, तो मैं आप मेरे जहन में याद रहते हैं। आइंदा इंशाल्लाह, अगर आप अल्लाह ना करे आप गुम हो कि इधर उधर हुए, तो मैं लाजमी याद रखूंगा।
1: इरफान आए, अच्छा लगा, दुआएं से दुआएं उनके लिए। यानी ना भी पिछले शो में भी नहीं आई, आज भी नहीं आ रही, क्या वजह है? वो भी हम गुम हो गए।
0: चले अभी देखते हैं, 15-20 मिनट आए, क्या बता दें।
1: लजीज जाने साहब पहले आ गए थे, अभी उन्होंने आना चाहिए था उन्हें, तो
0: मैं तो मना नहीं करता।
1: सुनाता हूँ, कॉल लंबी हो रही है ना, मेरी आदत नहीं आपको लंबी कॉल।
0: आए आए सर आए।
1: वो है कि कोई ऐसा जादू तू ना कर, मेरे इश्क में वो दीवाना हो।
0: हाय हाय,
1: यूं उलट पुलट कर गर्दिश की, मैं शम्मा वो परवाना हो।
0: क्या बात है,
1: जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायका खींच कलंदर सा,
0: कलंदर सा,
1: कोई ऐसा जंतर मंतर पर जो कर दे बख्त सिकंदर सा,
0: सिकंदर सा,
1: कोई किला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए, कोई ऐसा दे तावीज मुझे वो मुझ पे आशिक हो जाए,
0: हो जाए,
1: कोई फाल निकाल करिश्मा कर, मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए।
0: अरे क्या बात,
1: कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिल, वो कहे मुबारक जल्दी आ अब किया न जाए तेरे भी,
0: तेरे भी।
1: किसी ऐसी राह पे डाल मुझे, इस राह पे वो दिलदार मिले, असली दम दुरूद बता जिसे पढ़ू तो मेरे मेरा यार मिले।
0: क्या बात है जी, क्या बात।
1: कोई ऐसा काला जादू कर काबू कर पे काबू जिन, कोई काबू कर पे काबू जिन, कोई सांप निकाल पटारी से, दागा खेंच परांदे का, कोई मन का एक शजारी से, कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुश गुफ्तार हूँ मैं, कोई ऐसा अमल करा मुझसे वो जाने जान निसार हूँ मैं, कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ना उसे लगे मैं जान के जैसा हूँ, जो मर्जी मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूँ,
0: बिल्कुल वैसा।
1: कोई ऐसा इसने आजम पर जो अश्क बहा दे सजदों में, और जैसा तेरा दावा है महबूब हूँ मेरे कदमों में,
0: कदमों में।
1: और आमिल सुन, और आमिल रुक, एक बात कहूँ, ये कदमों वाली बात है क्या, महबूब तो है सर आंखों पर, मुझ पत्थर की औकात है क्या। और आमिल सुन, ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है, सब तागे उसके हाथ में है जो मालिक कुल जहान का है,
0: कुल जहान का है।
1: तो बहुत शुक्रिया, लंबी हो गई जरा, तो
0: मैं बहुत कमाल की, बहुत कमाल की, आपने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ी। हमारे यूसुफ भाई बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत मेरे बहुत दिल के करीब। मैं इसकी आखिरी लाइन हमेशा अपने प्रोग्राम में पढ़ता रहता हूँ कि सब धागे उसी के हाथ में है जो मालिक कुल जहान का। क्या बात है, ये टैग लाइन ना, बहुत
1: सुनने वालों को सलाम, नज़ीर की आनी आज रात ही, सब सुनने वालों को
0: जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आवाज़ साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम, साहिब अंसारी बोल रहा
0: हूं। अंसारी साहब क्या सुनाएंगे सर?
2: थोड़ा सा टाइम दीजिएगा
0: जी। जी
2: हाँ, पत्ते पत्ते गुलाब हो जाती, पत्ते पत्ते गुलाब हो जाती, हर कली नए ख्वाब हो जाती। तुमने डाली ना मैं फिशा नजर है, तुमने डाली ना मैं फिशा नजर है, और ना शबनम शराब हो जाती।
0: क्या बात क्या बात।
2: अब इसका जवाब जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। तो वो कहता है कि पत्ती पत्ती गुलाब क्या होती, हर कली महव ख्वाब क्या होती,
0: क्या होती,
2: जिसने लाखों हसीन देखे हो उसकी नीयत खराब क्या होती,
0: क्या होती। बहुत शुक्रिया सारी सवाल की कॉल का, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा चलो जी, आज बड़े गल हैं सारे साहब ने मेरे, तो पहले फोन अपना बंद कर देता है। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। गाना सुना दो मैं आपको, मैं इसी आवाज में जिस तरह आप बात कर रही हैं ना इसी तरह आपको गाना सुना देता हूँ। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। 051-111-000-101 पे दोस्तों आप लोगों की कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
3: मिस्टर कैनी, क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना प्यारा सा नाम बता दें।
3: यार इतनी देर से आपसे मुखातिब हैं, आप पहचान लिया करें। अब्दुल नूर हाशमी, रिवाज गार्डन, लाहौर से।
0: हाशमी साहब माजरत, अगर मैं नाम इसलिए पूछता हूँ कि आप बताएंगे तो अच्छा लगता है। वैसे
3: वैसे आपकी आरजे जो है निशान नासिर है ना, वो हर बंदे की कॉलर की आवाज पहचानते हैं, ये एक आरजे में एक बड़ी खूबी होती है।
0: बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं भी कर लेता हूँ। निशान भाई तो बहुत ही कमाल।
3: अच्छा, बाबा टाइम थोड़ा है, मैं सिर्फ दो गुजारिश करूंगा फिर मैं अपनी एक गजल पेश करूंगा।
0: जी जी जी,
3: ये टाइम मुख्तर होता है, 30 मिनट्स होते हैं।
0: जी जी,
3: तो तेरा वही दोस्त आए जो शायरी सुनाए, और दूसरे दरमियान में ट्रैक ना चलाया करे।
0: ठीक है, नहीं इस दौरान तो ये जो 45 और नहीं चलाता मैं।
3: हाँ ठीक है, तो मैं वैसे आपको याद था नहीं कराई मैंने, तो हमारे लाहौर के एक शायर थे गुमनाम से, पूर्णम इलाहाबादी।
0: ठीक हो गया,
3: जिनकी एक गाई हुई कवाली भी बड़ी मशहूर हुई, हर बजोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तो गुलाफरी साबरी, मकबूल साबरी और फिर अदनान सभी खान भी गाया। तो उनकी शायर, उनकी एक गजल।
0: जी जी सुनाए सर।
3: मौत की सुन के खबर प्यार जताने आए, रूठे दुनिया से जो हम यार बनाने आए, अच्छे दिन आए तो मैंने ये तमाशा देखा, मेरे दुश्मन भी गले मुझको लगाने आए,
0: लगाने आए।
3: आज मिलकर मेरे दुश्मन का पता पूछते हैं, मुझसे मिलने वो न मिलने के बहाने आए, दर्द गम और उदासी के सिवा कौन आता, इसको भेजा था मेरे घर में खुदा ने आए। अगला शेर है, फूल ही फूल खिले जिनकी बदौलत है दोस्त, उनके हिस्से में न फूलों के खजाने आए, और ये हाथ से देखो, इन्हीं वालों के सिवा कोई नहीं था उसका, लोग मुफलिस का जनाजा ना उठाने आए, और बकता है रोज ये वो भी मेरी मौत के बाद है पूर्णम, या जब मेरी वफाओं के फसाने आए, मौत की सुन के खबर प्यार जताने आए, रूखे दुनिया से जो हम यार बनाने आए।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी। हाशमी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने सुनाया कलाम। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: सर जी, क्या नहीं बोल रहा हूँ। नज़ीर साहब क्या सुनाएंगे आज?
4: इश्क हमें बर्बाद न कर, इश्क हमें बर्बाद न कर,
0: क्या हुआ नजीर साहब?
4: बुढ़ापा हो गया जी।
0: कोई बात
4: नहीं, इश्क हमें बर्बाद न कर, इश्क हमें बर्बाद न कर, सॉरी जी।
0: कोई बात नहीं,
4: ध्यान में आ रहा।
0: कोई बात नहीं नजीर साहब, कोई बात नहीं,
4: कोई और बहुत शुक्रिया।
0: कुछ और ध्यान में आ रहा तो वो सुना दे।
4: हाँ मैं सुना देता हूँ। कांटों से मोहब्बत करते हैं, किरदार तो देखो फूलों का,
0: क्या बात।
4: कांटों से मोहब्बत कर کرتے ہیں کردار تو دیکھو پھولوں کا زخموں سے کلیجہ پڑ جائے پر ساتھ نبھاتے رہتے ہیں.
0: کیا بات ہے.
4: ایک مصطفیٰ زیدی اخبار جنگ اخبار کے جتنے تھے بڑے مشہور ہیں مصطفیٰ زیدی
0: جی جی,
4: تو ان کا ایک شعر تھا وہ ایک خاص مخصوص موقع کے لیے تھا لیکن میں آن ایئر نہیں وہ بتانا چاہتا. انہوں نے کہا تھا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ. کسی کو کہا تھا انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کیا نشان ہے.
0: کیا بات ہے.
4: تو بہت شکریہ آباسی صاحب نے سلام دیا اور بہت اچھا ماشاء اللہ سلام انہوں نے سنایا.
0: ایسے بالکل ایسے جی.
4: اور اگر انیلا بہن بھی آ جائیں تو لطف تو بالا ہو جائے.
0: ٹھیک ہے,
4: اللہ تعالیٰ
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ. آلموسٹ جی دو بجنے والے ہیں, رات کے 1:58 ہو چکے ہیں. دوستو مجھے کہتے ہیں غزنفر محمود کیا نہیں آپ کو کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا. یہ محفل ہم سے جاتے ہیں ہر ہفتے کی رات 12 سے لے کر 2 تک, اور 1:45 سے آنورڈ 2:15 تک ہم شاعری کا یہ بہت خوبصورت جو محفل ہے ایسے جاتے ہیں. اس میں بہت پیاری پیاری آوازیں بہت اچھے انداز میں آ کے کلام سناتے ہیں, تو آپ بھی ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے, آپ لازمی آ کے سنایا کریں. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام بھیا, میری آواز آ رہی ہے؟
0: آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے, کون بات کر رہے ہیں؟ سوری اور نام ٹھیک سے نہیں سنا.
5: سدرا قریشی بھائی.
0: سدرا قریشی, ٹھیک ہے. سدرا کیا سنائیں گے آپ؟
5: میں شعر سناتی ہوں آپ کو.
0: سنائیں.
5: جو شخص مدتوں سے میرے شہدائیوں میں تھا, جو شخص مدتوں میرے شہدائیوں میں تھا, آفت کے وقت وہ بھی تماشائیوں میں تھا, اس کا علاج کوئی مسیحا نہ کر سکا, اس کا علاج کوئی مسیحا نہ کر سکا, جو زخم میری روح کی گہرائیوں میں تھا.
0: کیا بات, کیا بات, بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کچھ اور سنائیں گے آپ؟
5: اور سنوں گی, اور سناتی ہوں میں آپ کو اچھے والا.
0: نہیں آج کے لیے اتنا ہی ہے, یہ اچھے والا آپ نے نیکسٹ ٹائم لازمی سنانا ہے, ٹھیک ہے
5: جی بھائی.
0: بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. 2 ہیں دوستو اور آپ لوگ ہمیں کال کریں 0511111001. السلام علیکم. نیکسٹ کال جی. السلام علیکم. سنا دیتے جی, یہ مطلب ایک کال نا سنون ڈسٹرب کرے گی کچھ عرصہ, آپ پلیز تھوڑا سا لاؤڈ اگر آ کے بولیں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ سرگوشیوں میں کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. نیکسٹ کال جی. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام, کیا حال ہے کینی صاحب؟ ٹھیک ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ پاک کا بہت احسان ہے. اپنا پیارا سا نام بتائیے گا. عباسی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, صحت ٹھیک ہے؟ کیا سنائیں گے سر؟
6: جی میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں, بڑا پیارا سا شعر ہے. گر جائے جو دیوار تو ماتم نہیں کرتے, کرتے ہیں بہت لوگ مگر ہم نہیں کرتے, اے اپنی طبیعت میں جو خامی تو یہی ہے, ہم عشق تو کرتے ہیں مگر کم نہیں کرتے.
0: کیا بات ہے, ہم عشق تو کرتے ہیں مگر کم نہیں کرتے,
6: مگر کم نہیں کرتے. سب سے میں نے کہا کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, اس لیے میں مگر میں نیکسٹ جو ہے بڑی شاعری کروں گا ٹائم کی قلت کی وجہ سے, کہ آپ وائنڈ اپ اپنے کرنا ہے ٹائم کے اندر, تو اس لیے میں نے تھوڑا مختصر رکھا ہے.
0: بہت
6: شکریہ. آپ کی طبیعت کیسے, مزاج کیسے ہیں؟
0: اللہ کا بہت احسان ہے سر, میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت شکریہ.
6: آپ کی تمام ٹیم لائکر ٹیم کیسی ہے؟ میں تو سب ٹھیک ٹھاک ہیں,
0: اللہ کا بہت احسان ہے سر, سب ٹھیک ہے الحمدللہ.
6: جیتے رہیں, سلامت رہیں, خوش رہیں.
0: جزاک
6: اللہ, میری دعا آپ لوگوں کے ساتھ.
0: جزاک اللہ, بہت شکریہ جی ان بہت میٹھی دعاؤں کے لیے. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: کون بات کر رہے ہیں؟ یار اندازہ کریں آپ. मतलब इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसमें आके आपने डब्बे में डब्बा डब्बे में चाहे गजनफर भाई बाय बाय, कोई हाल नहीं है जी। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी हमारे साथ कौन मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं। 051-111-0101 ये हमारा नंबर है दोस्तों। 2:02 हो चुके हैं ऑलमोस्ट, हमने मजीद 15 मिनट तक हमारा और आपका यह साथ रहेगा। इस दौरान आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में अगर बहुत खूबसूरत कलाम कोई सुनाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-111-0101। इसके अलावा 051-920-2540 ये हमारा नंबर है। आप फेसबुक पर भी अपनी पसंद की शायरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। हमारा जो पेज है उस पर जो पोस्ट मौजूद है उस पर आप लोग लाजमी जो है वो कमेंट कर सकते हैं, उसको हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में लाजमी शामिल करेंगे। मेरा आपका साथ हफ्ते में 3 दिन रहता है। ताहिर अजीज़ मौजूद हैं जी, ज़िशान भाई, खुरम भाई एंड मुज्तबा भाई, यस्टरडे योर शो आपने इंजॉय किया उनके प्रोग्राम का। गुलावेज़ा, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ शुक्र अल्लाह का। आबिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो अच्छा है जी, और एक ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की है, मैं कोशिश करता हूँ मेरे भाई इसको शामिल करने की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कहाँ गायब थी? लोग तो बहुत ज्यादा पूछते हैं आपका माशाल्लाह।
8: बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली गला खराब है तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ना ही जाऊँ, और दूसरे ये भी कि दूसरे नए कॉलर्स को भी मौका मिले जरा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए।
0: नहीं आप लाजमी, एक तो ये कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ये गले वाला मामला जो वायरल फैला हुआ है, लेकिन ना लोग पूछते हैं, मैंने भी लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, आज भी लोगों ने, बल्कि हर कोई इस सेगमेंट में आके जो पहली कॉल आती है ना वो ये कहते हैं कि अनिला आप आज आएंगी या नहीं आएंगी, या लास्ट शो में वो आई थी।
8: नहीं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, नजीर भाई भी, आतिफ भी, और बाकी भी जो आते हैं मुझे याद करते हैं। मुझे लगता है रीबा शाह सरगोशियों में फोन करती है, ऊंचा नहीं बोल पा रही होगी, पास कोई सोया होगा।
0: बस वो ना 3-4 कॉल्स, और कॉल्स भी उनकी नॉन स्टॉप लग रही है, हाथ रखा हुआ है उन्होंने यस के बटन पे।
8: वो बेचारी कोशिश तो करती है लेकिन उस बेचारी की कॉल लगती तो है, लेकिन वो शायद बोल नहीं पाती होगी मुझे।
0: अच्छा अच्छा,
8: सबके लिए बहुत ही जो मुझे याद रखते हैं, और आपके लिए भी बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आपको अपना प्यारा घर जरूर जरूर दिखाए, आप खैर से जाए, देख के आए इंशाल्लाह।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या सुनाएंगे आप?
8: सोचती कुछ हूँ, याद कुछ रह जाता, बोल कुछ देती। आके ले जाए मेरी आँख का पानी मुझसे, आके ले जाए मेरी आँख का पानी मुझसे, क्यों हसद करती है दरिया की रवानी मुझसे।
0: क्या बात,
8: क्यों हसद करती है दरिया की रवानी मुझसे, मांस नाखून से अलग करके दिखाया मैंने, उसने पूछे थे जुदाई के मानी मुझसे। एक शख्स की खातिर मुझे बर्बाद ना कर, रोज रोते हुए कहती है जवानी मुझसे।
0: क्या बात है,
8: शुक्रिया,
0: कमाल का। और ये जो
8: जी जी
0: सुनाए सुनाए, अभी कंटिन्यू है ना?
8: जी जी, एक दो शेर हैं। मैं उसके हाथों पे हाथ के निशान छोड़ाया, उसने मांगी थी मोहब्बत की निशानी मुझसे।
0: क्या बात
8: जी, आप क्या कह रहे थे?
0: मैं कह रहा था ये मास वाली लाइन जो है आपकी हर शायरी में ना कोई एक आधी टैग लाइन ऐसी होती है जो सिद्धी जाके बजती है दिल में।
8: ठा करके बजती है।
0: बिल्कुल ऐसे बहुत खूबसूरत है आपने।
8: और अब आपको वो अपने वो वाली शायरी भी थोड़े से लाइनें सुनो।
0: हाँ, अगर आपको वो सुना दें कि टाइम है आपके पास।
8: जी जी जी जी जी। तेज हवा के झोंके शब पर टकराते हैं पेड़ों से, कितने पत्ते आंसू बन के गिरते हैं इन शाखों से, किरने बिस्तर तक आती हैं टूटे खाब उठाने को। अंदर के दुख कब छुपते हैं इन खिड़की के पर्दों से। अलमारी के एक खाने में याद किसी की रखी है और उसकी चाबी लटका दी है आती जाती सांसों से। जाने वाले जैसे जाते हैं वैसे कब आते हैं। आंखें वीरान हो जाती हैं बातें करती रस्तों से। तेज हवा से टकराने में एक हुनर था कश्ती का। लोग तमाशा देख रहे थे बैठे दूर किनारों से। अब उससे मिलूंगी तो नहीं, ये लाइन मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगी, मैं भूल गई हूँ। बाकी जो खास लाइनें थी ना, जो आपकी फेवरेट, वो मैंने सुना थी।
0: बहुत आला, बहुत आला, बहुत शुक्रिया आपका।
8: बहुत शुक्रिया सबके लिए, बहुत सी दुआएं सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी,
0: तेरे थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दें जी, हमारी बहुत अच्छी लिसनर हैं और बहुत अच्छा लगता है जब भी, और बहुत अच्छे अंदाज में ये शायरी सुनाती हैं। जितने भी इस टाइम कॉल करते हैं दोस्त, आप सब बहुत अच्छे अंदाज में सुनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कॉल सुन के इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम सलाम,
0: कैसे
9: हो? क्या नहीं भाई, ठीक हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक, अपना सोना जा ना दस दियो।
9: मेरा नाम सईद ख्वाजा मुल्तान।
0: सईद ख्वाजा साहब मुल्तान से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे लगता है कि पहली दफा मेरी आपसे बात हो रही है।
9: मेरे ख्याल जी पहली दफा है जी, बस शायरी का था ना थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो।
0: नहीं सर, आए
9: डाल दे।
0: सुनाए सुनाए सर सुनाए।
9: लेकिन ये है कि है जरा सराकी में।
0: सर कोई मसला नहीं, आप सुनाए।
9: हाँ ठीक है, वो कहता है हर फला कलाम और मेरा अपना लिखा हुआ है।
0: अरे क्या बात, आ जाए
9: तेरी मेरी एक मर्जी था, एक दूजे तू जुदा क्यों।
0: आए हाय हाय हाय,
9: मन तेरी मेरी एक मर्जी था, तू जुदा क्यों, तू मेरी तकरार है ता मैं तेरे तू फिदा क्यों। मन दे मैलियां दी मैल तो में आपे रहमत ना, सत्तार भी है गफार भी है ता ऐब मेरे बेरिदा क्यों।
0: क्या बात,
9: फस गई दुखा दे भंवर च कश्ती मेरी बका दी, डुबो इंजन अरमान मेरे ता तू मेरा ना खुदा क्यों। हिजर दी भा गुजार करे ते भांबड़ बल्ले सईद विसाल दा, हिजर दी भा गुजार करे भांबड़ बल्ले सईद विसाल दा, गुजरान थींदी ए दुखन नाल ते दरिया दी गदा क्यों।
0: क्या बात है, क्या बात,
9: सही है जी,
0: कमाल का। सर एक तो अंदाज बड़ा खूबसूरत आपका, और जो इसकी टैग लाइन है वो भी बहुत जबरदस्त। जज़ाक अल्लाह सर,
9: बस मौला ने लिखवाई है मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरी तो मैथिक तालीम है सारी।
0: सर अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें और इस सेगमेंट में आया करें, अच्छा लगेगा
9: इंशाल्लाह। आज कॉल मिल गया तो दिल को हौसला हुआ है,
0: इंशाल्लाह
9: आएंगे और आपको उर्दू की भी सुनाऊंगा।
0: बहुत शुक्रिया,
9: मेरी सारी शायरी अपनी है, मैंने किसी की याद नहीं की हुई।
0: सर क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा,
9: बहुत
0: जजाकल्ला,
9: बड़ी मेहरबानी,
0: जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। दोस्तों आखिरी एक से दो कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डॉक्टर अलिशबा ने मैसेज किया, डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं जी, अल्लाह खैर करे। कहते हैं कि कुछ आंसू राज होते हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान, इसमें कोई शक नहीं है जी। नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
0: सर कैसे हैं, खुश आमदीद सर जी।
10: आप हमें गुजार कर रहा हूँ सर, आपको भी खुश आमदीद, ठीक हैं सर, ये से हैं।
0: अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। हमीद भाई लगता है 2 बजे लाइट नहीं गई है, चूंकि आप गुम जाते हैं कभी कभी।
10: नहीं आज लाइट चली गई थी, आ गई है फिर 11 बजे आ गई थी।
0: चलो शुक्र है हमीद भाई। کیا سنائیں گے خوبصورت انداز میں آپ؟
10: ایک قطع میرا آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ میں ایک باب لکھنا چاہتا ہوں.
0: ٹھیک ہے.
10: باب نیا ایک باب لکھنا چاہتا ہوں, انوکھے خواب لکھنا چاہتا ہوں.
0: ارے کیا بات.
10: نیا ایک باب لکھنا چاہتا ہوں, انوکھے خواب لکھنا چاہتا ہوں. اور پھر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ میں تجھ کو سوچتا رہتا ہوں پل پل, میں تجھ کو سوچتا رہتا ہوں پل پل, تجھے نایاب لکھنا چاہتا ہوں.
0: کمال جی.
10: تجھے نایاب لکھنا چاہتا ہوں.
0: نایاب لکھنا.
10: انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں, کیونکہ ٹائم آپ کے پاس بڑا قلیل ہے اس وقت.
0: بہت شکریہ حمید بھائی. کوئی مسئلہ نہیں, جب آپ کی کال مل جائے نا تو مجھے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی میں نے 2:15 پہ ہی آف کرنا ہے. میں میرے جو قابل احترام آپ لوگ سب لسنر ہیں, آپ اچھا کلام سناتے ہیں تو اس کو 5-7 منٹ ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ
10: چلیں پھر ایک قطعہ اور سن لیں کہ تو جسے پیار سمجھ بیٹھا ہے. میرا اپنا یہ کہ تو جسے پیار سمجھ بیٹھا ہے وہ کوئی کھیل بھی ہو سکتا ہے.
0: کیا بات.
10: تو جسے پیار سمجھ بیٹھا ہے وہ کوئی کھیل بھی ہو سکتا ہے. اور مصرع آپ کے سامنے ہے کہ عشق انتہا میں میری جان, عشق انتہا میں میری جان, آدمی فیل بھی ہو سکتا ہے.
0: فیل بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات. حمید بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کا.
10: آپ کا شکریہ, بڑی مہربانی.
0: اور اچھا لگا
10: ہمیشہ.
0: جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ حمید گل صاحب تھے راول پنڈی سے, اور ان سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. آپ تمام دوستوں سے جی جب بھی بات ہوتی ہے, اور بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ کلام سناتے ہیں. آخری کال ہے جی آج کی, دیکھتے ہیں کہ کن سے بات ہوتی ہے. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام, میں لاہور سے ساجدہ بات کر رہی ہوں.
0: لاہور سے ساجدہ بات کر رہی ہیں, کیا سنائیں گی؟
11: ہاں جی, میں نے شاعری سنانی ہے.
0: جی جی سنائیں سنائیں.
11: جی, تجھے بھول جانے کا وعدہ کیا ہے, تجھے بھول جانے کا وعدہ کیا ہے, لوٹا دوں گا وہ تحفے تمہارے, وہ یادیں تمہاری وہ سپنے تمہارے, وہ چوڑیوں کے سارے ٹکڑے بھی سارے, لوٹا دوں گا وہ تیرے سارے خط بھی جلا دوں گا, تیرے سارے خط بھی جلا دوں گا, تجھے بھول جانے کا وعدہ کیا ہے, تجھے بھول جانے کا وعدہ کیا ہے.
0: کیا بات ساجدہ, بہت شکریہ.
11: جی وہ پہلے کال آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی نا, وہ کالر آئی تھی, اس نے ایسے کہا, تو میں نے کہا تھا جو بے وفا لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے, جو بے تکا یعنی کہ ایمی ناراض ہوتے ہیں یا کوئی وجہ نہیں ہوتی
0: ایسے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے وہ انہوں نے آپ کو ٹانٹ نہیں کیا تھا, آپ کو ویسے ہی وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ بھی ایک نئی ٹرمینالوجی ہم نے سیکھی ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹانٹ نہیں کر رہی تھی آپ کو, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے,
11: اور سب سننے والوں کو بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ جی, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا.

दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से आपके लिए पेश किया जा रहा था। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस करती हैं मिस अदवानी, और हफ्ते में 3 दिन दोस्तों आपसे मुलाकात रहती है, जुमेरात और जुमा, रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की खूबसूरत सी महफिल हमसे जाते हैं। हमेशा अच्छा लगता है आप तमाम दोस्तों से बातचीत करने का। अगर दोस्तों आपसे मुलाकात रहती है जुमेरात और जुमा रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की खूबसूरत सी महफिल

करें और एक दुआ अल्लाह ताला की ज़ात से ज़रूर किया करें कि रब ताला की ज़ात हम सब को इस दुनिया में अपनी ज़ात के सिवा किसी दूसरे का मोहताज न करें। आमीन। और एक खुसूसी दुआ के लिए आप लोगों से कहता हूँ कि ये दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे अपने घर की ज़ियारत करवाएं, बल्कि हम सब को। आमीन। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी थर्सडे नाइट रात 8 बजे प्रोग्राम हाउस एट में। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

ये इसलिए कि जब तन्हा अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो तस्लीम कर लेते थे। तो हुक्म तो अल्लाह ही का है जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है।

क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देख लेते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो उनसे जोर और जमीन में निशानात बनाने के लिहाज से कहीं बढ़कर थे, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया और उनको अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला न था।